0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूँ गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है।

हे गाइस व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

कैसे शुक्र करूं तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: चाची जी दीर्घ सुमंगली भव, मतलब
1: जिंदगी भर बाल बच्चों के साथ सुखी रहो।
0: ओ अच्छा, सुना तुमने?
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है, ये कहना है सादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: दादा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरी यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, और यही मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि प्लीज प्लीज प्लीज आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। चूंकि ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन है तो जाहिर सी बात यह है कि हम समुदाय से लोगों को यहां आमंत्रित करते हैं, उनकी बातें हम जन जन तक पहुंचाते हैं। अगर आपके पास कोई हुनर है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं, या कुछ गाना चाहते हैं, बजाना चाहते हैं, या कुछ और, जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में मैंने एक खास मेहमान को आमंत्रित किया है जो कि पेशे से वकील हैं, लेकिन वो अच्छा गाते हैं, गुनगुनाते हैं। तो किस तरीके से इस माहौल में यानी कि वकालत को वो बैलेंस रखते हैं और अपने सिंगिंग का जो क्षेत्र है उसमें भी वो लगातार काम करते आ रहे हैं, तो मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा। मेरे साथ जुड़ चुके हैं नरेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि पेशे से वकील हैं, आप गामा टू ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। तो सर, सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: थैंक यू सर, गगन जी थैंक्स अ लॉट।
3: काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, और मैं ये भी अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि पहले हमारी फोनिक बात हुई और उसके बाद हमें समय नहीं मिल पाया, लेकिन ये सच है कि इंसान जब कोशिश करता है तो वो कोशिशें कहीं ना कहीं कामयाब हो जाती हैं। तो एक बार पुनः आप सबका, आपकी फैमिली भी यहाँ आई हुई है, तो इसलिए मैं सबका यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: थैंक यू गगन जी।
3: तो नरेंद्र सर, मुझे आप ये बताएं कि ये जो आपका फील्ड है, आप पेशे से लॉयर हैं और सिंगिंग आप बाय प्रोफेशनली गाते हैं या बस शौकिया गाते हैं, या यूं कहें कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को।
4: थैंक यू सर। आई एम सिंगिंग व्हेन आई वाज इन क्लास 6-7 इन

0: गुजरात एंड गॉट बेस्ट पार्टिसिपेंट अवार्ड इन सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन इन 1993
1: जी,
0: एंड ऑल्सो बी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी 94 में ऑल इंडिया ट्रैकिंग एक्सपेडिशन में बेस्ट पार्टिसिपेंट अवार्ड इन सोलो सॉन्ग एंड ग्रुप सॉन्ग कॉम्पिटिशन में एंड अवार्डेड बाई कर्नल एस एन थ्रॉट जो उस समय वहाँ ट्रैक मैनेजर थे. इट वॉज नेशनल लेवल का ये
1: कॉम्पिटिशन था
0: सर.
1: तो यू कह सकते हैं कि इस तरीके से धीरे धीरे आपकी शुरुआत हुई.
0: यस सर.
1: ये आपको विरासत में मिला है.
0: Yes,
1: क्योंकि
0: sir,
1: आपके फादर भी म्यूजिक का शौक रखा करते थे. yes, उस तरीके से फिर आपको गाने का मौका मिला. जहां पर भी आपको मौका मिला वहां आपने चौका मारा. हा? जी जी,
0: जैसा कि नाम में ही है ऑल इंडिया ट्रैक 1994 आई गॉट एनसीसी सी सर्टिफिकेट एज सीनियर अंडर ऑफिसर इन बी ग्रेड. ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉलेज में हर नेशनल फेस्टिवल पर 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त हो
1: आप गाते थे.
0: नहीं सर, देशभक्ति के गीत. और डिग्री कॉलेज में 95 में जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते वहाँ मेरी परफॉर्मेंस सर जरूर रहती थी.
1: ओके ओके ओके. मतलब ये तो स्कूल कॉलेज की बात रही
0: सर,
1: तो इस तरीके से वहाँ से आपकी शुरुआत रही. उसके बाद
0: फिर संगम में सर मैं फर्स्ट प्राइज जीता 96-97 में. अग्रसेन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया. उस समय शिक्षा मंत्री थे हमारे यहाँ नरेंद्र कुमार गौर. वो मुझे प्राइज उन्होंने मुझे दिया था सर.
1: जी जी.
0: और 2001 में नीलम रिकॉर्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड से मेरा फर्स्ट एल्बम सर रिलीज हुआ.
1: ओह ग्रेट.
0: ये दिल मांगे मोर.
1: तो
0: जैसा कि टाइटल है ये दिल मांगे मोर.
1: हाँ.
0: उसमें था ये

0: दार, ये उसी गाने
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि आपकी एक शुरुआत रही, राइट?
0: ये एल्बम काफी सेल हुआ उस दौरान यूके एंड पाकिस्तान।
1: अच्छा, ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मतलब यूट्यूब पे अगर लोग आज भी सर्च करें तो वो डेटा आपका मिल जाएगा।
0: मिल जाएगा।
1: वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद फिर शुरुआत क्या रही?
0: बेदर्द सनम मेरा एक एल्बम आया, काफी वो भी काफी चला था इस दौरान, स्टेज परफॉर्मेंस चलती रही। 2002 में ग्रेटर नोएडा आया, प्राधिकरण सब रजिस्ट्रार ऑफिस में काम स्टार्ट किया सर। 2004 में ग्रेटर नोएडा कार्निवल गायन में आई गॉट फर्स्ट प्राइज सर।
1: ओ ग्रेट।
0: उस समय ब्रजेश कुमार जी मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ थे, जो कि सीनियर आईएएस अधिकारी रहे हैं। और 2006 में कमानी ऑडिटोरियम दिल्ली इंटर कॉमेट 2006 के नाम से मिस्टर ब्रायन मलिगन जो तब की नोट स्पीकर थे
1: जी
0: और क्रिएटर हैं मलिगन कॉन्सेप्ट के वर्ल्ड में
1: जी,
0: ही इज अ न्यूजीलैंडर, गाना सुनकर सर वो बहुत खुश हुए, मुझे स्टेज पर बुलाया और गले लगाया, जिसको डॉक्टर्स मिलने में पूरी लाइफ निकल जाती है फिजियोथेरेपी को लेकर के। वो क्रिएटर हैं बिकॉज वो मलिगन कॉन्सेप्ट के, नॉन इन्वेसिव है,
1: मतलब वो एक खुशी का लम्हा था आपके लिए।
0: यस सर, मेरे लिए
1: वो किसी अवार्ड से कम नहीं था,
0: अवार्ड से कम नहीं।
1: तो मतलब इस तरीके से धीरे धीरे आपकी शुरुआत होती रही।
0: यस सर।
1: आप गायन प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते रहे, अवार्ड आपको मिला, लोगों ने उस काम को सराहा। तो उसके बाद की अगर मैं
0: और सर मैं बीच में
1: जी जी
0: कहना चाहूंगा
1: जी,
0: इस हिंदी इंग्लिश पैरोडी सॉन्ग पर बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी सर।
1: कौन सा गुनगुनाएंगे आप हमारे श्रोताओं के लिए?
0: डेफिनेटली सर, इन कोलैबोरेशन बाय कैपरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनुअल थेरेपी दिल्ली एंड एसपीएसपीजी इंस्टीट्यूट देहरादून ने संयुक्त रूप से सर इसको आयोजित किया था
1: जी।
0: श्रोताओं के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, ओ ना कर एक्टिव मूवमेंट, ओनली दे दे ओवर प्रेशर, ये ट्रीटमेंट का एक पैटर्न है जो मलिगन कॉन्सेप्ट जो हमें बताता है, सिखाता है सब डॉक्टर्स को। ओ ना कर एक्टिव मूवमेंट, ओनली दे दे ओवर प्रेशर, बट

0: द मूवमेंट प्लेन।
1: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। चलिए, ये जो बातों का सिलसिला है मिस्टर नरेंद्र, आपके साथ हम लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि आज आपसे आप ही की बात हो रही है, आपकी फील्ड की बात हो रही है। और ये तो एक शुरुआत रही कि जिस तरीके से आपने सिंगिंग के क्षेत्र में कब कदम रखा, कब अपने आप को आप आगे लेकर गए और क्या चल रहा है, इसके बारे में हम बहुत सारी बातें आपसे जानेंगे जरूर। यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ही के अंदाज में हम म्यूजिकल ब्रेक की ओर चलें। कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब, वो जो अक्सर आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं, हमारे श्रोताओं के लिए सुनवाना चाहते हो।
0: नजर

0: मत कहो।
1: चलिए सर, इस गाने को हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं। वाकई बहुत अच्छे गाने का आपने चुनाव किया है और इस गाने में बहुत अच्छा एक संदेश भी छुपा हुआ है। तो यही गाना लिसनर्स हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। ये गाना आप सुनिए, गाइए, गुनगुनाइए और उसके बाद झट से फट से जुड़ जाएगा सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। मैं हूं गगन और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं पेशे से सिंगर हैं और जिनका नाम है नरेंद्र कुमार सिंह। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सोनू शारदा 90.8 एफएम। मैं हूं गगन आपके साथ, और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं नरेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि पेशे से वकील हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। जिस तरीके से इन्होंने अभी ब्रेक पर जाने से पहले एक गाना हमारे लिए नजर किया, हमारे लिए गुनगुनाया, बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरी आदत है। तो एक बार फिर से नरेंद्र जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सर।
0: ये जो गाने जब आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं, वो वाकई दिल को सुकून देते हैं। ये गाने, इसमें एक मीनिंग है, कहीं संदेश छुपा हुआ है। तो क्या लगता है कि आज के समय में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गुम हो गई हैं?
1: यस सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। मुझे डीप ब्रीथ जैसा फील होता है, प्राणायाम
0: ग्रेट
1: जैसा फील होता है। मेरा पैशन भी है, शौक भी है, प्रोफेशन भी है। तो इस बीच वन इंडिया में गाने का मौका मिला, 2015 की बात है सर। और टाइम टू टाइम बीच में फिर अधिवक्ता दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अक्सर होली के आयोजनों में मेरा
0: गाने का मौका मिलता रहा।
1: जज वगैरह जो बीच बीच में रहे, श्रीमती विजय लक्ष्मी जी जो आजकल जस्टिस हाई कोर्ट हैं, एवं डिस्ट्रिक्ट जज श्री अभय कुमार जी,
0: मतलब इस तरीके से आपको मौके मिलते रहे।
1: कोई भी वेलकम पार्टी है, कुछ भी है, कप्तान साहब, उधर डीआईजी साहब, ये सब
0: मतलब प्रशासन के बीच में आप जाते रहते हैं जब भी मौका मिलता है। घर की अगर मैं बात करूं तो घर में किस तरीके से माहौल रहा, ये आपने हमें बताया फादर के बारे में। कभी सपोर्ट मिला, या कभी ऐसा होता है कि पुराने समय की अगर हम बात करें, क्योंकि आज का समय अगर हम देखें सर, तो आज तो लोग जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो खुद उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप गाने के लिए ट्रेनिंग लीजिए, या एक म्यूजिक का गुरु हो आपके पास होना चाहिए। तो आपको घर से कैसा माहौल मिला, कितना सपोर्ट मिला सिंगिंग के क्षेत्र में, या बस आप सिंगिंग छोड़िए आपके बस की बात नहीं है?
1: हमारे कैसा रहा? ऐसा नहीं था सर। हमारे टाइम में हमारे फादर एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करते थे, और गाना उनको मतलब गाने के मामले में टू बी फ्रेंक में कहना चाहूंगा, वो बिल्कुल भी
0: सपोर्ट नहीं थे क्योंकि पुराने समय में होता नहीं था। आज के समय में तो बहुत सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स बच्चों को।
1: मेरी मदर हालांकि मुझे सपोर्ट कर देती, और इसी दौरान जहां जहां मैं सीखने भी गया तो वहां से मुझे गुरुओं से बहुत प्रेरणा मिली, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और 10-12 ईयर्स में हारमोनियम पे रियाज किया, 2002-2010 ये सब रियाज हुआ, उससे पहले भी मेरा चल रहा था हारमोनियम वगैरह। और मेरे कई गुरु रहे हैं, नारायण मास्टर जी रहे हैं इधर, फिर और गुरुओं का मुझे बहुत आशीर्वाद मिला, बल्कि कॉम्प्लीमेंट बहुत मिले कि हमारा ऐसा कोई शिष्य भी इस तरह।
0: क्या कभी दिमाग में नहीं आया कि मुझे बॉलीवुड का रुख करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, या कुछ घर की ऐसी परिस्थितियां रही कि जिसकी वजह से आप आगे जाने का मौका आपको नहीं मिला?
1: परिस्थितियां रही, हालांकि जब मैं ऑल इंडिया ट्रेकिंग एक्सपेडिशन सापुतारा में था तो ब्रिगेडियर साहब मुझे सुन करके बोले, नरेंद्र कहां तुम्हें तो रेडियो में होना चाहिए।
0: और आज आप रेडियो पर हैं। कह सकते हैं कपिल शर्मा जिस तरीके से पूछते हैं, क्या आपने सोचा था कि गगन के सामने आप बैठे होंगे कभी?
1: नहीं सोचा था।
0: जी
1: कर्नल साहब मिस्टर एस एन थ्रॉट 92 में मुझसे बोले थे, इस दौरान जहां जहां मैं परफॉर्म किया, स्टेज पे मैं रहा हूँ अक्सर, फ्लावर शो ग्रेटर नोएडा, इधर फाउंडेशन डे दिसंबर में होता है ग्रेटर नोएडा का, कार्निवल होता है उसमें, फिर एज ए जज भी रहा हूँ, एज ए बीच भी फिलर भी रहा हूँ, स्टेज परफॉर्मेंस देता रहा हूँ, तो काफी
0: एप्रिसिएशन
1: मिली।
0: चलिए सर, ये
1: भोजपुरी के मुझे ऑफर थे दो।
0: अच्छा अच्छा।
1: फिल्म का भी ऑफर था, एल एच खान साहब प्रोड्यूसर डायरेक्टर सावन कुमार जी को लेकर के, वो लिरिक्स उन्होंने लिखे थे, उन्होंने मुझे कई बार दिल्ली जब यहाँ आते थे तो मैं मिलता था अक्सर उनसे, और अपॉर्चुनिटी थी, बट फैमिली का भी थोड़ा मुझे था, अपने आप को स्टैंड भी करना था।
0: यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बातें जो जारी हैं लगातार जारी रहेंगी, क्योंकि बातें थोड़ी ज्यादा सी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि आपकी पसंद का एक और गाना जो आपके दिल के बेहद करीब है, जो आप हमारे लिसनर्स को सुनवाना चाहते हैं, और उसके बाद इस बात को हम कंटिन्यू आगे करेंगे।
1: नीले नीले मिंबर पर चांद जब आए।
0: क्या बात है,

बहुत ही खूबसूरत गाना आपने चुना है यहाँ पर, और मैं समझता हूँ कि हमारे जो लिसनर्स हैं यकीनन इस गाने को गाएंगे, गुनगुनाएंगे, अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं तो गाड़ी गाते झूमते मतलब अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। और ये फिल्म जो है कलाकार फिल्म है, और नीले नीले अंबर पर वाकई बहुत अच्छे बोल है, किशोर कुमार साहब ने इस गाने को गाया है और इंदीवर साहब का लिरिक्स है, और साथ ही साथ मनोज कुमार के जो बेटे हैं उस फिल्म में वो एक लीड एक्टर में रहे हैं, साथ ही साथ यूं कहें कि श्रीदेवी, और मतलब कंप्लीट एक पैकेज है। बहुत ही खूबसूरत गाना है सर, मेरे दिल के बेहद करीब ये गाना है। बस लिसनर्स इस गाने को गाइए, गुनगुनाइए, सुनिए, और उसके बाद हम आपको मिलेंगे यहीं, कहीं जाएगा मत। स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुनो शारदा 90.8।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे साथ आज खास मेहमान हैं नरेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि पेशे से वकील हैं लेकिन बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और कई एल्बम्स में इन्होंने काम किया है। खुद की एल्बम भी इन्होंने रिलीज की है,
1: ये दिल मांगे मोर,
0: बेदर्द सनम, जैसे कि आप हमें बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को सुनने के बाद कुछ जो लिसनर्स हैं जरूर आपको फाइंड आउट करेंगे यूट्यूब पर देखेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी बातें आपसे हो रही थी कि अच्छी जगह आपको मौका भी मिला लेकिन घर की कुछ परिस्थितियों की वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाए। तो इस समय की अगर मैं बात करूं, जो कहीं ना कहीं ख्वाब था वो जो दबा हुआ था उस वक्त, अगर आज आपके सामने मौके आते हैं तो कितना उसको आप कैश कर पाते हैं, कितना आप उसको भुना पाते हैं, या कहीं सोचा है कि नहीं मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए, मुंबई की ओर रुख करना चाहिए?
1: अभी मेरा ये कंटिन्यू है म्यूजिक, और मेरा फेसबुक पेज मैं अभी बनाया हुआ हूँ तो उसमें लाइव मैं सैटरडे संडे आता रहा हूँ।
0: ग्रेट।
1: और कंटिन्यू कर रहा हूँ उसको। इसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो स्टेज परफॉर्मेंस मिलती हैं मैं उसको उनको करता रहा हूँ
0: जी।
1: और फैमिली के कुछ कारणों की वजह से बीच में मैं गैप हो गया था मेरा इसमें, तो मुझे अपने आप को स्टैंड करना था। आज मुझे लगता है कि मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ तो
0: ओके,
1: मैं इसको कंटिन्यू करूंगा सर।
0: वेरी गुड, वेरी गुड सर, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कितना तालमेल बैठा पाते हैं वकालत करते वक्त, या यूं कहें कि आपका जो पेशा है, आप पेशे से वकील हैं और सिंगिंग के क्षेत्र में भी आप समय देते हैं और आप जैसे खुद कह रहे हैं कि जब भी मुझे मौका मिलेगा यकीनन मैं आगे बढ़ूंगा, तो ये जो तालमेल है बैलेंस कैसे रख पाते हैं साथ साथ फैमिली भी?
1: बेसिकली मेरा रहता है सर, जो हमारा प्रॉपर्टी एक्ट है, आई एम नॉट ए लॉयर, आई एम नॉट ए क्रिमिनल एंड सिविल एडवोकेट, बेसिकली हमारा डीड्स का काम होता है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क होता है, तो उसमें मेरे पास टाइम है, मैं मैनेज कर लेता हूँ। कई बार हमारे एलओटी भी जब पता उनको चलता है कि मैं सिंगर भी हूँ, कंस्ट्रक्शन वर्क भी देखता हूँ, डीलिंग भी मेरा व्यवसाय है थोड़ा बहुत, तो कहते हैं नरेंद्र जी क्या क्या हैं आप,
0: हरफन मौला हैं, शायद ही कोई फील्ड आपका बचा हो,
1: अच्छा गाते हैं
0: जी,
1: ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। मैं उनको बताता हूँ कि मैं सब ये मैनेज
0: कर लेता हूँ,
1: इसमें 10 to 5 का मेरा कोई कंपलसरी जॉब नहीं है।
0: ओके ग्रेट। फैमिली से कितना सपोर्ट मिलता है? फैमिली में मैं बात कर रहा हूँ आपकी वाइफ का, बच्चों को तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, बच्चे बड़े ट्रस्ट के साथ आए हुए हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके असिस्टेंट बने हुए हैं, कोई अनन्या को मैं देख रहा हूँ ये वीडियो बना रही हैं, और ये जो आपके छोटे सुपुत्र हैं इन्होंने अभी आपका टेक्निकल वाला पार्ट हमें यहाँ मैंने देखा कि उन्होंने असिस्ट किया, तो किस तरीके से माहौल मिलता है, किस तरीके से सपोर्ट करते हैं आपकी फैमिली?
1: सपोर्ट करते हैं लाइव में, मुझे काफी सपोर्ट करते हैं, बैकग्राउंड देना, उधर साउंड सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना, उधर ट्रैक प्ले करना, ट्रैक सेलेक्ट करना, यू

0: यूट्यूब से ट्रैक को सेलेक्ट करना, तो जो मुझे गाना होता है जो उस दिन मैं डिसाइड करता हूँ उन सबको वो डाउनलोड करके रखते हैं एंड देन फाइनली मैं उस पर गाता हूँ। तो इन लोगों की काफ़ी सपोर्ट रहती है एंड वीडियो शूट करना, बीच बीच में वहाँ का एनवायरनमेंट देना उस तरह का लाइव का।
1: ओके okay. और मैडम क्या सपोर्ट करती
0: हैं? मैडम की भी सपोर्ट मुझे रहती है,
1: तभी आप बाहर निकल पाते हैं। जी छोड़ो गाना बजाना है, अब तो उम्र निकल गई मियाँ आपकी। चलिए मैं बच्चों के बारे में जान लेता हूँ। अनन्या आप मुझे बताइए कैसा लगता है जब आप पापा को सपोर्ट करती हैं या पापा के साथ आप जाती हैं, क्या लगता है कि पापा को और आगे जाना चाहिए या आपको लगता है कि मुझे भी सिंगर बनना है?
2: हाँ जी अंकल, कई बारी होता है कि लाइक पापा एज अ जज होते हैं तो मैं जाती हूँ मोस्टली साथ में, या भाई चला जाता है वीडियो शूट या उनकी हेल्प के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है अंदर से, लाइक उनकी लाइव परफॉर्मेंस होती है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है फेसबुक पे, तो भाई हेल्प करता है, मैं वीडियो शूटिंग में कभी कभी हेल्प करती हूँ।
1: ओके
2: हाँ, तो अच्छा लगता है ऑफकोर्स।
1: अच्छा हाँ। तो क्या कभी दिमाग में ख्याल आता है कि मुझे भी इस फील्ड में जाना है, मुझे भी चुनाव करना है? अभी स्टडी किस क्लास के स्टूडेंट हैं?
2: अभी 10th।
1: अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूंगा शारदा यूनिवर्सिटी का मास कॉम का बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर हम जैसा टैलेंट भरा हुआ है। मास कॉम का रेडियो भी है, टीवी भी है, अगर आपको कभी लगता है तो जरूर, मैं तो कहूंगा कि एक बार जरूर यहाँ विजिट करेगा, यहाँ का माहौल देखेगा, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑब्वियस है कि लोग देख ही रहे हैं, और फैकल्टी से आप मिलिए, लोगों से मिलेंगे, स्टूडेंट्स यहाँ के बहुत अच्छी अच्छी जगह काम कर रहे हैं, तो मैं तो इस बात से यही कहूँगा कि आप ज़रूर सोचिएगा ज़रूर अगर आप पापा के साथ आते जाते, क्योंकि एक नो डाउट कि चकाचौंध की दुनिया है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, समझने को मिलता है, फिर लगता है कि नहीं यार इसका एक कोर्स कर ही लिया जाए तो उसके बाद हम कुछ ज़रूर करेंगे, खास करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में हम सुन रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा में जेवर की तरफ हमें फिल्म सिटी मिलने जा रही है। आपके छोटे भाई भी आए हुए हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका?
3: माय नेम इज आर्यन।
1: आर्यन, आर्यन मुझे बताइए कि आपको कैसा लगता है पापा के साथ जब आप जाते हैं या जबरदस्ती ले जाते हैं आर्यन को? नहीं पापा मेरा मन नहीं है, मेरे को तो क्रिकेट खेलना है। कहाँ ले जाते हैं आप? हा?
3: नहीं अंकल, पापा बहुत अच्छे हैं,
1: बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड।
3: सपोर्ट करने में अच्छा लगता है।
1: आप पापा को सपोर्ट करने में अच्छा लगता है या पापा का सपोर्ट आपको अच्छा लगता है? दोनों को अच्छा लगता है। मम्मा के बारे में बताइए थोड़ा।
3: मम्मी भी बहुत सपोर्ट करती है पापा को।
1: चलिए वेरी गुड सर, बहुत अच्छी फैमिली है आपकी, मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर एक मैं छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा और उसके बाद आखिर में एक छोटा सा संदेश आपसे जरूर लूंगा। तो कौन सा एक गाना है जो आपके और दिल के बेहद करीब है जो हमारे लिसनर्स को आप सुनाना चाहते
0: हैं? बहुत सारे सॉन्ग्स हैं और इस दौरान तो क्या कहते हैं टाइम पर कुछ सिलेक्शन।
1: कोई बात नहीं, जो भी, हाँ प्लीज सुनाइए।
0: एक मैं रफी साहब का दो लाइन गुनगुना रहा हूँ।

0: जिंदगी।
1: क्या बात,
0: कल हम कहां तुम कहां।
1: बहुत ही खूबसूरत गाना लिसनर्स, मैं आपके लिए नजर करने जा रहा हूं। आनंद बख्शी साहब के बोल, म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक, सिंगर जिस तरीके से सर ने हमें बताया रफी साहब और साथ साथ आर डी बर्मन, और स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो रिश्ते में तो अमिताभ बच्चन साहब और शान। फिल्म ये रही 1980 में आई, और गाने के जो बोल हैं यम्मा यम्मा, ये गाना मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सुनोशादा 90.8 एफएम पर। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको उस प्रोग्राम को सुनकर मजा आ रहा होगा, तो आप अपना फीडबैक देना ना भूलेगा। फिलहाल ये गाना सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनोशादा 90.8 एफएम।

0: इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम। ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सब खुश रहें, हेल्दी रहें, क्योंकि सच कहते हैं कि जान है तो जहाने सारी मुश्किलें आसान है। कहते हैं कि ईश्वर से जब आप कुछ मांगना चाहते हैं तो सबसे पहले यही मांगेगा, जो पहला सुख है वो है निरोगी काया। जब आप हेल्दी रहते हैं तो आप गाना अच्छा गा सकते हैं, दूसरा काम बेहतर कर सकते हैं, किसी काम को खूबसूरत अंजाम तक आप पहुँचा सकते हैं। तो इसीलिए वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। फिलहाल मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है नरेंद्र कुमार सिंह, जो कि बहुत अच्छे सिंगर है, बहुत अच्छे इंसान है। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं इनके बारे में और इनकी फैमिली के बारे में, इनके इस पेशे के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि रियलिटी शोज बहुत आ रहे हैं, लोग अपने आप को वहाँ लेकर जाने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। और ख़ासकर अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो बच्चों का जो एक यूँ कहें कि कॉम्पिटिशन है, लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं हताशा भी है, परेशानियाँ भी हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं होता। तो इस करंट सिनेरियो को किस तरीके से आप देखते हैं और इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं?
1: बच्चों को डेफिनेटली आई वुड लाइक कि मैं भेजना चाहूँगा, और कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है आज की डेट में, और कंपटीशन होना भी चाहिए, और बच्चे प्रिपेयर करें उस हिसाब से आगे बढ़े, और कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना है। अपना जो शौक है उसको बनाए रखें एंड कंपटीशन से ना डरें। यू विल गेट डेफिनेटली सक्सेस। इफ यू आर स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है।
0: क्या बात है। सो कहने का आशय लिसनर्स यही है कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं या आप ऑलरेडी पहले से ही काम कर रहे हैं तो डरने घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ईश्वर भी कहीं ना कहीं आपकी मदद ज़रूर करता है। तो फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है नरेंद्र सिंह जी, मुझे आपसे अनुमति लेनी होगी, लेकिन बस जाते जाते ही कहना चाहता हूँ आपसे बात करके, आपकी फैमिली से बात करके, कि जो बच्चे हैं यहाँ आए हुए हैं उनसे भी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कुछ अगर आप कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं अपने मन की बात।
1: मैं यही कहना चाहूंगा, अभी टू लाइंस बीच में मैं फेसबुक पर अपने वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। मेरा फेसबुक पेज भी है जो कि
0: किस नाम से है वो फेसबुक पेज?
1: नरेंद्र सॉन्ग्स, नरेंद्र सॉन्ग्स के नाम से है। तो सर्च करेंगे तो आपको खुल जाएगा वो। और ये मैं दो लाइन आपको सुना रहा हूँ अभी ऑन फ्रेंडशिप
0: जी।
1: तेरे

0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत।
1: याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। दिस इज फॉर यू ऑल फ्रेंड्स।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मिस्टर नरेंद्र। लिसनर्स, इस गाने के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूँ, इजाजत लेता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर नरेंद्र कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी बातें, अपने मन की बातें हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई।
1: थैंक्स अ लॉट।
0: सो फाइनली, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है, मुझे लेनी होगी आपसे अनुमति। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। मंडे टू सैटरडे 7-10 लाइव में रहता हूँ आपके साथ और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फिलहाल इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुरुशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: हे गाइस, व्हाट्स अप? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878 9370। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: For more information, please call Dr. Ramneet 9878 93 7770. Seats are limited. Hurry up, कहीं देर ना हो जाए।

0: बाद स्टूडियो क्लॉक 9:17 हो चुके हैं और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। मौसम के मिजाज के बारे में बात करते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि जून की ठंडी शुरुआत बारिश से इस वक्त तापमान में कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज की गई है। IMD यानी कि मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। सच बात तो ये है कि इस वक्त दिल्ली NCR में मौसम बड़ा खुशनुमा हो चुका है और गर्मी आपको महसूस नहीं हो रही। कई राज्यों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की वजह से तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया है और मौसम विभाग ये कह रहा है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश और आंधी का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है। तो कुल मिलाकर ऐसे मौसम का लुत्फ उठाइए, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा। और वहीं दिल्ली NCR, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ साथ बिजली गिरने, धूल भरी आंधी और तेज झोंकेदार
1: होता है।
0: मैं देख रहा था कि कहीं तुम सो तो नहीं रहे अच्छी तरीके से गाड़ी घुमा दे दूंगा। हाँ, तो इस तरीके से हवाएं चल सकती हैं और इस तरीके से जब आंधी तूफान आता है तो आप अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है और आपके जो पालतू जानवर हैं, जो पशु हैं, उनका भी ख्याल रखिएगा, है ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिजली विभाग क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का बिजली बढ़ेगी घटेगी, इसके बारे में जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद, तो कहीं जाएगा मत। स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुरक्षा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें। सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है। हेलो दोस्त,

खेलते हुए देखती हूँ तो मन की मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। जब राजू, बंटी, मोहन को पिंकी टीचर बनकर पढ़ाती है तो ऐसा लगता है कि एक दिन देश भी पिंकी चला सकती है। इन नन्ही आंखों में कितने सपने बसते हैं और ये सपने सच भी हो जाते हैं अगर सही तरह से हमारी बेटी को हर सुविधा मिले।

0: क्या बात है सावित्री, उदास क्यों हो?
1: बस सपना की बहुत चिंता हो रही है। अच्छा हुआ आप आ गई।
0: अरे मुझे तो आना ही था। और अब हम जब आ गए हैं तो चलो बच्चे की जांच कर लेते हैं।
2: अब सब ठीक तो है ना आशा दीदी?
0: इसे तो तेज बुखार है। मदन तुम एक काम करो
2: जी,
0: सपना को SNCU ले जाओ। वहाँ पर प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स हैं। वहाँ पर इसका सही ढंग से और अच्छी तरह से इलाज हो जाएगा।
2: मतलब खर्चा होगा और आज की दिहाड़ी भी चली जाएगी।
0: जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पूरे एक साल तक मुफ्त में इलाज होगा। और इतना ही नहीं, सारी जांचें और दवाइयाँ, यहाँ तक कि एम्बुलेंस की सुविधा भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसीलिए तुम अपने खर्चे की चिंता तो एकदम भूल जाओ। और रही बात तुम्हारी दिहाड़ी की, तो इतनी प्यारी बेटी के स्वास्थ्य के सामने तुम्हारी दिहाड़ी कुछ मायने नहीं रखती, समझे?
2: सावित्री, जैसे तुमने इसके लिए हजारों सपने देखे हैं ना, वो सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, हमारे हैं। ये हमारी सपना है, इसका ख्याल रखना, इसको स्वस्थ रखना, इसका समय समय पर सही इलाज कराना, ये हम सब घर वालों की जिम्मेदारी है ना?
0: मदन, अगर सब लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे ना, तो हर घर की बेटी के सपनों को उड़ान मिलेगी। और वो कुछ बनकर न सिर्फ अपने घर और परिवार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेगी। है ना
3: शिपना?
0: सपने होंगे सच जब बेटियां होंगी स्वस्थ, क्योंकि अपनी बेटी की सही समय पर सही देखभाल करने से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
6: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे TB की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो, तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये TB के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को TB मुक्त बनाएं।
7: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: क्या बात है इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:32 हो चुके हैं। 2 तारीख है यानी कि 2 जून।
1: 2 जून के लिए तो हम भाग दौड़ कर रहे हैं,
0: मतलब पूरी साल।
1: आज समझे नहीं बेटा, अगर तुम समझ गए होते तो तुम आज बहुत आगे जाते।
0: नहीं नहीं खुल के बताओ ना, 2 जून की रोटी की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा ऐसे आ रहे हो।
1: देखो मैं जैसे भी आया करूं तुम्हारा काम
0: एडजस्ट।
1: हाँ वही एडजस्ट करने का है। आगे 2 जून है और 2 जून की रोटी के लिए हम भाग दौड़ करते रहते हैं। कितना अच्छा बोला ना मैंने।
0: हाँ तुम बहुत आगे जाओगे।
1: कहाँ? उज्बेकिस्तान जाएंगे हम दोनों। आगे आगे बिकॉज देयर इज अनदर वन शाखा फ्रॉम शारदा विश्वविद्यालय। गुड मॉर्निंग।
0: चलिए हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर तैयारियां कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम भारतवर्ष में और अच्छा करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी, यानी कि शारदा कैंपस में एडमिशन का दौर शुरू हो चुका है। एक छत के नीचे बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस के बारे में आप जान सकते हैं, प्लेसमेंट के बारे में जान सकते हैं, कल्चरल एक्टिविटी के बारे में जान सकते हैं और भी बहुत कुछ। ये सारी मालूमात आपको तभी मिलेंगी जब आप एक बार यहां आएंगे। और यकीन मानिए
1: जब आप आएंगे तो हम आपको जाने नहीं देंगे,
0: मतलब
1: आप यहीं के खुद ब खुद होके रह जाएंगे। गुड मॉर्निंग।
0: चलिए ऐसे समय में गर्मी बहुत ज्यादा है तो गर्मी को शांत करने के लिए एक अच्छी खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि UPPCL ने जून के बिलों में प्रस्तावित 10% अतिरिक्त टैरिफ वसूली के फैसले पर विद्युत नियामक आयोग ने फिलहाल पूरी तरह से रोक लगा दी है, यानी कि जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ अब टल गया है।
1: गाना तो बनता इतनी अच्छी खबर पर। गुड मॉर्निंग।
0: हाँ सुप्रभात, मैं हूँ गगन आपके साथ, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, बादशाह की आवाज।

0: दूं, गाना बजा दूं।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
1: तो मतलब इस क्लास का सार है, लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
2: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: अर्थात ये धरा, ये वसुंधरा एक परिवार है और शारदा परिवार में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:41 हो चुके हैं, 2 तारीख है। हमारा फर्ज बनता है कि जो हमारे आसपास हो रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करें, बातचीत करें। और जब हम देख रहे हैं कि वाद संवाद यानी कि डिबेट भी होती हुई नजर आ रही है एआई के विषय में, दुनिया भर में पिछले 2 साल में जो हमने देखा यानी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो माहौल बना, जहां हमने देखा कि लोगों के जॉब्स जाएंगी, ऐसा भी हमने सुना, लेकिन डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपडेट्स निकल कर ये सामने आ रही हैं कि इंटरनेट के बाद ये सबसे बड़ा बदलाव होगा, ऐसा कुछ हमने सुना था। और अपने नाम के साथ एआई ये सारी बातें कंपनियां ये बातें जोड़ रही थी और रिपोर्ट्स अब क्या कह रही है, कहानी में ट्विस्ट आया। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऊबर से लेकर ओपन एआई तक ने कहीं ना कहीं ये माना है कि एआई खर्चीला होता जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्लाउड के कई लाइसेंस तक कैंसिल कर दिए और एक कंपनी को कुछ ही महीने में $500 मिलियन का बिल एआई का आया। और इसी तरह उबर का भी एआई सब्सक्रिप्शन बजट समय से कम में खत्म हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि जब कोई नई चीज आती है तो उसका स्वागत करना चाहिए। पुराने दौर की वो फिल्मों को याद करें जब हम देखते हैं कि नया दौर में मशीन युग आया है। फिल्म की मैं बात कर रहा हूं तो लोग डर रहे थे, घबरा रहे थे, लेकिन आज मशीन हमारे जीवन का हिस्सा हो गया है। लेकिन अफवाहों को आप जन्म ना दें, समझदारी से काम लें, इसके बारे में मालूमात और आप हासिल कर सकते हैं क्योंकि सोर्स के जरिए ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। डरने का नहीं, कोशिश करने का और सीखने का।

0: स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ गई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
1: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
2: हेलो, मैं हूं डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजीली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज़ करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे आईज पे कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
1: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
0: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाएं।
3: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

घड़ी में 9:54 हो चुके हैं। वक्त का इशारा जब होता है तो मैं होता हूँ 9:11। लेकिन जाने से पहले ये कहना चाहूंगा कि अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा, मौसम बदल रहा है, ऐसे मौसम में ख्याल रखना तो बनता है ना, है ना। गर्मी बहुत ज्यादा, उसके बाद एकदम मौसम बदलता है, यानी कि आंधी तूफान बारिश ओले। तो इस तरीके से जब मौसम बदल रहा है तो अपनी सेहत पर कहीं कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इसका खामियाजा जो है वो हम सबको भुगतना पड़ जाएगा। खामियाजा का जब मैं जिक्र कर रहा हूं, इस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो खामियाजा हम सब रोज भुगत रहे हैं जब हम अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं, जब हम ध्यान नहीं रखते। आपको भी लगता है कि बच्चा मोबाइल का इतना आदि हो चुका है, हैबिचुअल हो चुका है, कि जब वो खाना खाएगा तभी उसके हाथ में मोबाइल होना जरूरी है, अदरवाइज वो खाना नहीं खाएगा। तो सोशल मीडिया की दुनिया में एक ऐसा फैसला हमारे सामने आ रहा है जिससे हमें सीखने की बहुत जरूरत है। मेटा, टिकटॉक, इंस्टाग्राम जैसी बड़ी टेक कंपनियों की नींद उड़ाकर रख दी है। मलेशिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नियम लागू कर दिया है, यानी कि उन पर रोक लगा दी है कि वो मोबाइल नहीं देखेंगे। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हिंदुस्तान में अगर हम ऐसा सोच लें, समझ लें, तो आप देखिए अपने बच्चों की आदत को बिगड़ने से हम बचा सकते हैं, उनकी आंखों की रोशनी को हम वक्त रहते हुए बचा सकते हैं, उनकी आदतों में सुधार ला सकते हैं, उनकी गेम की जो एक्टिविटी है उनके लिए हम ग्राउंड में उनको लेकर जा सकते हैं। तो ये तब संभव होगा जब हम सब मिलकर चलेंगे। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में रखें और अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि सच बात तो है कि बच्चे देश का भविष्य हैं। वक्त का इशारा और मैं होता हूँ 9:11, फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लिसनिंग टू शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्त्री 2 फिल्म का ब्यूटीफुल ट्रैक ऑल योर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है स्वाति कृष्णा जो एक पब्लिक हेल्थ फिजिशियन है। सीएमसी विल्लोर की वो पूर्व छात्रा रह चुकी है और केंद्रीय टीबी विभाग की पूर्व सलाहकार। टीबी के खिलाफ जमीनी लड़ाई में उनका काफी योगदान रहा है। सरकार की टीबी मुक्त पंचायत पहल पर इनकी एक एनालिसिस प्रसिद्ध साइंस जर्नल लैंसेट में पब्लिश हुआ है। हम उनसे जानेंगे कि टीबी मुक्त पंचायत अभियान को और पुख्ता कैसे बनाया जा सकता है और टीबी को किस तरीके से टीबी के साथ लड़ाई किस तरीके से जमीन मतलब पंचायत लेवल पे किस तरीके से लड़ी जा सकती है। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए स्वाति, थैंक यू। तो आप एक पब्लिक हेल्थ सर्विस में हैं तो आपका आपने टीबी के क्षेत्र में बहुत काम किया है, तो थोड़ा हमें एक आइडिया दीजिए कि सबसे ज्यादा बड़ी चैलेंजेस क्या रही हैं और जो हमने 2025 का गोल सेट किया है टीबी को एंड करने का, खत्म करने का, क्या वो एक फिजिबल टारगेट है हमारे लिए, क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ पा रहे हैं।
1: शुक्रिया सोमी मुझे बात करने के अवसर देने के लिए। ये जो हमने लैंसेट में पब्लिश किया है वो मैं और मेरे

0: हम पांचों ने काम किया है। तो सिर्फ वही नहीं, टीवी में हम पांचों ने काम किया है बहुत अलग अलग रोल्स में। तो हमें हमारे डिस्कशंस में हम हमें थोड़ा ऐसा थोड़ा इम्प्रोवाइजेशंस, ये पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन रिलीज किया गया है उसको ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा हमें लोकली उसे अडेप्ट करना पड़ेगा, यानी थोड़ी थोड़ा लोकल ऑल्टरेशंस करना पड़ेगा। जो जो जिन जिन क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं तो उसी क्षेत्र के प्रॉब्लम्स के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से, जो भी वहाँ का नीड है उसी को हम उसी के हिसाब से हमें वो थोड़ा ऑल्टर करना पड़ेगा और फिर उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हम ऐसे ऐसे बोलते हैं कि टीबी की एपिडेमियोलॉजी जो है, यानी कि टीबी को इन्फ्लुएंस जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है वो डिफरेंट है हर एक ज्योग्राफिक एरिया में, वो डिफरेंट है। तो इसीलिए हमें लोकल सॉल्यूशंस चाहिए। तो सरकार का ये जो टीबी मुक्त पंचायत इनिशिएटिव है, ये जो लॉन्च हुआ है, ये एक हिस्टोरिक लॉन्च है, क्योंकि इस तरह का एक नेशन वाइड वाइड स्प्रेड कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम, यानी कि जन भागीदारी लेके जो प्रोग्राम जो ये बहुत बहुत नहीं किया गया है, बहुत सारे पहले नहीं किया गया है। तो टीबी को एंडिंग टीबी एपिडेमिक, वो है हमारा टारगेट। तो इसके लिए ये पावर ऑफ यानी कि जन जन भागीदारी का वो पावर जो है उससे यूटिलाइज करना, वो ही है ये टीबी मुक्त पंचायत का मकसद। और मुझे इस अवसर पर एक और बात बहुत क्लियरली बताना है, जो अक्सर लोगों में एक गलत फहमी है, बहुत सारे लोगों में गलत फहमी है कि हम क्षय रोग का निर्मूलन करने जा रहा है 2025 तक। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं बताया गया है। एंडिंग द टीबी एपिडेमिक मतलब टीबी को, यानी कि क्षय रोग को, एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम उस लेवल को कम करना है। प्रॉब्लम लेवल में जो टीबी हमारे देश में है उसे एक पर्टिकुलर लेवल तक कम करना है, वो ही है एंड टीबी एपिडेमिक। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, जो विश्व में बहुत सारे देशों ने एक साथ मिलके एक प्रण लिया था, हम 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो हम अचीव करेंगे, ऐसा एक प्रण लिया था। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से हमें टीबी के डोमेन में थोड़ा बहुत टारगेट्स है, वो है 2030 तक हमें हमें 90% कम करना है हमारे टीबी के कारण से होने वाली मृत्यु। और वो है वो ऐसा है कि अगर 2015 में हम 2015 के स्टैटिस्टिक्स देखें तो उसमें अगर 100 मृत्यु टीबी से होता था, तो अब 2030 में सिर्फ 10 मृत्यु होनी चाहिए, यानी 90% कम करना है। इसी तरह नया टीबी केसेस वो 80% कम करना है, यानी अगर 2015 में 100 केसेस हो रहे थे तो अब 2030 में हमें सिर्फ 20 केसेस होनी चाहिए, उस तरह का काम करना है। यही है हमारा टारगेट। और जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो 0 होनी चाहिए टीबी के लिए। ये 3 टारगेट्स है हमारा जो एसडीजी 2030 तक हमें अटेन करना है। और इंडिया, भारत ने क्या क्या किया, भारत ने बताया कि 2030 नहीं, हम 5 साल पहले ही 2025 में ही हम ये सब अचीव करेंगे। तो यही है हमारा एंडिंग टीबी एपिडेमिक। तो टीबी मुक्त भारत बाई 2025 का मतलब ये है। तो ये हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्योंकि लोगों को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।
1: ठीक है ठीक
0: और
1: है ठीक
0: यस
1: है, थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन कि इसका मतलब ये नहीं कि सारे केसेस ही खत्म हो जाएंगे, बट देर विल
0: यस
1: सब्सटेंशियल डिक्रीज इन द नंबर्स।
0: हाँ
1: तो पंचायत का क्या रोल रहेगा इसमें, ये थोड़ा समझाइए, उसके बाद हम आपकी स्टडी की बात करेंगे।
0: यस तो टीबी मुक्त पंचायत जो है ये एक इनिशिएटिव है जो भारत सरकार ने

0: राष्ट्रीय क्षय रोग निर्मूलन कार्यक्रम में लॉन्च किया था पिछले साल वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर। उसके पहले ये थोड़ा पायलट स्टडीज हुआ था राजस्थान जैसे स्टेट्स में, और उसके रिजल्ट्स सेटिस्फैक्टरी था, इसलिए उन्होंने नेशन वाइड ये शुरू किया। तो इसमें क्या है कि क्षय रोग कार्यक्रम और ये पंचायत मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है, ये पंचायती राज के इंस्टीट्यूशंस, इन लोगों में एक कोलैबोरेशन होगा, यानी कि विलेज लेवल तक एक ऐसा कैंपेन शुरू किया जाएगा जिसमें पंचायत के लोग एक अपने डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा बना देगा ये टीबी की एजेंडा। यानी कि टीबी की एक्टिविटी इट्स एवरीबॉडीज बिजनेस, वो है इसका मेन मिशन। और इसका कंसेप्ट है हेल्थी विलेज हेल्थी नेशन, यानी कि सेहतमंद विलेज गांव सेहतमंद भारत, वही है इसका मेन थीम। तो हमें गांवों को पहले टीबी मुक्त बनाना है, उसी से हमारा देश टीबी मुक्त बन जाएगा, इसी है, ये है इसका आइडिया। तो ऐसा है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है, यानी कि हमारे विलेज लेवल के जो पंचायत होते हैं, जहां सरपंच होते हैं, ग्राम पंचायत के सारे मेंबर्स होते हैं, तो ये ग्राम सभा एक पंचायत यानी कि एक गांव के सारे वेलफेयर और सोशल डेवलपमेंट का जिम्मेदारी उन पे है। वो जो जो काम कर रहे हैं वो एक गांव के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। तो ये सब टीबी मुक्त बनाने, हमारे गांवों को टीबी मुक्त बनाने के लिए, उस तरफ ओरिएंट करने के लिए, इसी के लिए ये कैंपेन बनाया गया है। तो इसके माध्यम से क्या हो रहा है कि टीबी प्रोग्राम के लोग और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लोग एक साथ जुड़कर प्रयत्न करेंगे। हमारे पंचायत का जो डेवलपमेंट प्लान है उसमें बजटिंग होगा टीबी के एक्टिविटीज के लिए। हर एक ग्राम सभा मेंबर वो अपने अपने इलाके का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे टीबी के जो मरीज है उन्हें जल्दी ही डायग्नोस करने में, जो सिम्टोमेटिक है उन्हें जल्दी से डायग्नोस करने में, और डायग्नोस किए कंफर्म्ड पर्सन विद टीबी को झट से दवाई शुरू करने के लिए, और ये उन्हें इंश्योर करना भी है कि दवाई पूरी तरह से ले रही है, उनके घर में जो फैमिली के जो लोग होते हैं, जो कॉन्टैक्ट होते हैं, उन्हें प्रतिबंधात्मक गोली मिलती है। ये पर्सन विद टीबी यानी कि जो डायग्नोस टीबी के मरीज है, उन लोगों को निक्षय पोषण योजना के तहत जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए हर महीने 500 रुपए मिलते हैं, वो रेगुलरली मिलते हैं। और अपने अपने इलाके में जो जो डोनर्स है, यानी कि डोनर्स मतलब कंपनीज होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, जो भी है उन्हें मोटिवेट करके निक्षय मित्रा बनाए, और निक्षय मित्रा होके वो टीबी के मरीजों को और उनके फैमिलीज को न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे दे, फूड बास्केट्स दे दे।
1: निक्षय मित्रा कौन होते हैं जो डोनेशन देते हैं?
0: हाँ, निक्षय मित्रा इज द डोनर, जो डोनर है वो है निक्षय मित्रा, और वो कोई भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, कॉर्पोरेट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। उन्हें करना पड़ेगा ऐसा निक्षय मित्रा, और जो पेशेंट विलिंग है उनको एडिशनल न्यूट्रिशनल सपोर्ट इन लोगों से मिल जाएगा।
1: तो आपको क्या लगता है कि सरपंच पंचायत लेवल पे ये इन्फॉर्मेशन कितना लोगों तक ये अवेयरनेस है, क्या उनको इन सब चीजों के बारे में पता है ऑलरेडी इस अवेयरनेस?
0: हाँ, तो पिछले साल वर्ल्ड टीबी डे को ये पूरे देश में लॉन्च हुआ था। उसके बाद एनटीपी ने, राष्ट्रीय क्षय रोग निर्मूलन कार्यक्रम ने, जोनल वर्कशॉप्स लिया था टू बिगिन विथ। दे स्टार्टेड विथ जोनल वर्कशॉप्स, जो जोनल वर्कशॉप्स है साउथ जोन, वेस्ट जोन, मिडिल जोन, ऐसे उन लोगों ने जोनल वर्कशॉप दिया, जहां टीबी कार्यक्रम के और हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स और पंचायती राज के ऑफिशियल्स भी मौजूद थे, और उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया कि क्या है ये टीबी मुक्त पंचायत, उसमें क्या क्या आपको देखना है, क्या क्या है उसका एक्टिविटीज, आपको कौन से इंडिकेटर मॉनिटर करना है, उसका बजटिंग कैसे करना है, ये सब के लिए जोनल वर्कशॉप्स लिया गया। और फिर जो जोनल वर्कशॉप्स अटेंड किए वो फिर जाके वापस जाके अपने अपने इलाके में और भी ट्रेनिंग लिया गया। लेकिन ये क्या है कि अवेयरनेस है, बहुत सारा ऐसे एफर्ट्स चल रहा है टीबी प्रोग्राम के तरफ से भी कि पंचायत को ऑनबोर्ड किया जाए कि ये कैंपेन अच्छी तरह से हमें हमें आगे ले जा सके, इसीलिए बहुत एफर्ट्स हो रहा है। लेकिन इसका एक पॉइंट क्या है कि पंचायत के लोगों के लिए ये सारे नया टर्म्स है, नया ये हेल्थ टर्म्स जो हम टीबी के प्रोग्राम में जो यूज करते हैं, ये सब नया नया टर्म्स है और ये कॉन्सेप्ट्स भी बहुत नया है उनके लिए। तो एक कांस्टेंट सपोर्ट की जरूरत है, सिर्फ वन टाइम ट्रेनिंग से नहीं होगा, कांस्टेंट सपोर्ट रहना है। और जो मॉनिटरिंग का काम जो करना है वो तो कंटिन्यूस होनी चाहिए, एक बार करके नहीं छोड़ना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप अगर पूरा आप नहीं कर रहे हो मॉनिटर, देन ऑलवेज टीबी खत्म इसीलिए नहीं हो रहा है कि पीपल डिसकंटिन्यू मेडिकेशन। पर मेरा सवाल ये है कि सरपंच और जो है या उसका जो पंचायत सिस्टम है वो लोकल गवर्नेंस के लिए है, उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, उनका अपना एक यू नो फ्रेमवर्क होता है काम करने का। अब उनको ये हेल्थ टारगेट दिया गया है, जैसे कि आपने बताया कि उनको ट्रेनिंग है नहीं, उनके लिए ये सारे टर्म्स बहुत नए हैं। एंड इट्स ऑल्सो पोलिटिकल यूनिट, पंचायत इज इलेक्शन के थ्रू वो लोग बनते हैं, इट्स अ पोलिटिकल यूनिट। तो उनको क्या मतलब, कौन फ्रंटलाइन वर्कर्स के हेल्थ वर्कर के साथ उनका क्या कनेक्शन रहेगा, और हाउ विल दिस प्रोसेस प्ले आउट प्रैक्टिकली? जैसे आशा वर्कर्स अभी भी मेरे ख्याल से ये काम तो करती हैं, मतलब स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट टीबी इज वन ऑफ द वर्क दैट आशा वर्कर्स ऑलरेडी डू। तो फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ सरपंच किस तरीके से काम करेंगे, एंड सरपंच का मेन काम क्या, सिर्फ ओवर लाइक सिर्फ ये देखना होगा कि ये काम हो रहा है, मॉनिटरिंग करना होगा कि वेदर द प्रोग्राम इज बींग इम्प्लीमेंटेड करेक्टली और नॉट।
0: यस, सो एब्सोल्युटली राइट। सो ये हमें एक एक इट्स नॉट एन ईजी टास्क, ओके, इसके लिए हमें बहुत सारे एंगेज करने चाहिए। तो आपको पता ही होगा कि VHSNC यानी कि विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी जो है वो हर पंचायत की एक सब कमिटी है, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी, वो हर पंचायत में होना ही होना है। लेकिन अलग रीजंस के लिए बहुत सारे पंचायत में वो नहीं है, या नहीं है यानी पेपर में होंगे लेकिन डिफंक्ट है, ऐसा होगा। तो ये एक एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी है उनको रिवाइव करने के लिए, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड टारगेट भी है। सो ये विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी VHSNC वो एक सब कमिटी है एग्जिस्टिंग ग्राम पंचायत के, और उनका जिम्मेदारी है जो पंचायत के जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम एक्टिविटी मॉनिटरिंग जो भी है उसका उसका जिम्मेदारी VHSNC का है। तो ये VHSNC के जरिए से, और अभी जो आयुष्मान भारत इनिशिएटिव जो है उसके अंतर्गत हमें ये जन आरोग्य समिति है उनको भी इन्वॉल्व करके ये कैंपेन हम बहुत बहुत इफेक्टिव रूप से हम कर सकते हैं। तो अगर हम अपना पेपर में देखें तो हम अपॉर्चुनिटीज में लिखा है कि VHSNC को रिवाइव करने के लिए ये कैंपेन बहुत अच्छा रहेगा, उन्हें अपने हेल्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने गांव के हेल्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो ये लॉन्ग टर्म में सिर्फ टीबी के लिए ही नहीं, सारे हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव होगा।
1: हाँ जी बिल्कुल। तो मुझे अब ये समझ रहा है कि एक टीबी मुक्त पंचायत का डेफिनेशन क्या है।
0: हाँ, सो तो टीबी मुक्त पंचायत के लिए को डिफाइन करने के लिए ये कैंपेन यानी कि ये इनिशिएटिव में चार पांच इंडिकेटर्स दिया गया है जो हमारे पेपर में मेंशन है। चार पांच इंडिकेटर्स दिया गया है जो साल भर ईयर वाइज मॉनिटर करके ये पंचायत के साइड से जाएगा, एक टीबी मुक्त का क्लेम जाएगा डिस्ट्रिक्ट टीम के ब्लॉक की तरफ से और ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट की तरफ, डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिस की तरफ। फिर डिस्ट्रिक्ट से एक वेरिफिकेशन होगा ये जानने के लिए कि ये क्लेम सही है या नहीं, वो तो जनवरी फरवरी उस टाइम पे होता है, और उसके हिसाब से दे द पंचायत विल बी सर्टिफाइड टीबी मुक्त पंचायत। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस। लेकिन ये बात, सॉरी,
1: इंडिकेटर्स क्या है, कौन सी इंडिकेटर?
0: इंडिकेटर, या सो तो इंडिकेटर्स है, एक है प्रिजम्प्टिव टीबी एग्जामिनेशन रेट, मतलब जो जो लोग अपने सिम्टम्स होते हैं उन्हें जो फोर कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ टीबी होते हैं उन्हें प्रिजम्प्टिव टीबी बताते हैं। तो प्रिजम्प्टिव टीबी होने वाले लोगों को, कितने लोगों को एग्जामिन किया है, टेस्टिंग किया है, वही है प्रिजम्प्टिव टीबी एग्जामिनेशन रेट। तो इसका भी एक कट ऑफ दिया गया है। केस नोटिफिकेशन रेट यानी कि एक्चुअल टीबी केसेस कितना हो रहा है उसका भी एक कट ऑफ दिया गया है। और ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग यानी कि जो जो पेशेंट कंफर्म्ड होते हैं उनको ड्रग सेंसिटिविटी का टेस्टिंग जो है यानी कि ड्रग्स काम कर रहे हैं या नहीं, ये टेस्टिंग कितने लोगों को मिलता है इसका भी एक कट ऑफ है। निक्षय पोषण योजना कितने लोगों को मिलते हैं, निक्षय मित्रा सपोर्ट कितने लोगों को मिलते हैं, ये सब इंडिकेटर वाइज है और उसका कट ऑफ दिया गया है, उसके हिसाब से क्लेम का वेरिफिकेशन होगा। वो क्लियरली डिस्क्राइब्ड है टीबी मुक्त पंचायत के गाइडलाइंस जो सेंट्रल टीबी डिविजन ने रिलीज किया है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया ये क्वाइट टेक्निकल टर्म्स है, जैसे प्रिजम्प्टिव टीबी, टीबी केस नोटिफिकेशन, ये सब टीबी प्रोग्राम वालों के हेल्प के बिना पंचायती राज के लोग अकेले नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत साइंटिफिक टर्म्स है। तो कॉन्स्टेंट हैंड होल्डिंग वो बहुत जरूरी है इस कैंपेन को आगे बढ़ाने में। और सिर्फ ये बात नहीं, जैसे हमने हमने यहाँ पुणे रूरल में जो काम किया, मैं एक एनजीओ से एसोसिएटेड थी उस समय पिछले साल, तो उस समय हमने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर से हमने ऑफिशियली कोलैबोरेट किया और हमने क्या किया, हमारे फील्ड प्रोजेक्ट एरिया में 22 विलेजेस है, तो उस सारे ग्राम पंचायत्स में हम जाके पहले एज अ स्टार्टिंग स्टेप वी डिड सेंसिटाइजेशन अबाउट टीबी मुक्त पंचायत इनिशिएटिव, ताकि जब डिस्ट्रिक्ट टीबी वाले लोग आते हैं तो उन्हें आसान हो जाते हैं इन लोग ग्राम पंचायत वालों से बात करने के लिए कि बैकग्राउंड सेट किया है हम लोगों ने। तो ऐसे हमें लोकली थोड़ा एक्सपर्टीज भी यूज करना पड़ेगा ये कैंपेन को आगे बढ़ाने में।
1: जी बिल्कुल, आप कम्युनिटी रेडियो पे हैं, कम्युनिटी रेडियो के श्रोता आपको सुन रहे हैं और आप जमीन से जुड़ी हुई हैं, काफी सारा ग्राउंड वर्क करती हैं टीबी से रिलेटेड, तो क्या कहना होगा, आपका क्या मैसेज होगा लोग जो आपको सुन रहे हैं कि क्या भ्रम होते हैं या क्या गुड प्रैक्टिसेस हैं जिससे कि टीबी की लड़ाई के अगेंस्ट हमको सहायता मिल सके?
0: लोगों को मुझे यही बताना है कि टीबी ठीक होने वाली बीमारी है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर टीबी होता है तो दवाई लेना हमारा जिम्मेदारी है क्योंकि ये सिर्फ हमें ही नहीं अफेक्ट करते, हमारे सराउंडिंग आसपास में जो जो जो लोग हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी इसका नुकसान होते हैं क्योंकि ये हवा से फैलती है। तो इसीलिए टीबी की टाइम में जांच कराना और दवाई लेना और पूरी तरह से दवाई लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और टीबी के जो चार इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं जो है खांसी, 2 वीक से ज्यादा खांसी, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, या फिर 2 हफ्ते से ज्यादा फीवर है, या फिर आपके बलगम में खून है, या फिर आपको वेट लॉस है यानी कि वजन कम हो जाती है, अगर ऐसे होता है कि इवनिंग में शाम को बुखार आती है और नाइट में स्वेट्स होती है, नाइट में थोड़ा स्वेट, नाइट स्वेट्स बोलते हैं, ऐसे होते हैं, ये सब है टीबी के मुख्य लक्षण। अगर ऐसा कुछ है तो आपको नजदीकी आरोग्य केंद्र से जांच करवाना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग, हमारे देश के 70% लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें सिम्टम्स होते हैं लेकिन वो उसे इग्नोर करते हैं। और फिर हम कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में पहुंच जाते हैं और इसी से टीबी की कॉम्प्लिकेशंस और मृत्यु हो जाती है। तो टीबी एक ऐसी बीमारी नहीं है, ये पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। इसके बारे में बताने में आप बिल्कुल ऐसा कोई हेसिटेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है, जो सांस ले रहा है उसको टीबी हो सकता है। तो
1: जी, तो
0: हाँ
1: लेकिन गांव दराज में काफी सारे भ्रम होते हैं टीबी को लेके, बहुत सारा स्टिग्मा भी अटैच होता है, और उससे कैसे लड़ा जाए? कई तो
0: हाँ
1: होते हैं,
0: तो
1: हम जैसे
0: यही
1: हम खुद बहुत सारा काम करते हैं टीबी को लेके। तो अभी मैं केस स्टडीज पढ़ रही थी, ऐसे 4-5 केस स्टडी आ गए जिसमें टीबी की वजह से शादियां टूट गई हैं, तो इसका सोशल कॉस्ट भी बहुत हाई होता है।
0: यस, ये अक्सर हो जाता है कि लोग टीबी से एक ऐसे स्टिग्मा जो जो ऐसे है वो जैसे पुराने जमाने में होता है वैसा अब भी है, लेकिन कम हो रहा है क्योंकि लोगों को ऐसा अवेयरनेस मिल रहा है। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि टीबी है, ऐसे बताने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टीबी एज आई टोल्ड यू पूरी तरह ठीक हो सकती है, बस दवाई लेना काफी है। और टीबी मुक्त पंचायत में एक इम्पोर्टेंट फंक्शन जो पंचायत का है वो है कि ये स्टिग्मा, इश्यू ऑफ स्टिग्मा को एड्रेस करना, क्योंकि अगर पीपल इन पावर यानी कि पंचायत के जो लोग हैं वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, अगर वो अपने सारे सारे अपॉर्चुनिटीज में टीबी के बारे में बात करेंगे तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। उन्हें ये एक नैरेटिव बिल्ड करना है कि टीबी इस समथिंग क्योरेबल, तो उसके बारे में बात करना, हमें नॉर्मलाइज करना है, उसे ओपनली बताना है, टेस्ट करना है, डायग्नोस करना है, दवाई लेना है। तो इसीलिए हम अगर ओपनली इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो वो नॉर्मलाइज कभी भी नहीं हो जाएगा। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि अगर आपने टीबी बिना डायग्नोस किए, ऐसे ही बिना ट्रीट किए, बिना दवाई लिए ऐसे ही रखते हैं तो वो कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं। और जैसे आप जानते हैं टीबी एक ऐसी बीमारी है जो आप हमारे लंग्स जो लंग्स को इफेक्ट करते हैं वो है पल्मोनरी टीबी, जो हवा से फैलती है, और अलग प्रकार का टीबी है जो हर एक ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं, वो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो दोनों टाइप्स है टीबी का, पल्मोनरी या एक्स्ट्रा पल्मोनरी। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो सकती है, हमारे ब्रेन में हो सकती है, स्पाइन, बोन, किडनी, यूट्रस, तो इन सब का कॉम्प्लिकेशंस भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हमारे देश में बहुत सारे इनफर्टिलिटी केसेस, वंध्यता के जो केसेस है उसका मेन कारण है टीबी, अनडायग्नोस्ड, अनडिटेक्टेड, अनट्रीटेड टीबी जो है, यही है इनफर्टिलिटी का वन ऑफ द मेजर रीजंस इन आर कंट्री। और ऐसे टीबी मेनिंजाइटिस जो बोलते हैं, ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो लोग पैरालिसिस में चले जाते हैं स्पाइन की टीबी के वजह से, तो ऐसे अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो यही अच्छा है कि आप जल्द से जल्द उसे टेस्ट करके ट्रीट करें और पूरी तरह से दवाई ले ले, क्योंकि पूरे कोर्स जो 6 महीने, मिनिमम 6 महीने के होते हैं, जो एक्सटेंड हो सकती है अपने टिपिकल पेशेंट, आई मीन स्पेसिफिक पेशेंट के हिसाब से, जो 6 महीने की दवाई होती है वो पूरी तरह से लेना है। आधे में छोड़ने से ड्रग रेसिस्टेंट टीबी जो बोलते हैं उसका वो होने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए पूरी दवाई लेना बहुत जरूरी है।
1: थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे बिल्कुल भरोसा है कि हमारे श्रोता हमें जो पढ़ते हैं हेल्थ ऑन एयर पे, हमारे कम्युनिटी रेडियो के थ्रू जो हमें सुनते हैं, उन सबको इन बातचीत से काफी फायदा होगा। और टीबी के अगेंस्ट जो ये हमारी मुहिम है, जो फाइट है, वो चलती रहेगी, एंड वी विल ट्रूली बी अ टीबी मुक्त कंट्री एंड टीबी मुक्त पंचायत। थैंक यू, बाय बाय।
2: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है, इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
3: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: सुनो शारदा,
6: 94.5 FM। भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
7: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
6: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
7: इन समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
5: सुनो

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थाई होती हैं जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या है? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना। विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े। और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, एआई, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: लेकिन दोस्त अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: क्या आपको बुखार आ रहा है?
1: ये बुखार डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया का हो सकता है।
0: बुखार होने पर फौरन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर दिखाएं।
1: सिर, हाथ, पांव और पेट पर सामान्य पानी की पट्टी रखें।
0: बुखार के दौरान पानी, शिकंजी, ताजी फलों का रस और नारियल पानी जैसे तरल पदार्थों का ज्यादा सेवन करें।
1: हल्के सूती कपड़े पहनें और कमरे को ठंडा रखें।
0: डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा का सेवन ना करें। झोला छाप चिकित्सकों से बचें।
1: संचारी रोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर
0: 1800-180-5145 पर कॉल कर सकते हैं।
1: याद रखना, बुखार में देरी पड़ेगी भारी। यूनिसेफ के सहयोग से सुरु शादा 90.8 FM द्वारा ये जानकारी जनहित में जारी।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे, यानी कि ये पांच जूस। वो कौन कौन से पांच जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए पांच हेल्दी जूस जरूर पिए। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: टेस्टिंग और हाउसिंग सेंसर्स यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आम तौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: किसान मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान। और इस कार्यक्रम को आप सुनते हैं लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, देश की रक्षा में हमारे सैनिकों का योगदान महत्वपूर्ण है। गर्मी, बरसात और ठंड के मौसम में खुले आसमान के तले सीमा पर डटे रहते हैं और जरूरत पड़ने पर जान की बाजी लगा देते हैं। हमें अपने देश के सैनिकों पर गर्व है और इसी कारण हर देश प्रेमी सैनिकों के जज्बे को सलाम करता है और उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखता है। सैनिकों के हौसले से ही देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और करोड़ों लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और देश प्रगति कर रहा है। हमारे सैनिक सीमा की सुरक्षा के साथ ही देश पर आने वाली आपदा में भी पूरा सहयोग करते हैं। आपदा विशेषकर बाढ़ आने पर हमारे सैनिक जहां भी लगाए जाते हैं वहां लोगों की जान बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगा देते हैं और जाति धर्म से ऊपर उठकर संकट में पड़े हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए जुट जाते हैं। हमारे सैनिक देश की रक्षा करते हैं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और साथ ही किसी भी बाहरी या आंतरिक खतरे से देश की रक्षा करते हैं। सैनिक देश के लिए अपनी जान भी देने को हर वक्त तैयार रहते हैं। सैनिकों का काम केवल सीमा पर रक्षा करना ही नहीं होता, बल्कि वे आपात स्थितियों में भी नागरिकों की मदद करते हैं और प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं और अन्य संकटों के दौरान लोगों को बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे सैनिक देश के रक्षक हैं और उनकी सेवाओं को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उनके बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए और उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही देश के सैनिकों के सम्मान की, लेकिन किसान मित्रों यहाँ पर एक दिलचस्प बात आपको बताते हैं कि एक बार हमारे एक फौजी भाई और हमारे एक किसान भाई की मुलाकात होती है। दोनों में बातचीत होती है। एक तरफ हमारे जो किसान भाई हैं कह रहे हैं कि भाई हमारी जो मेहनत है वो आपसे ज्यादा है, क्योंकि हम ना बारिश देखते हैं, ना ठंड देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना बाढ़ देखते हैं, ना सूखा देखते हैं और दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं। उधर हमारे फौजी भाई ने कहा कि देखिए किसान भाई, हमारी जो मेहनत है वो आपसे ज्यादा है, हम दिन रात सीमा पर डटे रहते हैं, हम भी ना गर्मी देखते हैं, ना ठंड देखते हैं, ना बाढ़ देखते हैं, ना सूखा देखते हैं और ना भूख की परवाह करते हैं, ना प्यास की परवाह करते हैं और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सीमा पर डटे रहते हैं और पता नहीं कहां से गोली चल जाए उसका मुकाबला करने के लिए भी हम एकदम तैयार रहते हैं। इस तरह की नोक झोंक हमारे किसान भाई और फौजी भाई में हो जाती है। तो इसी मौके की रागनी किसान मित्रों आज आपको सुनवाते हैं। किस्सा रहेगा जय जवान जय किसान का। तो आइए सुनते हैं ये रागनी। कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना।
1: हम देश के वीर किसान खेत में।
2: सही बात है, बिल्कुल

किसान भाई सही है फौजी भाई, हमें आराम का सोना नहीं मिलता, लेकिन हमको भी नहीं मिलता फौजी भाई, कभी कभी तो

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना से ये देशभक्ति रागनी, किस्सा था जय जवान जय किसान का। किसान मित्रों, देश के खाद्यान्न उत्पादकों की वृद्धि के लक्ष्य को पूरा करने के लिए और आप किसान भाइयों की उत्पादकता में वृद्धि तथा वित्तीय अवस्था सुधारने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चलाया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत चावल, गेहूं, दालें, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलों की उत्पादकता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हमारे किसान भाइयों को बीज और खेती जैसी उपकरण संबंधी सुविधाओं को मुहैया कराया जा रहा है। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर ये मिशन भारत के किसानों को अच्छी पैदावार उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा होने के प्रयास में कार्यरत है। अब किसान मित्रों, आपको ये भी बता दें कि इस मिशन का आखिर उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य है चावल, गेहूं, दालें, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना, किसान भाइयों के लिए रोजगार के अवसर और अच्छी आय के अवसर देना, भारतीय कृषि व्यवस्था में सुधार करना और आगे बढ़ाना, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता में सुधार करने के लिए हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल के उद्देश्य को पूरा करना, किसानों की कार्यप्रणाली बेहतर बनाने के लिए पंप सेट, पानी के छिड़काव करने वाले यंत्र और पानी वाले पाइप वितरित करना। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। और आइए अब आपको एक रागनी सुनवाते हैं। कलाकार हैं रविंदर खालौर और लोकेंद्र, किस्सा रहेगा श्रवण कुमार का। तो आइए सुनते हैं श्रवण कुमार के किस्से से ये रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे श्रवण कुमार के किस्से से ये रागनी। कलाकार थे रविंदर खालोर और लोकेंद्र सिंह। किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, दुधारू पशु हमारे किसान भाइयों की आय को दोगुना करने और रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ पशु देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाते हैं। लेकिन कई बार पशुओं में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जिसके कारण पशुपालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में पशुपालकों को पशुओं को रोगों से बचाने के लिए पहले से ही सतर्क रहना चाहिए। पशुओं के प्रमुख संक्रामक रोगों के बारे में अगर हम बात करें तो वो हैं गलाघोटू, खुरपका, मुंहपका, लंगड़ी और तिल्ली या बागी रोग शामिल है। अगर इनका संक्रमण दिखे तो तुरंत किसान भाइयों, आपको पशुओं के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। किसान मित्रों, आपको बता दें कि खुरपका मुंहपका रोग, जिसको संक्षिप्त रूप में FMD कहा जाता है, ये बीमारी गाय भैंस में बड़ी शीघ्रता से फैलती है और ये बीमारी एक प्रकार के विषाणु से उत्पन्न होती है। ये रोग गाय भैंसों के अलावा भेड़ बकरियों और सूकरों में भी होता है। इस बीमारी में जीभ के नीचे मसूड़ों, थनों और खुरों में छोटे आकार के छाले फपोले पड़ जाते हैं। पशुओं को तेज बुखार होता है और जुगाली करना वो बंद कर देते हैं। दूध उत्पादन भी कम हो जाता है। पशुओं के मुंह से लार गिरने लगती है। थनों पर छालों से कभी कभी थनेला बीमारी भी हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में ये रोग स्वस्थ पशु के बीमार पशु के सीधे संपर्क में आने, पानी, घास, दाना, बर्तन, दूध निकालने वाले व्यक्ति के हाथों से, हवा से और लोगों के आवागमन से फैलता है। रोग के विषाणु बीमार पशु की लार, मुंह, खुर, थन में पड़े फपोलों में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अब किसान मित्रों, बात करते हैं कि बचाव कैसे किया जाए पशुओं का इन बीमारी से। तो बचाव के लिए 3 माह के ऊपर के सभी पशुओं का वर्ष में एक बार टीकाकरण जरूर करवाएं। ये रोग पशुओं को बरसात में अधिक होता है। इस बीमारी में पशु को तेज बुखार होता है और वो खाना पीना छोड़ देता है। उपचार के लिए आप अपने नजदीकी जो पशु चिकित्सक हैं उनसे सलाह लीजिए और पशु का उपचार करवाएं। लेकिन साल में 2 बार खुरपका मुंहपका बीमारी से बचाने के लिए अपने पशुओं का टीकाकरण जरूर करवाएं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना कि दुधारू पशुओं की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अब किसान भाइयों, आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम के आखिर में एक रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान और टीना पटौदी। किस्सा रहेगा हरिश्चंद्र तारामती का। तो आइए सुनते हैं सुनील चौहान और टीना पटौदी से ये रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान और टीना पटौदी से ये रागनी, खिस्सा था हरिश्चंद्र तारामती का। और अब किसान मित्रों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न किया जाए, आपसे अनुमति ली जाए। तो इसी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
2: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे TB में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही TB की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: मेहरबानो, आज ममता की आज्ञा पाके और रोहतास कमर डलिया हाथ में लेके फूल तोड़ने के लिए चल दिया मेहरबानो। केक के कुसौन रास्ते में हुए और जब रोहतास ने फूल तोड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाया तो भला के होया

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम में, यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या है। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाए। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: मनोज कायम लटकाए बैठा हो, क्या बात होगी?
2: अब कहो बताओ भैया, दो दो बेर कोविड को टीका लगवायो, हम सो कही यासु जो प्रमाण पत्र मिलेगो ना, आगे बड़ा काम आएगो।
1: तो क्या हुआ, मिलो ना? तो
2: मिलो तो है, पर याय देख देख के अपना माथा ठोक रो हूँ।
1: क्यों, तेरे नाम में कोई गलती है? पिताजी को नाम कुछ और गेर दियो
2: ना। वे दोनों तो ठीक है, फोटो भी ठीक है।
1: तो क्या बात है
2: भैया, जब मोबाइल दुनिया हाथ में ले घूमो ना, वाकु नंबर ही गलत गेर दियो।
1: ए तो यार, इतने परेशान होने का बात है, छोटी सी गलती है, हो जावे कभी कदार इस गलती।
2: तो अभी ठीक ना होवे?
1: बिल्कुल होगी। यूं मान लो, अगर या के जैसी दूसरी गलती है, जैसे तुमने दूसरो टीको लगवा लिया हो पर वो प्रमाण पत्र में ना लिखो गया हो, विदेश यात्रा को प्रमाण पत्र पे पासपोर्ट को विवरण ना लिखो गया हो, या कोविन पोर्टल पे लॉगिन करने को कोई दूसरे नंबर को उपयोग करो गए हो, ये सारी गलती भी ठीक हो जावे। लेकिन एक बात याद रहे, यो बस एक बार ठीक हो गए।
2: अरे एक बार तो ठीक हो जाए, पर याकू करनी क्या होगी?
1: कुछ ज्यादा ना, बहुत आसान है। कंप्यूटर इंटरनेट की जाए थोड़ी सी भी जानकारी है ना, वो आदमी अपने आप या घर बैठे ठीक कर देगा। सबसे पहले इंटरनेट ब्राउजर पे जाके cowin.gov.in टाइप करो। वाके बाद कोविन के होम पेज पे ऊपर दाईं ओर कोने में दिए हुए रजिस्टर साइन अप पे क्लिक करो। फिर जा मोबाइल नंबर को उपयोग तुमने टीकाकरण के टाइम पे करो, वह नंबर डालो और 6 अंकन को एक OTP आवे, वह वेरीफाई करके तुम्हारी प्रोफाइल खुल जाएगी। वहां पे तुम्हारे टीकाकरण की स्थिति दिखाई दे जावे। प्रमाण पत्र में सुधार करने को ऊपर दाईं ओर दिए हुए रेज द इशू पे क्लिक कर दो और वह प्रक्रिया पूरा कर लो। बस होगा तुम्हारा काम, चुटकी बजा दी। या के अलावा अगर तुम्हें कोविड के टीकाकरण प्रमाण पत्र में कोई भी त्रुटि है, तो आपको मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी से भी संपर्क साध सको।
2: रही रही ना बात, इब करूं प्रमाण पत्र में सुधार।
1: यू जानकारी यूनिसेफ और सुनो शारदा 90.8 FM की ओर से जनहित में जारी।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। यह है ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। महिलाओं की जब बात आती है तो उनके सम्मान की बात आती है, उनके हक की बात आती है, और आज का समय इतना बदल गया है कि महिलाएं पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। और वहीं अगर हम पुराने समय की बात करें तो वाकई उन बातों को देखकर, सुनकर, पढ़कर कहीं ना कहीं आपका हमारा दिल दुखता है। वक्त बदला है, सोच बदली है, और हम समय को बदलना चाहते हैं, यानी कि उस रूढ़िवादी सोच को बदलना चाहते हैं। हम आपको उन अधिकारों के बारे में बताना चाहते हैं जो महिलाओं के अधिकार हैं, यानी कि आज मैं बात करने वाला हूं महिलाओं के कानूनी अधिकार के बारे में। उससे पहले जरूरी यह है कि ये आवश्यकता क्यों होती है कि महिला के कानूनी अधिकार क्या क्या हैं। मुझे लगता है कि इस चीज की आवश्यकता इसलिए होती है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा होता है, तब उन अधिकारों के बारे में जानना, समझना, पढ़ना और जीवन में गढ़ना तब ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसीलिए आवश्यक है महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जानना। बात करते हैं महिलाओं का सशक्तिकरण। इसके अंतर्गत इस प्रक्रिया में महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। वो अपनी कार्यसूची स्वयं निर्धारित करने के जरिए अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं, कुशलताएं अर्जित करते हैं, या यूं कहें कि उनकी कुशलताओं और जानकारी को मान्यता मिलती है। उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, समस्याएं सुलझती हैं और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। ये एक प्रक्रिया और परिणाम दोनों है। सशक्तिकरण से महिलाओं की एक निर्धारित परिवेश में जीवन की रणनीति से संबंधित विकल्प चुनने की योग्यता बढ़ती है, जहां पहले इस योग्यता को नकार दिया गया था। अब बात करते हैं सशक्तिकरण के घटक के बारे में। इसके अंतर्गत बात आती है अपना महत्व समझने की भावना, यानी कि हम किसी के लिए कितने खास हैं, इस अहमियत को जानना समझना वाकई बहुत जरूरी है। दूसरी बात, विकल्प रखने और निर्धारित करने का अधिकार। तीसरा बिंदु है अवसरों और संसाधनों तक पहुंच रखने का अधिकार। चौथा बिंदु है घर और बाहर दोनों जगह अपने जीवन को स्वयं नियंत्रित रख पाने का अधिकार। पांचवा बिंदु है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक और आर्थिक न्याय व्यवस्था के लिए सामाजिक बदलाव की दिशा को प्रभावित करने की योग्यता। अब सशक्तिकरण से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, वो मैं अब आपसे साझा करने जा रहा हूं, जैसे कि सामर्थ्य, पहुंच, विकल्प, सकारात्मक सोच, शिक्षण और विकास, आत्मविश्वास, आत्मछवि और नैतिकता। इन सारी चीजों को मिलकर सशक्तिकरण बनता है। अब बात करते हैं महिलाएं और जेंडर के बारे में। भारत के संविधान में जेंडर समानता के सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। संविधान महिलाओं को समानता का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन अभी भी निर्धारित किए गए लक्ष्यों और भारत में महिलाओं की स्थिति की वास्तविकता में भारी अंतर मौजूद है, और इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं की, खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादक संसाधनों तक पर्याप्त पहुंच नहीं है। अगला बिंदु है जेंडर को समझना। इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूं जेंडर का अभिप्राय पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक भिन्नताओं से है, जो समय के साथ सीखी गई हैं और परिवर्तनीय हैं, और जो विभिन्न संस्कृतियों के बीच और संस्कृतियों के भीतर मौजूद होते हैं। इस तरह की विशिष्टताएं और संबंध सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं और इन्हें समाजीकरण की प्रक्रियाओं के जरिए सीखा जाता है। एक निर्धारित परिवेश में किसी महिला या पुरुष से क्या उम्मीद की जाती है, किन किन बातों की अनुमति दी जाती है, क्या और कब सम्मानित किया जाता है, इसका निर्धारण जेंडर करता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय के जरिए ये बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। वाकई एक रिसर्च के जरिए ये बातें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, और सुनो शारदा 90.8 FM ये बातें आप तक पहुंचा रहा है। चलिए, ये जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि प्लीज आप मेरे साथ यूं ही जुड़े रहेगा, क्योंकि जानकारी वाकई बहुत खास है, अहम है, हमारे अधिकारों की बात है, हमारे माताओं के, बहनों के अधिकारों की बात है, यानी कि बात हो रही है कानूनी
अधिकारों के बारे में, महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में। कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ।

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं हूं गगन आपके साथ। आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसा खास विषय जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, समझना चाहता है, और इस बात की बात तब आती है जब हमें लगता है कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तब हम जानने की समझने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि महिलाओं के, खासकर मैं बात कर रहा हूँ महिलाओं की, तो महिलाओं के कानूनी अधिकार क्या क्या हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी बातें हुई और कुछ आगे बात करते हैं। जेंडर सामाजिक रचना है, लिंग एक शारीरिक रचना है, जेंडर परिवर्तनीय है और ये समय समय पर तथा संस्कृति से संस्कृति तक परिवर्तित होता रहता है। लिंग स्थायी है, आसानी से बदला नहीं जा सकता है।

सहायता करता है। अब बात करते हैं जेंडर भूमिकाएं। किसी समाज, समुदाय या अन्य सामाजिक समूह में जेंडर भूमिकाएं उन गतिविधियों, कार्यों, जिम्मेदारियों के अनुसार निभाई जाती हैं जो उस समय समुदाय में पुरुष या महिला के अनुरूप समझी गई हैं। जेंडर भूमिकाएं व्यवस्था के अनुसार और समय के साथ साथ बदलती हैं। कुछ ऐसे कारक हैं जिनके जरिए जेंडर भूमिकाओं को आकार दे सकते हैं और उनमें बदलाव ला सकते हैं। बात करते हैं जेंडर भूमिकाओं को प्रभावित करने वाले कारक। उम्र, वर्ग, नस्ल, जातीयता, धर्म और विचारधाराएं, भौगोलिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण। अब और आगे बढ़ते हैं, जेंडर भूमिकाओं के प्रकार क्या हैं वो भी हम समझते हैं। ये बेसिक बातें जो कि समझना हमारे आपके लिए वाकई बहुत जरूरी है, ये बेसिक बातें मैं आपको बताकर चल रहा हूं। प्रजनन भूमिका, उत्पादक भूमिका, सामुदायिक प्रबंधन भूमिका, सामुदायिक राजनीतिक भूमिका। प्रजनक भूमिका में बात करते हैं गृहस्थी का रख रखाव और परिवार के सदस्यों की देखभाल। दूसरा बिंदु है गर्भ धारण और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी तथा घरेलू कार्य। तीसरा बिंदु है अक्सर ये कार्य लड़कियों और महिलाओं द्वारा ही किए जाते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, अक्सर हमने अपने घरों में ऐसा देखा है। लेकिन वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं, समय बदल रहा है, सोच बदल रही है। अब बात करते हैं उत्पादक भूमिका के विषय में। चीजों का उत्पादन और विनिमय मूल्य के साथ सेवाएं। दूसरा बिंदु है पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किए गए कार्य। तीसरा बिंदु है पुरुषों के उत्पादक कार्य की तुलना में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले उत्पादक कार्यों का मूल्य कम आंका जाता है। बात करते हैं सामुदायिक प्रबंधन भूमिका के विषय में। अवैतनिक स्वैच्छिक कार्य जो खाली समय में किया जाता है। दूसरा बिंदु है महिलाओं द्वारा अनिवार्य रूप से की जाने वाली गतिविधि जो उनकी प्रजनक भूमिकाओं के विस्तार के रूप में की जाती है, जिससे सामुदायिक संबंध स्थायी रहते हैं। पानी, स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा जैसे समुदाय द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले संसाधनों की व्यवस्था और रख रखाव सुनिश्चित करना, ये सारी बातें आती हैं सामुदायिक प्रबंधन भूमिका के जरिए। अब बात करते हैं सामुदायिक राजनीतिक भूमिका। आमतौर पर अवैतनिक नकद भुगतान पर अथवा स्तर या शक्ति के जरिए किए जाने वाला कार्य। दूसरा बिंदु आता है ये गतिविधियां अनिवार्य रूप से पुरुषों द्वारा की जाती हैं। अब कुछ ऐसी बातें हैं जेंडर से संबंधित मुद्दे हैं, ये बातें भी मैं आपको बताना चाहता हूं। भेदभावपूर्ण रवैया, कुछ ऐसी बातें आम जिंदगी में हमें देखने को मिलती हैं और ऐसा होता भी है। इसके विषय में बात करते हैं तो बात ये सामने आती है कि जेंडर असमानताएं केवल आर्थिक नहीं होती बल्कि विचारों, व्यवहारों और रवैये में प्रतिबिंबित होती हैं, जो अक्सर जेंडर पुरानी सोच पर आधारित होते हैं और पुरुषों और महिलाओं के मामले में अलग अलग होती हैं और ये भेदभाव हमें देखने को भी मिलता है। बात करते हैं परिवारों के भीतर असमानताएं। परिवार के भीतर मोल तोल और निर्णय लेने की क्षमता और साधनों तक पहुंच में भेदभाव के प्रमाण मिलते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अक्सर आपके घर में, हमारे घर में या पड़ोस में ये सारी चीजें हमें देखने को मिल ही जाती हैं, है ना। चलिए वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं आप जाएगा मत, मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। एक खास जानकारी महिलाओं से जुड़ी हुई, उनके कानूनी अधिकार के बारे में ये बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सो स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ।

एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ। आज हम जो बात कर रहे हैं एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए और ये काम सामुदायिक रेडियो स्टेशन भले भांति अच्छी तरीके से कर रहा है और यही बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कुछ हेडिंग्स के बारे में बात की, उसके अंतर्गत आई हुई बातों को मैंने आप तक पहुंचाया। अब बात करते हैं घरेलू गैर भुगतान वाला क्षेत्र, ये एक हेडिंग है। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि परिवार की देखभाल और परिपोषण करने की अधिकांश जिम्मेदारी महिलाओं के कंधे पर होती है और ऐसा अक्सर हमने देखा है। ये कार्य महिलाओं के काम के बोझ को बढ़ाते हैं और अक्सर महिलाओं द्वारा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में बाधक होते हैं। घर की महिलाएं काम कर भी आएं और घर को भी संभालें और उसके बाद गृह क्लेश जब मिलती है तो कहीं ना कहीं दिल तो दुखता है ना। चलिए आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था के भीतर जेंडर के आधार पर श्रम का विभाजन। इसमें बात सामने आती है महिलाएं और पुरुष व्यवसायों में अलग अलग तरह से वितरित हैं। महिलाएं कम भुगतान वाली नौकरियां और निम्न स्तरीय कार्य से लगी हुई हैं या जुड़ी हुई हैं और शिक्षा, कुशलताओं, संपत्ति और ऋण जैसी उत्पादक परिसंपत्तियों तक उनकी पहुंच पुरुषों के मुकाबले कम होती है। अगला हेडिंग है महिलाओं के खिलाफ हिंसा। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि जेंडर आधारित हिंसा से भी जेंडर असमानता का पता चलता है। ये हिंसा चाहे महिला के अंतरंग भागीदार द्वारा की जाए अथवा महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक व्यापार, बलात्कार, छेड़छाड़ और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के जरिए होती है। अगला विषय है राजनीतिक अधिकारों में असमानता, यानी निर्णय लेने, प्रतिनिधित्व आदि तक पहुंच। इसके अंतर्गत बात सामने आती है राजनीतिक प्रक्रियाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है तथा निर्णय लेने संबंधी औपचारिक ढांचों जैसे सरकारों, सामुदायिक परिषदों और नीति निर्माण करने वाली संस्थाओं के भीतर जेंडर संबंधी अंतर तथा असमानता मौजूद है। अगला विषय कानूनी स्थिति और अधिकारों में अंतर। इसके अंतर्गत बात सामने आती है प्रथाओं द्वारा महिलाओं के व्यक्तिगत स्थिति, सुरक्षा, जमीन जायदाद, विरासत और रोजगार के अवसरों जैसे विषयों में समानता के अधिकारों को नकार दिया जाता है। अब हम बात करते हैं जेंडर को मुख्य धारा में लाना। जेंडर को मुख्य धारा में लाने का अर्थ है एक बुनियादी मूल्य के रूप में जेंडर समानता लाना जो विकास के विकल्पों और प्रथाओं के रूप में प्रकट हो। इसके अंतर्गत बात यह भी आती है इसका अर्थ है कि महिलाएं और पुरुष समान रूप से निर्णय निर्माताओं के रूप में भाग लें। अगला विषय है जेंडर को मुख्य धारा में लाने के मुख्य सिद्धांत। इसके अंतर्गत बात सामने आती है मुद्दों और समस्याओं की शुरुआती पहचान इस तरीके से की जानी चाहिए कि जेंडर संबंधी अंतर और असमानता पता चल सके। अवधारणा को व्यवहार में बदलने के लिए स्पष्ट राजनीतिक इच्छा शक्ति तथा पर्याप्त संसाधनों का निर्धारण होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है बिंदु, जिसे हम कह रहे हैं निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी स्तरों पर महिलाओं की उचित भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। अगला बिंदु है जेंडर को मुख्य धारा में लाने की प्रक्रिया के लिए लक्षित महिला विशिष्ट नीतियों और कार्यक्रमों तथा सकारात्मक कानूनों को बदलने की जरूरत नहीं है और न ही जेंडर इकाइयों और केंद्रीय बिंदुओं से अलग रहने की जरूरत है, बल्कि जेंडर समानता को बढ़ावा देने वाली विकास प्रथाओं का समर्थन है। अब बात करते हैं अधिकार की। पहला पॉइंट है अधिकार कुछ करने की कानूनी, सामाजिक या नैतिक आजादी है। दूसरा बिंदु है भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार व्यक्ति की भलाई और समाज के व्यापक हित के लिए अनिवार्य है। मौलिक अधिकार यानी कि समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये कुछ ऐसी खास बातें हैं जिनके विषय में आज मैं आपको बता रहा हूं। और क्या खास बातें हैं इसके विषय में लगातार बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और पहुंचाएंगे जरूर।
सुनो शादा 90.8 FM, जनहित में एक बात रखता है कि हम सबको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। सच बात यह है कि वो हैं तो हम हैं, और कहा जाता है कि एक घर की महिला घर की लक्ष्मी होती है ना। सो प्लीज महिलाओं का सम्मान करें, अपना भी ख्याल रखें, उनका भी ख्याल रखें, और बस सुनते रहें सुनो शारदा 90.8 FM। ये कार्यक्रम आपको मेरे साथ कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। 01204060205 अर्थात 01204060205। इसके अलावा सोशल मीडिया के जो तीनों प्लेटफॉर्म्स हैं उसके जरिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक पेज। चाहे तो आप हमारे यहाँ विजिट भी कर सकते हैं और मुझसे आप मुलाकात कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनुशादा 90.8 एफएम में, यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट हैं 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और type 2 diabetes के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हे गाइस व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878 9370। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800 11 66 66। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
2: For more information, please call Dr. Ramneet 9878 93770. Seats are limited. Hurry up, कहीं देर ना हो जाए।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सबसे 10 से 19 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। ये खून में आयरन की मात्रा बढ़ाए, दिमाग और शरीर एकदम सॉलिड बनाए। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। एनीमिया मुक्त भारत।
1: सही पोषण, देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड। क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने, केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए चलते हैं कक्षा एक की ध्वनि शाला में।
1: प्यारे बच्चों, आप सभी को उषा दीदी का नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अच्छी बात है कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे से हैं, कुशल पूर्वक रह रहे हैं। तो बच्चों, आज हम कहां से शुरू करें? जो आप कहेंगे हम वहीं से शुरू करेंगे, हम वही बात करेंगे जो आप कहेंगे। तो ठीक है, तो हम आज शुरू करते हैं स्कूल के पहले दिन से। हमने स्कूल में पहला दिन कैसे बिताया ये सब आपको याद होगा। मुझे भी तो याद है अपने स्कूल का पहला दिन। ये अलग बात है कि बहुत बहुत बहुत साल बीत गए जब मैं स्कूल में पहली बार गई थी। ये 1857 की बात नहीं है, ये बात है 1976 की, जब मैं स्कूल में पहली बार गई थी। तब तक तो आप में से कोई भी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ होगा। तो पता है स्कूल का पहला दिन कैसा बीता था कल्याणी का? नंदिनी दीदी ने सब बच्चों को खूब सारे गीत गवाए थे और कहानी सुनाई थी। दरअसल नंदिनी दीदी कल्याणी की टीचर हैं, जो कक्षा एक को पढ़ाती हैं। तो नंदिनी किसका नाम है? शाबाश, कल्याणी की टीचर का नाम है। आपको अपनी टीचर का नाम याद है? शाबाश, तो आपको भी अपनी टीचर का नाम याद है। आपकी टीचर का क्या नाम है? बबीता। अच्छा, और अमरजीत ने क्या बताया? नंदिनी। वेरी गुड, क्योंकि नंदिनी और अमरजीत तो एक ही क्लास में पढ़ते हैं। मुझे भी अपनी टीचर का नाम आता है, याद है। उनका नाम है मिसेस आनंद। वे बच्चों को बहुत प्यार करती थी। तो बच्चों, आपको अपनी टीचर का नाम याद है और मुझे अपनी टीचर का नाम याद है। अच्छा, तो हम एक काम करें, आज आप अपने स्कूल की एक बात बताइए और मैं अपने स्कूल की एक बात बताती हूँ। तो सारे बच्चे तैयार हैं? तो ठीक है, हम शुरू करते हैं अपने अपने स्कूल की बातें। तो शुरू मैं करती हूँ, उसके बाद आप शुरू कीजिएगा। तो मेरे स्कूल में, जहां मुझे याद आ रहा है, खूब सारे कमरे थे। आप कहेंगे स्कूल में तो कमरे होते ही हैं, इसमें कौन सी नई बात है? तो आपने कहा कि हमारे स्कूल में भी कमरे थे। मैंने कहा हमारे स्कूल में एक खूब बड़ा सा मैदान था। आप कहेंगे हमारे स्कूल में भी खेल का बहुत बड़ा सा मैदान था। मैंने कहा हमारे स्कूल में जगह जगह गड्ढे थे और उसमें बालू भरी हुई थी। अब आपका सिर चकराने लगा होगा कि स्कूल के मैदान में गड्ढे और गड्ढे में बालू, ये क्यों? तो ये इसलिए क्योंकि हम वहां खेलते थे। हम वहां लॉन्ग जंप का काम करते थे, तो एक जगह से कूदकर हमें दूसरी जगह जाना होता था। तो हम ऐसी कूद मारते थे, अगर मिट्टी नहीं होगी, बालू रेत नहीं होगी, तो चोट लगने का डर रहता है। इसलिए वहां गड्ढा खुदा हुआ था और उसमें खूब सारी बालू भरी हुई थी। आपने कहा हमारे स्कूल में तो ऐसी कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो फिर हमारे स्कूल में क्या था? हमारे स्कूल में खूब सारे झूले लगे हुए थे, तरह तरह के झूले। आपने कहा हमारे स्कूल में भी झूले लगे हुए थे। अब आप कहेंगे कि अब हम शुरू करते हैं अपने स्कूल की बात। तो आपने कहा हमारे स्कूल में खूब बड़ा सा कमरा था और वहां तरह तरह के यंत्र रखे हुए थे, कंप्यूटर्स रखे हुए थे। तो मैं कहूंगी हमारे स्कूल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, यानी कि हमारे जमाने में स्कूल में कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, तब तक तो कंप्यूटर आए भी नहीं थे, इसलिए हमारे स्कूल में कंप्यूटर नहीं थे। तो ये बातचीत तो बहुत लंबी होती चली जाएगी। आप अपने दोस्तों के नाम बताइए, मैं अपने दोस्तों के नाम बताती हूँ। तो आपने कहा, मेरे दोस्त का नाम है प्रियंका, नीरा, इरा, गर्वित, अनमोल, अभिषेक, आकांक्षा और मसूद। शाबाश, तो आपने अपने इतने सारे दोस्तों के नाम बताए। अब मैं अपने दोस्तों के नाम बताती हूँ जो मेरे साथ क्लास एक में पढ़ते थे। तो उनमें सबसे जो मेरी करीबी दोस्त थी, उनका नाम था डिंपल। तो मेरी पहली दोस्त है डिंपल, दीपिका, श्रुति, अभिषेक, रोहित, अमित, माधव, दुर्गा, भाव्या,

ध्यान से नाम लिखिएगा, और अगर नाम लिखने में कुछ गड़बड़ हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, बस आप तो अपने दोस्तों के नाम लिख डालिए। उधर आप लिखिए, इधर मैं लिखती हूँ। और जब आप नाम लिख ले तो हमें बता दीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, आपने अपने दोस्तों के नाम लिखे, मैंने अपने दोस्तों के नाम लिखे। अच्छा ये बताइए कि आपके ऐसे कितने दोस्त हैं जिनके नाम में शुरू की आवाज न है। ऐसे कितने दोस्त हैं जिनके नाम में शुरू की आवाज म है, और ऐसे कितने दोस्त हैं जिनके शुरू की आवाज में अ की आवाज है। यानी कि आपके और हमारे सभी दोस्तों के नाम में कोई ना कोई आवाज तो है, बिना आवाज के तो कोई नाम होगा ही नहीं। तो बच्चों आपने बताया दोस्तों के नामों में बहुत सारे आवाजें हैं, बहुत सारे अक्षर आते हैं और हर अक्षर की एक आवाज है। जैसे कल्याणी में क की आवाज है, नंदिनी में न की आवाज है, गर्वित में ग की आवाज है, मयंक में म की आवाज है, नीरा में न की आवाज है, नेहा में न की आवाज है, बबीता में ब की आवाज है, दीपक में द की आवाज है। तो आप सब अब क्या काम करेंगे, आप सभी बच्चे जो आपने नाम लिखे हैं अपने दोस्तों के, उनके नाम के पहले अक्षर पर आप घेरा लगा दीजिए। लगाया सब बच्चों ने? शाबाश। अगर घेरा टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या है ही नहीं, बस आप काम कीजिए। तो सब बच्चों ने अपने अपने दोस्तों के नाम के पहले अक्षर पर घेरा लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे और ये देखेंगे कि ऐसे कितने नाम हैं जिसमें शुरू का अक्षर एक जैसा है। तो समझे इस बात को दोबारा से, ऐसे हमारे कितने दोस्त हैं जिनके नाम में शुरू का अक्षर एक जैसा है। जैसे नंदिनी और नीरा और नेहा। तो नंदिनी में भी शुरू की आवाज है न, नेहा में शुरू की आवाज है न, और नीरा में भी शुरू की आवाज न है। आप ये देख पा रहे होंगे कि तीनों के नामों में जब न की आवाज हम लिखते हैं तो वह एक जैसी है। देखा आपने, पहचाना आपने? तो बच्चों आपने ये देखा कि जो आवाज जैसी होती है उसका एक आकार होता है, उसकी एक आकृति होती है जिसे हम अक्षर कहते हैं। तरह तरह के अक्षरों की तरह तरह की आवाजें होती हैं। अब आप सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हम तो बात कर रहे थे स्कूल के पहले दिन की और हम यहाँ अक्षर पे कैसे आ गए। ये तो बहुत मजेदार खेल है बच्चों। अगर हमने अपने दोस्तों के नाम लिख लिए हैं तो हम अक्षरों की पहचान भी कर लेते हैं, और फिर तो मजेदार गेम है कि किसके कितने दोस्त हैं जिनके नामों में शुरू की आवाज एक जैसी है। तो आपने नंदिनी, नीरा, नेहा में न को पहचाना। अच्छा आप बताइए मयंक, माला, मोहित। दोबारा से सुनेंगे बच्चों, मयंक, माला, मोहित। इन तीनों नामों में शुरू की आवाज कौन सी है? बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये सारे बच्चे बहुत समझदार हैं। इन सब में शुरू की आवाज है म। अब हम म को कैसे लिखते हैं? जैसे आपने मकान लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है, मकान में भी म की आवाज है और इसे खास तरह से बनाया जाता है। अच्छा अगर आपने न लिखा है और आप म लिख रहे हैं तो आप

देख पा रहे होंगे कि दोनों में काफी समानता है। अगर न में हम एक और ऊपर से डंडी मिला दें, तो फिर वह म बन जाएगा। ठीक, तो आपने देखा कि नंदिनी, नीरा, नेहा के नाम में शुरू की आवाज है न, और मोहित, मयंक, माला के नाम में शुरू की आवाज है म। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि किसके नाम में म की आवाज है और नहीं है। तो हम बच्चों शुरू करें ये खेल। ठीक है, तो हम एक मजेदार खेल खेलते हैं। मैं बच्चों के नाम बोलूंगी और आप मुझे बताएंगे कि इनके नाम में शुरू में म की आवाज है या नहीं है। तो तैयार हैं सारे बच्चे? वेरी गुड। तो पहला नाम है माधवन। माधवन, माधवन में शुरू में म की आवाज है। शाबाश, आपने बिल्कुल ठीक बताया, माधवन में शुरू की आवाज है म। अब हम अगले शब्द की तरफ चलें। मुर्गन। मुर्गन, शाबाश, इसमें भी आपने बताया कि शुरू में म की आवाज है। मोहित। मोहित, शाबाश, सब बच्चों ने सही पकड़ा है, मोहित में भी शुरू में म की आवाज है। मानू। मानू, वेरी गुड, आपने मानू में भी बताया कि शुरू में म की आवाज है। अच्छा बच्चों, आप ये बताइए कि हमारे आसपास ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनके नाम में शुरू की आवाज म है, पहचान पाएंगे आप? मुश्किल काम नहीं है, सब बच्चे सोच रहे होंगे। सोचिए सोचिए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। जब आप सोच ले अच्छी तरह से और तैयार हो, तो हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो लीजिए, सारे बच्चे तैयार हैं, सोचने में ज्यादा समय नहीं लगाया, शाबाश। तो बच्चों ने हमें बताया, हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके नाम में शुरू की आवाज म है। सबसे पहला शब्द पता है क्या आया बच्चों? सबसे पहला शब्द आया मोर। क्यों भला? क्योंकि हमने एक गीत गाया था। ये गीत क्या था?

गए। याद आया ये गीत? बिल्कुल सही पहचाना, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। तो मोरनी और मोर दोनों नामों में शुरू की आवाज है म। एक और पक्षी ऐसा है जिसके नाम में म की आवाज आती है, सोचिए। सारे बच्चे सोच रहे होंगे आखिर ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके नाम में म आता है, यानी कि जिसके नाम में म की आवाज है। याद आया बच्चों? तो ये नाम है मुर्गा। वेरी गुड। मुर्गा कुकड़ुकू कुकड़ुकू सुबह सुबह बोलता है। तो हमने अभी जाना कि ऐसे कौन से नाम है जिसमें म की आवाज है। अच्छा, हम एक और खेल खेलते हैं। तैयार हैं सारे बच्चे? तो ठीक है, शुरू करते हैं। मैं कुछ शब्द कहूंगी, ये किसी भी चीज का नाम हो सकता है। आपको ये बताना है कि इन चीजों के नामों में म की आवाज है या नहीं है। वेरी सिंपल। तो तैयार हैं सारे बच्चे, शुरू करें? तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं म की आवाज को पहचानना। पहला शब्द है मदन। म की आवाज है शुरू में। शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने, मदन में शुरू में म की आवाज है, मदन। मसूद, वेरी गुड, मसूद में भी शुरू में म की आवाज है। मटर, वेरी गुड, मटर में भी म की आवाज है। मैना, मैना में भी म की आवाज है। मेला, शाबाश, मेला में भी म की आवाज है। मकान, वेरी गुड, सही बताया आपने, मकान में भी शुरू में म की आवाज है। बटन, बटन में शुरू में ब की आवाज है, म की आवाज नहीं है। तो फिर अगला शब्द है हमारा स्वामी। अगला शब्द दोबारा सुनेंगे बच्चे। अगला शब्द है स्वामी। मालगुडी डेज तो सब बच्चों ने सुना होगा, देखा होगा। एक छोटे से बच्चे की कहानी है और उसका नाम है स्वामी। और पता है बच्चों, एक बहुत मजेदार बात है स्वामी के बारे में। स्वामी की एक दादी है जो रोज रात को स्वामी को कहानियां सुनाती हैं, और स्वामी भी अपनी दादी को दिन भर क्या हुआ ये सुनाता है। और उसके दोस्त का नाम है राजम। तो स्वामी को जब उनकी दादी पुकारती हैं तो बोलती हैं छामी छामी। तो ये मुझे बड़ा सुंदर लगता है जब वे स्वामी को बोलती हैं छामी। तो स्वामी में भी म की आवाज तो है। क्या बच्चे बता पाएंगे कि म की आवाज कहाँ है? शुरू में है क्या? शुरू में तो नहीं है। तो क्या बीच में है? स्वामी, बीच में भी नहीं है। तो फिर तो अंतिम हिस्सा बचा हमारे पास, स्वामी। शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने, स्वामी में अंत में म की आवाज है। आपको याद है बच्चों, स्वामी के दोस्त का क्या नाम बताया था मैंने? शाबाश, स्वामी के दोस्त का नाम था राजम। तो राजम के नाम में म की आवाज है क्या? शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने, राजम के नाम में अंत में म की आवाज है, राजम। तो ये बच्चे तो बहुत ही समझदार हैं, बहुत चतुर हैं, सारे शब्दों में आपने म की आवाज को पहचान लिया। तो अगर आपको खेल में मजा आ रहा है तो क्या हम आगे बढ़ें? तो बच्चों बताइए, आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें? ठीक है, तो आपने कहा और हमने किया और हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम चलते हैं न की आवाज पर। न की आवाज में बहुत सारे शब्द हमें मिल जाते हैं, पहचान पाएंगे आप? अच्छा ठीक है बच्चों,
मैं आपको एक छोटा सा हिंट देती हूँ तो आप पहचान लेंगे, वही जो हम सबके घर में है। अब आप सोचेंगे कि हम सबके घर में तो बहुत कुछ है, अब वहां हम न की आवाज को कैसे पहचानेंगे? सोचिए, सोचने के लिए समय लीजिए, मैं आपका यही इंतजार कर रही हूँ। सोचिए और ध्यान लगा के सोचिए कि हमारे घर में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनके नाम में न की आवाज है। याद आया कुछ? तो बच्चों, मुझे तो याद है, आपको याद है? लीजिए, ये बच्चे तो बहुत चतुर हैं और इन्होंने पहचान लिया। तो सुबह सुबह जब आप स्नान करते हैं तो उसमें एक चीज का इस्तेमाल करते हैं जहां से हमें पानी मिलता है। वेरी गुड, ये शब्द है नल। नल से पानी टपकता है, पानी बहता है और आप नल के नीचे बाल्टी लगाते हैं, पानी भरते हैं और उसके बाद स्नान करते हैं। शाबाश, तो पहला शब्द आप सबने बताया नल। नल के नाम में शुरू की आवाज है न, नल। पहचाना आपने बच्चों? अच्छा, अब एक और शब्द है जो हमारे घर के कौन से हिस्से में है? रसोई घर में। रसोई घर में कौन सा हिस्सा है? मसालदानी। यहाँ मसाले रहते हैं, तो रसोई घर में एक चीज है जिसके नाम में न की आवाज है। बच्चों, कुछ याद आया क्या? शाबाश, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये चीज है नमक। नमक ज्यादा हो जाए तो मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है और नमक कम हो तो कोई स्वाद ही नहीं आता। तो नमक तो मन के मुताबिक होना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए नमक। तो नमक में न की आवाज है और ये न की आवाज कहाँ है? शुरू में। नमक, नमक, पहचाना आपने? तो अब आप ऐसे और कौन से शब्द बता सकते हैं जिनके नाम में न की आवाज है? आप अपने दोस्तों के नाम सोचेंगे बच्चों? सोचिए। तो मैं भी सोच लेती हूँ अपने दोस्तों के नाम जिनके नाम में न की आवाज है। तो ये नाम हो सकता है नंदू, शाबाश, नीना, वेरी गुड। और क्या नाम हो सकता है बच्चों? और नाम हो सकता है नदीम, शाबाश। तो नदीम, नंदू, नीना, इन तीनों के नामों में शुरू में है न की आवाज। तो अब एक और खेल खेलते हैं। ये खेल क्या होगा? ये खेल ये होगा, मैं कुछ शब्द कहूंगी, कुछ चीजों के नाम लूंगी और आप सभी बच्चों को ये बताना होगा कि इनके नाम में शुरू में न की आवाज है या नहीं है। बच्चों, मुश्किल तो नहीं है ना ये काम? आपने जैसे झटपट म के लिए किया था, ऐसे अब हम न के लिए करते हैं। नमक, शाबाश, इसमें शुरू में न की आवाज है। नाला, वेरी गुड, नाला में भी शुरू में न की आवाज है। नींबू, वेरी गुड, सही पहचाना बच्चों आपने, नींबू में भी न की आवाज है। तो हम नींबू से आगे बढ़ते हैं और हम अगले शब्द पर चलते हैं। यह अगला शब्द है नीला, वेरी गुड, नीला में भी न की आवाज है। और जब हम सफेद कपड़ों को रंगते हैं, यानी कि उनकी सफेदी बरकरार रहे, बनी रहे, उसके लिए हम एक चीज के घोल में सफेद कपड़ों को डालते हैं और फिर निकालते हैं, निचोड़ते हैं और सुखा देते हैं। कुछ याद आया? ये शब्द है नील। हल्का सा नीला पाउडर होता है या फिर हल्का सा लिक्विड होता है नीले रंग का, जिसकी एक दो बूंद हम पानी में डालते हैं, फिर सफेद कपड़े उसमें डालते हैं और फिर बाहर निकाल कर निचोड़ कर सुखा देते हैं, तो सफेद कपड़ों की सफेदी बनी रहती है।
अच्छा एक बात और बताइए बच्चों, आपने नल की आवाज को सुना है? बंद आवाज को नहीं भाई, बंद नल को नहीं। जब नल खुलता है, पानी बहता है और हम उसके नीचे बाल्टी लगाते हैं, तो आपने पानी की आवाज को सुना होगा। क्या ये पानी की आवाज नदी के पानी की आवाज जैसी है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आप एक काम कीजिएगा। काम ये है कि जब आप अगली बार स्नान करें, ठीक है, स्नान तो रोज करना चाहिए, तो जब आप अगली बार स्नान करें और नल के नीचे बाल्टी लगाएं, तो आप गौर कीजिएगा कि जैसे जैसे बाल्टी भरती जाती है पानी से, वैसे वैसे पानी की आवाज बदलती जाती है। जब बाल्टी एकदम खाली है और उसमें आप नल खोलते हैं, पानी की पहली धार बाल्टी में जाती है, तो बहुत तीखी आवाज आती है, बहुत शोर होता है। जैसे जैसे बाल्टी में पानी भरता जाता है, वैसे वैसे पानी की आवाज बदलती चली जाती है और पानी की आवाज थोड़ी और भारी हो जाती है, तब उसमें खनक नहीं होती है। ठीक है, मजेदार खेल है ये। और आपने नदी की कलकल को भी सुना होगा। नदी की कलकल में एक जैसी ही आवाज रहती है। अगर आप नदी के किसी एक हिस्से पर खड़े हैं और पानी बहुत तेजी से आ रहा है, तो उसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। उस आवाज को सुनते सुनते आपको ये पता चल जाएगा कि नदी पत्थरों से टकरा रही है या नहीं टकरा रही। पत्थर से जब पानी टकराता है तो उसकी एक अलग आवाज होती है। बहुत सारे बच्चों ने तो ये महसूस किया होगा और देखा भी होगा और सुना भी होगा कि जब नदी अलग अलग हिस्सों से गुजरती है तो उसके पानी की आवाज अलग अलग होती है। अगर पानी की आवाज की बात हो ही रही है, तो फिर हम समुद्र को कैसे छोड़ सकते हैं? समुद्र के किनारे घूमना, बैठना, लहरों को आते जाते देखना मुझे बहुत पसंद है। आप सब बच्चों ने भी समुद्र देखा होगा। अगर सामने नहीं देखा होगा तो टीवी पर देखा होगा। तो लहरें आती हैं और फिर चली जाती हैं, फिर एक लहर आती है, तट पर आती है और फिर वापस चली जाती है। तो लहरों की आवाज भी एक जैसी ही होती है, आने और जाने की। तो आज हमने क्या किया? आज हमने म को पहचाना, हमने न को पहचाना, इसकी आवाज को पहचाना और ये देखने की कोशिश की कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें म की आवाज है और जिसमें न की आवाज है।

0: गए। तो मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार।
1: तो साथियों, अभी आपने सुनी कक्षा एक की ध्वनिशाला। विषय विशेषज्ञ थी प्रोफेसर उषा शर्मा, NCERT। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनिंकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण अजीत होरो, तथा प्रस्तुति CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: जन जन भारत के ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1,000 रूपए प्रतिमाह पोषण सहायता के रूप में और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए niksha.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
4: निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये एक ऐसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक, समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान, जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामोनिशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: 2018 में यहाँ पे JEE-AES के 22 केसेस मिले थे, जिसमें दो लोगों की डेथ भी हो गई थी।
1: हमारे गांव देहात के जो भी केस होते थे यहाँ पे, हमें हर केस को जो है जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ता था, लेकिन दस्तक अभियान के थ्रू जो है काफी हद तक जो है केस कम करने में सफलता मिली है। इसके लिए सबसे पहले जिले स्तर पे मीटिंग की गई, फिर उसके आधार पे हम लोगों ने जो है एक माइक्रो प्लान बनाया।
0: तो आप लोग अपने अपने माइक्रो प्लान यहाँ पे शेयर कर दीजिए ताकि इंटर डिपार्टमेंटल सबको मिल जाए। ठीक है, तो आंगनवाड़ी और आशा साथ में ही विजिट करेंगे डोर टू डोर।
2: डोर बाय डोर टू जाते हैं और हर घर हम ये सूचना देते हैं कि साफ सफाई के बाद आप हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को और अपने खुद फूल आस्तीन का कपड़ा पहने, बच्चों को मोजा और अपने मोजा पहने रहें, क्योंकि जो मच्छर लगते हैं उससे हमारे बच्चों को और हमको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और वही बीमारी का कारण हो सकता है।
3: उबालने के लिए बताते हैं और पानी करछिल से निकालें, उसमें हाथ न डालें, हाथ धोल करके पानी निकालें।
0: कोविड में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा हमारा कैंपेन। हमारा कोई भी हेल्थ वर्कर डोर टू डोर सर्वे कर रहा है तो वो ये देख रहा है कि किसी को फीवर है या क्या सिम्टम्स हैं, तो हम उसका टेस्ट करा सकते हैं। अगर कोविड रिलेटेड पेशेंट है तो उसे भी आइडेंटिफाई कर सके, JEE-AES रिलेटेड है तो उसे भी आइडेंटिफाई कर सके टाइम पर। अभी दस्तक अभियान के तहत जो है हमारी ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मी नाली की सफाई कर रहे हैं, झाड़ी काटने की एक्टिविटीज चल रही हैं, एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है।
1: ये बहुत ही अच्छी योजना रही माननीय मुख्यमंत्री जी का, इसके माध्यम से हम लोग JEE-AES केस कम करने में और उसकी मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी कम करने में बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। ये
0: हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट किया है, वो वहाँ पर अपने स्कूल्स में टीचर्स के माध्यम से बच्चों के पेरेंट्स को और बच्चों को दस्तक कैंपेन के बारे में जागरूक कर रहे हैं।
2: बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता सब लोग जागरूक हो रहे हैं।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM पर एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है स्टार्टअप चौराहा। इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें होती हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं। जाहिर सी बात है कि एक सपना है जो कि आपका अपना है, उस सपने के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस सपने को साकार करना चाहते हैं, स्टार्टअप की दुनिया में बहुत कुछ खास करना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है एक अच्छी सोच, मेहनत, लगन के साथ आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि उसके साथ साथ बहुत जरूरी है अच्छी अच्छी बातें आप अपनी जिंदगी में शामिल करें, उन लोगों के अनुभव के साथ आप आगे बढ़ें जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ खास कर चुके हैं। आज हम जानेंगे कि डिजाइन का क्या अपना रोल है और शारदा यूनिवर्सिटी का अपना एक डिजाइनिंग डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि टॉय इंडस्ट्री को, यानी कि भारत की टॉय इंडस्ट्री को हमें आगे लेकर जाना है, गेम प्लान के तहत आगे बढ़ना है, ये बाल वाटिका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कर कमलम प्रोग्राम क्या है, किस तरीके चैलेंजेस आते हैं, इन सारी तमाम बातों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हैं डॉक्टर प्रवीण पचौरी, डायरेक्टर यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, गवर्नमेंट ऑफ यूपी। ही इज एन एक्सपर्ट इन प्रोडक्ट डिजाइन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस डेवलपमेंट। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित सहगल, डायरेक्टर शारदा लॉन्चपैड फेडरेशन शारदा यूनिवर्सिटी, और इस प्रोग्राम को मॉडरेट कर रहे हैं मिस्टर दिव्यांशु शुक्ला, फाउंडर PepSwap, पॉलिसीज ओवर पॉलिसीज, वर्किंग एज पॉलिसी एंगेजमेंट पार्टनर फॉर यूपी स्टार्टअप पॉलिसी। और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है शारदा लॉन्च पैड ने PepSwap के सहयोग से, और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर ये विशेष कार्यक्रम।
2: तो आप सभी का स्वागत है स्टार्टअप चर्चा के दूसरे एपिसोड में जिसको ऑर्गेनाइज और सपोर्ट किया है शारदा लॉन्च पैड ने। आज का जो एपिसोड है काफ़ी रोमांचक है मेरे लिए, और मैं अभी इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अपने गेस्ट को, डॉक्टर प्रवीण पचौरी जी जो डायरेक्टर है यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के, और हमारे रेगुलर मार्गदर्शक और मेंटर डॉक्टर अमित सहगल जी जो डायरेक्टर है शारदा लॉन्च पैड के। बिना कोई टाइम वेस्ट करे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज हमारे पास, डिज़ाइन और स्टार्टअप फाउंडर्स। और मेरे लिए खुद ये फर्स्ट सेशन है कि मैं डिज़ाइन को बहुत ही करीबी से जानना चाहूँगा, तो स्टार्ट करते हैं प्रवीण सर से। सर पहले तो आप कुछ बता पाए अगर यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के बारे में, वहीं से शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन। कुछ बताइए सर इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के बारे में और कैसा वहाँ पे उसका क्या कोर फोकस है, क्या उसका मिशन स्टेटमेंट है, और कैसे वो अपने आप को कैसे वो स्टार्टअप फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योरशिप से अलाइन कर रहे हैं।
3: उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन 2017 में माननीय मुख्यमंत्री के इच्छानुसार नोएडा में जो AKTU का एक्सटेंशन सेंटर था वहाँ स्टार्ट किया गया, और संस्थान का विजन ये है कि हम उत्तर प्रदेश के जो आर्टिसंस के प्रोडक्ट हैं उनको इंटरनेशनल पहचान दिला सकें। तो संस्थान का जो मिशन है वो उसी पथ को पूरा करने के लिए है, और हमारी कोशिश ये है कि हम जो करंट इंडस्ट्रीज हैं, MSME इंडस्ट्रीज हैं, उनके प्रोडक्ट्स को रिडिफाइन करें और आज के बदलते परिवेश

0: हैं वो हमको रिडिफाइन करने पड़ रहे हैं। तो डिजाइन जो था, जो सब अलग अलग काम कर रहे थे, उसको एक जगह लाने का प्लेटफॉर्म बन गया। अभी जो डिजाइन के कोर्सेज डेवलप किए जा रहे हैं, हालांकि उसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन अलग अलग इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहे हैं, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट विशेष रूप से प्रोडक्ट डिजाइन पर काम करता है, एर्गोनॉमिकल डिजाइन पर काम करता है, यूआई यूएक्स डिजाइन पर काम करता है, तो सभी डिजाइन कहीं ना कहीं आने वाले जो हमारे स्टार्टअप हैं या जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए जरूरत बनते जा रहे हैं। क्योंकि कन्वेंशनल डिजाइन्स को फॉलो करके आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी मार्केट में अपील क्रिएट नहीं होती है, उसकी मार्केट स्पेस क्रिएट नहीं होती है। क्योंकि जो करंट प्रोडक्ट मार्केट में है, अगर आपको उसको रिप्लेस करना है तो आप जो नया प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं वो प्रोडक्ट जो है वो कई मायनों में, जैसे इर्गोनॉमिकल मतलब प्रयोग के हिसाब से जो है कंफर्टेबल होना चाहिए, उसमें जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन है वो कम से कम होना चाहिए, उसको जिस इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है उसका प्रोसेस टाइम कम से कम होना चाहिए, जिन मटेरियल्स को प्रयोग करके बनाया जा रहा है उनका मटेरियल्स का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। तो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस अगर हमको बनाने हैं तो हमको प्रोडक्ट को दोबारा से डिजाइन करना ही पड़ेगा। न केवल अब प्रोडक्ट्स की डिजाइन की बात रह गई है बल्कि अब तो हम शहरों को भी डिजाइन कर रहे हैं। तो पहले डिजाइन का मतलब लोग समझते थे जो है कि खाली हम कमरे या बिल्डिंग या उसके अंदर की चीजें डिजाइन करते हैं, अभी जब हम पूरे का पूरा शहर प्लान करते हैं तब भी हम डिजिटल ट्विनिंग का सहारा लेते हैं जो डिजाइन का ही एक फील्ड है। तो हमारे जो डिजाइनर्स हैं अब वो समय की एक ऐसी जरूरत बन गए हैं कि कोई भी कंपनी, चाहे वो स्टार्टअप हो या कॉरपोरेट जगत हो, बिना डिजाइनर्स की मदद से आज आगे नहीं बढ़ सकता। तो धीरे धीरे हमें ये समझना होगा कि जो डिजाइन है वो आज की बेसिक नीड बन गया है, और कोई भी चीज जो हम प्लान कर रहे हैं उसमें जो भी हम टीम डेवलप करें उसमें कोई ना कोई डिजाइनर होना चाहिए।
1: राइट सर, तो मैं सेम क्वेश्चन ही अमित सर के पास ले जाना चाहूंगा, क्योंकि प्रोबेबली अभी तक से सर मैंने तो डिजाइन को सिर्फ ऐसे ही देखा था कि यूआई यूएक्स है स्टार्टअप्स के कंसर्व में, और जो ट्रेडिशनल जैसा सर ने बजाया कमरा डिजाइन कर रहे हैं या फिर फैशन डिजाइन कर रहे हैं। करेंटली हम लोग यूपी में स्मार्ट सिटीज डेवलप कर रहे हैं और वो काफी अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो सर ने जैसा बताया कि फ्यूचर के अंदर हम सिटीज भी डिजाइन करने वाले हैं, इसके अंदर स्टार्टअप्स के लिए भी स्कोप है अभी रहते हुए, अगर ये अभी से मिलना स्टार्ट हो जाए, इंट्रैक्शन करना स्टार्ट हो जाए फ्यूचर को देखते हुए, राइट? तो उसमें भी नई अपॉर्चुनिटीज आने के चांसेस हैं।
2: बिल्कुल दिव्यांशु जी, बहुत अच्छा आपने एक विषय उठाया है, डिजाइन का क्या रोल है और वो भी खासकर स्टार्टअप्स में। क्योंकि अगर हम किसी भी स्टार्टअप की एक जर्नी देखें तो कहीं ना कहीं वो शुरुआत होती है कि मुझे क्या नया बनाना है। हर एक स्टार्टअप के मन में रहता है कि मुझे कुछ नया करना है तभी मैं आगे जाकर उसमें कुछ सक्सेसफुल हो पाऊंगा, मैं जो भी प्रोडक्ट या सर्विस दे पा रहा हूँ वो मेरा आगे मार्केट में जाएगा। तो नया करने के लिए उसकी जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी से या डिजाइन से शुरुआत होती है। और बहुत सारे अलग अलग एरियाज के अंदर स्टार्टअप्स आ रहे हैं, और इन सारे अलग अलग टाइप के स्टार्टअप्स को अगर हम एक साथ जोड़ें तो जो हमारा स्मार्ट सिटीज का, और उसके बाद अगर हम विलेजेस पे भी जाएं तो स्मार्ट विलेज का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, और अगर हमें ये देखना है कि हमारी जो भी इकोनॉमी है इंडिया की वो ज्यादातर गांव से विलेजेस से जुड़ी हुई है तो उनको भी हमें डेवलप करना है। तो स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट विलेज को भी अगर डेवलप करना है तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जो कोई हेल्थ में काम कर रहा है, कोई एजुकेशन में काम कर रहा है, या सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, तो ये सारे सॉल्यूशंस जब एक साथ जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं इन सबके डिजाइंस एक दूसरे के साथ अलाइन जब होंगे तब वो मिलके ओवरऑल एक बड़े सिस्टम को सपोर्ट कर पाएंगे, और वहां से फिर हमारा जो स्मार्ट सिटीज का या स्मार्ट विलेजेस का कॉन्सेप्ट है वो निकल कर आएगा। तो ये सारे डिजाइंस को कहीं ना कहीं एक साथ जुड़ना पड़ेगा, इनका जो इंटीग्रेशन होता है वो हमें लेकर आना पड़ेगा, और उसके लिए ये डिजाइन की बेसिक समझ हर एक स्टार्टअप फाउंडर को होनी चाहिए, और जो भी इनकी टीम है स्टार्टअप फाउंडर की उसमें कहीं ना कहीं उनको एक एक्सपर्टाइज रखना पड़ेगा कि उसमें डिजाइन की समझ रखने वाले लोग हों, ताकि जब अलग डिजाइन बन रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एक चीज डिजाइन की है तो वो मेरे सिस्टम के अंदर फिट नहीं आ रही है दूसरे प्रोडक्ट के साथ। तो आज की डेट में इंटीग्रेशन और मल्टीडिसिप्लिन का टाइम है, यहां पर कोई भी अपने एक स्टार्टअप को या अपने प्रोडक्ट को अलग से लेके नहीं चल सकता है, तो कहीं ना कहीं सभी को एक साथ जुड़ना है और ओवरऑल एक बड़े सिस्टम को बिल्ड करना है, तो वहां पर इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और शारदा यूनिवर्सिटी में डिजाइन डिपार्टमेंट में हमारा इसी चीज के ऊपर फोकस है, जो हमारा स्कूल ऑफ डिजाइन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है, तो वो कहीं ना कहीं इसी तरह से मल्टीपल एस्पेक्ट्स को लेकर चलता है। तो उसमें आर्किटेक्चर का पार्ट भी है, लैंडस्केपिंग का पार्ट भी है, देन प्रोडक्ट डिजाइन भी है, फैशन डिजाइन भी है, जहां पर अलग अलग मटेरियल्स के ऊपर काम हो रहा है कि आप सस्टेनेबल क्लोथिंग में कैसे जा सकते हैं, कलर्स डाइज में केमिकल का इस्तेमाल कैसे कम से कम हो, नेचुरल फैब्रिक के ऊपर कैसे जाएंगे, तो देन इंटीरियर डिजाइन का पार्ट भी उसके अंदर है कि कैसे आप, जैसे सर ने बोला कि कम जगह

0: के अंदर ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से आप उस स्पेस को यूटिलाइज कर पाएं, कैसे मैक्सिमम फीचर्स फैसिलिटीज आप दे पाएंगे। ये सिर्फ घरों में ही नहीं है, फैक्ट्रीज भी जो आ रही हैं आने वाले समय में, जो इंडस्ट्रीज होंगी या छोटे जो स्टार्टअप्स हैं, ऑफिस होंगे, तो वहां पर भी उनको बहुत कम जगह के अंदर ज्यादा से ज्यादा सर्विस देनी है, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो स्पेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा। तो ये सारी चीजों को इंटीग्रेट करके देन एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आना, तो इसके अंदर डिजाइन का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ही।
1: तो जहां तक मैं समझा अपनी जर्नी के अंदर, मैं आज तक हमेशा ये सुनता था कि टेक्नोलॉजी विल चेंज द रूलर यू नो इकोनॉमी ऑफ इंडिया, द रूलर शेप ऑफ इंडिया, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन का होना भी जरूरी है, क्योंकि वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो हो सकता है फास्टर जर्नी को कर पाए। तो
2: वो दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट
1: है सर, राइट कंप्लीमेंट इज द राइट वर्ड। और सर सेकेंडली हम लोग आगे जाते हुए ये जानना चाहेंगे कि आप इंस्टीट्यूट में जैसे काम कर रहे हैं अभी, तो आपने डिज़ाइन और स्टार्टअप का कोई सक्सेस स्टोरी अगर आप बताना चाहें अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, कि डिज़ाइन से रिलेटेड कोई नया स्टार्टअप ने आगे किया हो आपके नीचे आपके इंस्टीट्यूट्स के अंदर।
2: यूँ तो हमारे इंस्टीट्यूट में काफ़ी सारे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने पिछले 6 महीने में एक स्पेशली एक सेगमेंट सिलेक्शन किया, एंड दैट सेगमेंट इज टॉय एंड गेम्स डिज़ाइन। तो यहाँ भी हमने एक पर्टिकुलर फ्रेम फिट किया कि वी शुड डिज़ाइन द गेम्स ओनली फॉर द किड्स विच आर फ्रॉम 3 to 6 years, बिकॉज इन आवर न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द गवर्नमेंट हैज एनविजन्ड ए न्यू कंसेप्ट दैट इज बाल वाटिका। तो बाल वाटिका जो कंसेप्ट है उसमें 3 से 6 साल के बच्चों को खेल के साथ साथ हमको पढ़ाना है। तो ये जो पढ़ाई का जो मॉडल है वो उसमें 3 dimensions मेनली हम कवर करते हैं। पहला डायमेंशन जिसको हम कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, यानी ब्रेन से किए जाने वाले काम जिसको हम ज्ञान योग भी कहते हैं। दूसरा साइकोमोटर डोमेन स्किल्स, यानी कि इंद्रियों से किए जाने वाले काम जिसको हम कर्मयोग की श्रेणी में रखते हैं। और तीसरा अफेक्टिव डोमेन स्किल्स, यानी कि भक्ति योग जिसे हृदय से किए जाने वाले काम। तो हमको 3 से 6 साल के बच्चे को इथिक्स भी सिखाना है, उसको अपनी इंद्रियों को प्रॉपर प्रयोग करना सिखाना है, और साथ ही उसकी बौद्धिक सोच को भी डेवलप करना है। तो क्योंकि ये खेल खेल में सिखाना है, इसलिए खेल का ऐसा डिजाइन होना बहुत जरूरी है। तो हमने 14 विशेष रूप से ऐसे बच्चों को तैयार किया जो है जो इस सेक्टर में काम करना चाहते हैं। और इट इज़ वेरी फॉर्चुनेट कि हमने 4 महीने के अंदर ही जो गेम्स डेवलप किए वो बाल वाटिका के तीनों स्टेजेस के लिए डेवलप किए, स्टेज 1 3 से 4 साल, स्टेज 2 4 से 5 साल, स्टेज 3 5 से 6 साल। तो बच्चों की जो साइकोलॉजी होती है वो 3 से 4 साल में अलग होती है, 4 से 5 में अलग होती है, 5 से 6 में बिल्कुल अलग होती है। तो उनकी जो फिजिकल एबिलिटीज हैं, उनकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमने 14 गेम्स डिजाइन किए। एंड आई फाइंड इट वेरी फॉर्चुनेट टू से कि वो सारे के सारे गेम्स जो बच्चों ने इवॉल्व किए वो उस उम्र के बच्चों पर जाकर उन्होंने टेस्ट भी किए। और आई फील वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू कि बच्चों ने स्लम एरियाज में जाके जो है वो टॉयज एंड गेम्स जो है जो उन्होंने डेवलप किए, और उस उम्र के जो बच्चे उन्होंने 15-20 बच्चे इकट्ठे किए और उन बच्चों को जो है वो खेलने को दिया, जिससे कि एक्चुअली उस खेल को वो अडॉप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको गेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, उसको पूरा किया। एंड फाइनली आफ्टर द कंक्लूजन हमने उन सभी को IPR के लिए, चाहे वो डिजाइन के माध्यम से या पेटेंट के माध्यम से, प्रोटेक्शन के लिए प्रोसेस चालू किया है। इसी बीच में हमने कुछ कंपनियों को जो ऑलरेडी टॉयज एंड गेम सेक्टर में काम करती हैं, टॉयज बनाती हैं, उनको भी वो प्रोडक्ट्स हमने शोकेस किए। तो इट इज़ ए वेरी डिलाइटफुल मोमेंट फॉर मी टू शेयर कि उनमें से एक कंपनी ने कहा कि इनमें से 2 प्रोडक्ट्स तो मैं चाहूंगा कि मैं कल ही प्रोडक्शन के लिए मुझे मिल जाए, तो मैं कल से ही प्रोडक्शन करना चाहूंगा। और जो लोग 20 साल से जो है इंडस्ट्री रन कर रहे हैं और टॉयज की बारीकी को समझते हैं, उनको जब हमने शोकेस किया तो दे वर हाईली डिलाइटेड कि आपने ये जो मतलब गेम्स डिजाइन कराए दे आर ऑसम। और हमारा मकसद ये है कि अगर एक बार हमको इनसे IPR प्रोटेक्शन मिल जाता है तो न केवल हम इन कंपनियों के साथ उन प्रोडक्ट्स को डेवलप कर पाएंगे, इससे बच्चों को भी कुछ आमदनी होगी। आज की तारीख में आइडिया इज मनी। तो आप जरूरी नहीं कि आप फैक्ट्री लगाएं तभी आप इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे। अगर आपके पास अच्छे पेटेंट्स हैं, अच्छी डिजाइन कॉपीराइट्स हैं, तो आप कंपनियों के साथ जो है रॉयल्टी पर काम कर सकते हैं। सो यू कैन मेक मनी आउट ऑफ योर ओन विजन। तो स्टूडेंट्स ने उसी कंसेप्ट को अडॉप्ट किया और अभी वो अपने सारे जो गेम्स उन्होंने डेवलप किए उनको आईपीआर के थ्रू प्रोटेक्ट कराने के प्रोसेस में है। एंड सून वी विल साइन एमओयूज विद द कंपनीज दोस हु वांट्स टू मैन्युफैक्चर दोस टॉयज। और सबसे बड़ा ये जो हमारी इसमें वो है कि हम चाहते हैं कि जब ये बाल वाटी का कंसेप्ट गांव के लेवल पर इम्प्लीमेंट हो तो वहां हम स्ट्रगल ना करें, क्योंकि ये समझना बड़ा मुश्किल होता है एक आम टीचर के लिए जो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है चिल्ड्रन साइकोलॉजी पर, कि बच्चे की साइकोलॉजी क्या होगी और उसे कैसे किस उम्र में क्या सिखाना है। लेकिन अगर वेल डिफाइंड गेम है जैसे हमने बनाए हैं और टेस्ट किए हैं हमने कि ये स्टेज वन के लिए है, यानी 3 से 4 साल का बच्चा इसको यूज करेगा, तो टीचर्स के पास भी एक ऐसे गेम्स का सेट होगा जहां पर जो है वो खेल खेल में बच्चों को ये स्किल्स दे पाएंगे जो है। दूसरा, अगर ये 14 गेम्स जैसे अभी हमने आईपीआर प्रोटेक्शन किया है तो ये कल्चर में शिफ्ट होगा। अभी क्या है कि ये मतलब ये पहला प्रयोग था कि 14 बच्चों ने ही गेम डिजाइन में पार्टिसिपेट किया और 14 के 14 बच्चे उसको आईपीआर लेवल तक लेकर आए और उनके जो जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर बीइंग वेल एक्सेप्टेड बाय द इंडस्ट्री। सो आई फाइंड कि आने वाले टाइम में ये एक कल्चरल शिफ्ट होगा। मतलब डिजाइन जो है जैसे अभी तक हम देखते थे कि एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखते थे, अब हमने इसे कन्फाइंड पर्सपेक्टिव में लाया कि एक पर्टिकुलर डोमेन जैसे टॉयज एंड गेम्स को हमने पिक किया। तो दिस इज द कंसेप्ट विच वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट इन अदर सेक्टर्स नाउ, कि जो बच्चे डिजिटल ट्विनिंग में काम करना चाहते हैं दे शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप सच प्रोडक्ट्स। जैसे वो एक शहर या एक गांव से शुरू करें, सबने जैसे कहा कि स्मार्ट विलेज की हम बात कर रहे हैं, तो चाहे हम विलेज से ही शुरू करें बट वी शुड डेवलप ए परफेक्ट मॉडल विच कैन बी रेप्लीकेटेड सो दैट द स्टार्टअप कंपनी कैन गेट अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट देयर प्रोडक्ट इन ए कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट। तो आई फाइंड दैट बिकॉज द टेस्ट इज सक्सेसफुल सो टुमारो द सेम रोड मैप कैन बी फॉलोड फॉर
1: नहीं सर इंडिजीनियस टॉय मार्केट तो पीएम सर का भी काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और सपना है। और
0: बहुत अच्छी जानकारी सर ने दी हमारे साथ, जो सोनो शारदा के श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं आसपास के रीजन के, तो मुझे लगता है टॉय सिटी के नाम से ग्रेटर नोएडा बहुत ज्यादा जाना जाता है,
2: इंडस्ट्री सेक्टर
0: है। तो आसपास के रहने वाले जो लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं टॉय इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं तो शायद उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी है कि बहुत सारे डिजाइन ऐसे तैयार हैं और
1: जो मार्केट में निकले तैयार हैं,
0: फील्ड में टेस्ट कर लिया गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिजाइन बनाया गेम बनाकर उसको टेस्ट भी किया गया है। तो मुझे लगता है अगर उसमें से कोई भी ऐसे लोग हैं जो उसको आगे लेके जाना चाहते हैं तो जरूर हमारे माध्यम से अगर सुन रहे हैं तो आपसे संपर्क करेंगे।
1: सेकेंडली सर, आफ्टर टॉय जो ये मेरा दोनों से है आपसे कि हमने स्टार्टअप पे थोड़ी बात करी, अभी हमने थोड़ी टॉय इंडस्ट्री पे उस पर बात करी, अब डिजाइन का इंडस्ट्री जो हार्डकोर इंडस्ट्री है, जैसे गवर्नमेंट का हमारा दूसरा मोटिव भी है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है और हम चाहते हैं कि नए नए डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंडिया में आए, इंडिया में ही नई मशीनें बने, कोई नहीं हमें किसी भी चीज के लिए शायद बाहर आउटसोर्स ना करना पड़े, तो डिजाइन सर उसमें कैसा है अभी काम कर रहा है, आप उसमें कुछ चेंज देख पा रहे हैं, पीपल एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लोग अभी भी रेडी हैं कि हम बाहर से ही मशीनों को आउटसोर्स कर लें या फिर इंडिजीनियस मशीनों में फोकस है?
2: हमने एक नई शुरुआत की और एक नई प्रैक्टिस डेवलप की है जिसमें हमने यहाँ गौतम बुद्ध नगर में इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तकरीबन 500 कंपनियां हैं, तो उनके साथ हमने एसोसिएट किया और उनकी समस्याओं को पहले हमने समझा कि व्हाट एक्चुअली दे आर फेसिंग। तो उनकी प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर कंपनियां एमएसएमई सेक्टर की हैं, तो ना तो उनके पास हायर एंड टेक्नोलॉजी के लोग हैं ना ही उनके पास हायर एंड मैनेजरियल स्किल्स के लोग हैं, क्योंकि कंपनी के पास बजट कम होता है तो जो बजट है वो मेनली मशीन्स और लेबर पर ही यूटिलाइज होता है और इसी वजह से ये कंपनियां जो है लो कॉस्ट पर प्रोडक्शन कर पाती हैं। तो हमने यहां पर इस गैप को ऑब्जर्व किया और इस एसोसिएशन के साथ अपने स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज प्रोग्राम चलाया जिसका नाम हमने दिया कर कमलम। तो कर कमलम में हमने क्या किया कि कंपनी को ही कहा कि जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं, जो आपका एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी है, उस पर आप हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे दीजिए और उस ट्रेनिंग के बाद उन स्टूडेंट्स को अपने यहां कुछ समय इंटर्नशिप का ऑप्शन दीजिए। जब वो इंटर्नशिप कर लेंगे तो उन स्टूडेंट्स को आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में भी पता होगा, प्रोसेस के बारे में भी पता होगा, व्हाट मटेरियल यू आर यूजिंग मटेरियल के बारे में भी पता होगा और कहां कहां कितना कॉस्ट इन्वॉल्व है वो बच्चे जान पाएंगे। तो स्टेज थ्री में हमने उन बच्चों को फिर कंपनी के साथ अलाइन किया कि अब आप उसी प्रोडक्ट को दोबारा से रिडिफाइन करिए, और इस बार जो डिफाइन करेंगे वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट के एंगल से डिफाइन करेंगे। सस्टेनेबिलिटी के लिए हमने उसमें बच्चों को पहले क्वार्टरपल बॉटम लाइन अप्रोच हमने बाकायदा सिखाया है, जिस अप्रोच में हम चार डायमेंशंस पर काम करते हैं, चार पीस पर काम करते हैं, जिसमें पहला पी जो है वो प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट कंपनी का मेंटेन रहना चाहिए। दूसरा हमने प्लेनेट, यानी कि कोई ऐसा वो ना हो जिससे पृथ्वी को नुकसान पहुंचे। तो आप जो प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं उसमें कोई बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट हम यूज कर सकते हैं तो उसको आप कीजिए। हम मटेरियल को जो है कम यूज कर सकते हैं, या ऐसा कोई मटेरियल यूज कर सकते हैं जो है जो समय के साथ अपने आप डिस्पोज ऑफ हो जाए, तो आप उस मटेरियल को यूज कर सकते हैं। तब फिर तीसरा हमने डायमेंशन लिया पीपल, कि कोई ऐसा प्रोडक्ट मत बनाइए जिसमें, जैसे अभी सर ने बात की कि केमिकल हैजार्ड्स जो है आजकल काफी सारे मतलब इंडस्ट्री में जो है फर्टिलाइजर केमिकल्स वगैरह जो यूज हो रहे हैं वो आम आदमी की सेहत पर असर डाल रहे हैं। तो जो भी आप कंपनी का प्रोडक्ट जो है रिडिफाइन कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में कोशिश करिए कि वो पीपल के लिए भी हार्मफुल ना हो। और चौथा द पर्पज शुड बी वेल डिफाइंड। तो ये चार पीस को लेकर हमने बच्चों को सिखाया कि अब आप उन्हीं कंपनियों को जो पहले से प्रोडक्शन कर रहे हैं और पहले से उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, उनके प्रोडक्ट्स को दोबारा से बनाइए, और इस बार कोशिश करिए कि वो कंपनी का जो प्रोडक्ट बन रहा है जो आपके साथ मिलकर बना रहे हैं वो किसी न किसी आईपीआर से प्रोटेक्टेड भी रहे। यानी कि कंपनी जो है वो उस प्रोडक्ट को अगर यूज कर रही है तो अगर उसकी लिमिटेशन ये है कि उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, छोटी कंपनी है और उसने आपके साथ मिलकर एक अच्छा प्रोडक्ट डेवलप किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट में सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। तब उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो कंपनी जो है वो अपने उस प्रोडक्ट को जो उसका आईपीआर उसके पास है किसी दूसरी कंपनी के साथ रॉयल्टी पर शेयर कर सकती है। तो ये एक ऐसी विन विन सिचुएशन है जिसमें स्टूडेंट जो है पढ़ने के साथ साथ पैसा कमाना सीख रहे हैं, और क्योंकि उस समय बहुत क्रिएटिविटी होती है बच्चों के माइंड में तो वो रोज नए नए डिजाइन सोचते हैं और वो कंपनी के लिए फेवरेबल सिचुएशन है। तीसरी बात, जो दो थोड़ा सा खर्चा आता है जो है आईपीआर करने में, उसके लिए जो है जो हमने जो पेटेंट पर हमने कंसल्टेंट हायर किए हैं वो अपनी मदद करने को तैयार है कि अगर बच्चा स्टार्टअप कंपनी शुरू करता है तो गवर्नमेंट की सपोर्ट से हम कोई प्रोफेशनल फीस उसको चार्ज नहीं कर रहे हैं जो है, तो इस वजह से आसानी से आप आईपीआर पर भी जा सकते हैं, चाहे पेटेंट हो या डिजाइन हो। और जो कंपनियां हैं अगर वो उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं तो हमारा सोचना ये है कि जो सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लोग विशेष रूप से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पर अपना नया कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम कंपीट करना चाहते हैं तो हम कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी से नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट और चेंज होने वाली है। अभी आने वाले एक दो साल के अंदर जो है साइबर फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, यानी कि प्रोडक्ट का डिजाइन एक कंट्री में हो रहा होगा, वैलिडेशन दूसरे कंट्री में हो रहा होगा और मैन्युफैक्चरिंग तीसरे कंट्री में हो रही होगी। मैन्युफैक्चरिंग वही हो रही होगी जहां कंजम्पशन होना है। तो अभी जो डिजाइनर का रोल है वो बहुत वाइड होने वाला है। डिजाइनर को प्रोडक्शन जो डिफाइन करना पड़ेगा वो इस हिसाब से करना पड़ेगा कि दुनिया के किसी भी कोने में उसे रेप्लीकेट किया जा सके। तो ये बड़ा बदलाव का दौर है और यहाँ पर हर एक मतलब आदमी की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो चेंज हो रही है। तो डिजाइनर का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लोकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन न करके ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिजाइन करने पर आ जाती है।
1: राइट सर। तो सर अमित सर तो IIA के साथ पहले से काम कर रहे हैं, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ। हमने जब भी उनको सर अप्रोच किया है, मैंने खुद पर्सनल कैपेसिटी में, तो हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता था कि कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंज कर सकते हैं, कुछ इजीमेंट कर सकते हैं। ये डिजाइन का सर से सुन के सर मुझे ऐसा लगा, और उन्होंने बोला कि एट दी एंड मैन्युफैक्चरिंग तो उधर ही होगी जहाँ पे कंजम्पशन होगी, दैट मीन्स इंडिया की भी हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे आ सकती है, इजिली आउटसोर्स हो सकती है अगर हमारी टेक्नोलॉजी और डिजाइन दोनों पिलर्स जो ये है एक साथ एमएसएमई और एमएसएमई में काम करे।
2: क्वेश्चन को मैं पिक करना चाहूंगा। देखिए मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। 2016 की बात है, एक बच्चा मेरा एक स्टूडेंट जो है वो एक उसने अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काफी सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं जो हम किराए पर मंगाते हैं, है ना, विदेशों से किराए पर मंगाए जाते हैं और उसके लिए एक बड़ा हेफ्टी अमाउंट हम लोग रेंट पे करते हैं, तो क्यों ना इस इंडस्ट्री को टैप किया जाए और हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स देश में बनाएं। तो उस बच्चे ने एक कंपनी के साथ मिलकर जो है अपना जो है स्टार्टअप शुरू किया एंड बेसिकली ही वॉज डूइंग एज ए वेंडर. तो मैंने उसको कहा कि भाई आप जो है इसको बड़े पैमाने पर करिए. और फॉर्चुनेटली ऑन माई सजेशन दैट गाय शिफ्टेड टू IIM लखनऊ एक्सटेंशन सेंटर एट नोएडा. तो वहां सर उसको जो है वो वर्क कल्चर मिला और जो FPM के कुछ स्कॉलर्स थे जो है उन्होंने भी उस कंपनी को थोड़ा गाइड किया, मेंटोर किया. एंड फाइनली इन ए वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम जब स्टार्टअप समिट हुआ तो उसमें उसके प्रोडक्ट को फर्स्ट प्राइज मिला एंड दैट वॉज द गेम चेंजर. अभी वो कंपनी जो है 300 के करीब प्रोडक्ट्स बनाती है. इन 6 ईयर्स ऑफ स्पेन दे हैव डेवलप्ड मोर देन 300 प्रोडक्ट्स एंड आई फील वेरी एक्साइटेड टू शेयर दैट दे हैव स्टार्टेड देयर ब्रांच एज टेक्सास. बिकॉज द कंपनी द फाउंडर भुवनेश शर्मा ही शेयर्ड विद मी दैट सर इन इंडिया वी आर हैविंग 70,000 किलोमीटर्स लॉन्ग पाइपलाइंस बट इन बोथ अमेरिका एंड कैनेडा द लेंथ ऑफ द पाइपलाइन इज मोर देन 150,000 किलोमीटर्स. सो वी हैव मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देयर एंड टूडे वी हैव द कैपेबिलिटी टू कैटर बिकॉज वी हैव डेवलप्ड दैट लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल सेटिस्फेक्शन. अभी एक दो महीना पहले ही जो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री का जो स्टार्टअप का समिट हुआ उसमें उनकी कंपनी को बेस्ट स्टार्टअप इन पेट्रोलियम सेक्टर का अवार्ड भी मिला है. और फॉर्चुनेटली आज उनकी कंपनी में ONGC भी का शेयर भी है, गेल का शेयर भी है, मिडिटी पाइपलाइंस के नाम से जो कंपनी है. तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि जो कंपनी जिसको हमने थोड़ा सा सपोर्ट किया और एक निश एरिया में किया. पाइपलाइन इंडस्ट्री वॉज नॉट सपोज टू बी ए कॉमन एरिया फॉर एवरीवन बट दैट गाय भुवनेश शर्मा वॉज हैविंग एक्सपीरियंस इन दैट एरिया विच ही यूटिलाइज्ड एंड टूडे बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ही इज हैविंग सच ए बिग कैटलॉग ऑफ द प्रोडक्ट्स कि आज हम अपने देश में भी प्रयोग कर रहे हैं और साथ ही एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली जो विजन है हमारा स्टार्टअप्स के पीछे वो यहां मेटरलाइज होता दिख रहा है. तो मैं दूसरे स्टार्टअप जिनको भी मैं मेंटोर कर रहा हूं उन सबको भी मैं यही कहता हूं डोंट कन्फाइन योरसेल्फ टू ए लोकल एरिया. जब तक आपके दिमाग में ये सोच नहीं आएगी कि मुझे इंटरनेशनली कम्पीट करना है, मुझे ग्लोबली अपने लिए स्पेस बनाना है. क्योंकि जो भी स्टार्टअप जिन्होंने नाम कमाया है वो सब वो है जिन्होंने ग्लोबली अपनी प्रेजेंस को शोकेस किया है. तो पहले दिन से ही हमको ये थॉट प्रोसेस भी बनाना पड़ेगा कि हम टाइम स्पेन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा टाइम के साथ 5 साल में 10 साल में हम कितने साल में इंटरनेशनली अपनी प्रेजेंस क्रिएट कर पाए.
1: सर सेम क्वेश्चन आपके पास ले जाऊंगा, बस एक ऐड और उसमें कर रहा हूं कि इसमें थोड़ा इसके चैलेंजेस के बारे में भी अगर बता पाए कि ये जो डिजाइन और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन कराना है मैन्युफैक्चरिंग ऐसे में के लिए इसके कुछ अर्ली चैलेंजेस हो जिसको हमें सॉल्व करने.
0: जरूर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा. लगता है छोटा सा ब्रेक हम हमारे सुनो शारदा के श्रोताओं के लिए लेते हैं और फिर हम जल्दी इस चर्चा के ऊपर वापस आएंगे.
1: श्योर सर. तो सभी का दोबारा वेलकम. और अभी लास्ट क्वेश्चन हम पुट कर रहे थे अमित सर से. सो जो डिजाइन चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी के बीच में, और जो चैलेंजेस हमें इस इंटीग्रेशन डिजाइन और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेशन करने के लिए आगे आ सकते हैं, उस चैलेंजेस से कुछ हमें फेस टू फेस करा सके बच्चों को कि पता लगे कि क्या क्या आगे फ्यूचर में हो सकते हैं.
0: डिजाइन और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके अगर हम फाइनली प्रोडक्ट तक जाने की बात अगर हम करें तो वहां पर फिर थोड़ा सा एक वाइडर हमें एक एस्पेक्ट देखना है जो डिजाइन थिंकिंग जिसको बोला जाता है. तो डिजाइन थिंकिंग एक कॉन्सेप्ट ऐसा आता है, वैसे तो जो थ्योरी में पढ़ाया जाता है सिलेबस में भी बहुत लोग पढ़ते हैं, डिजाइन वाले लोग भी पढ़ते हैं, कि एक 5-step प्रोसेस है जहां पर आपने कुछ कॉन्सेप्ट आइडिया से स्टार्ट किया और फिर अल्टीमेटली करते करते करते फाइनल पूरा प्रोडक्ट आपने बनाया. तो वो डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस के अंदर जब कोई भी स्टार्टअप जाएगा तो वहां पर उसे समझ में आएगा कि मैं जो भी बनाने जा रहा हूं वो क्यों बनाने जा रहा हूं, किसके लिए बनाने जा रहा हूं, और उसके हिसाब से फिर उसको वो टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करना है. तो अगर आप टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन की बात करेंगे प्रोडक्ट के अंदर डिजाइन से शुरू करते हुए तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस एक ऐसी चीज है जिसमें हर एक स्टार्टअप को जरूर सोचना चाहिए और उसकी नॉलेज उनको होनी चाहिए. तो वहीं से उन्हें समझ में आएगा कि मेरा जो एंड यूजर है, जो भी कस्टमर है, उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी वो प्रॉब्लम एरियाज क्या है जिसके ऊपर उन्होंने स्टार्टअप पूरा शुरू किया है, और उस प्रॉब्लम एरिया के हिसाब से, उस यूजर के हिसाब से ही हम अपना पूरा प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे. ऐसा ना हो कि मैंने अपने प्रोडक्ट के अंदर इतनी हाई एंड टेक्नोलॉजी बना लगा दी कि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा चली गई और मेरा जो एंड यूजर या कस्टमर है वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है. या मैंने ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दी जो यूज करने में बहुत डिफिकल्ट है, तो एक जो हम यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट या सर्विस की बात करते हैं वो वहां पे फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो इसके इस हिसाब से और ये सारी जब हम मैपिंग करते हैं तो इसी को कहीं ना कहीं हम प्रोडक्ट मार्केट फिट की बात हम करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट मैं बनाने जा रहा हूं जब मैं डिजाइन फेज से ही ये सारी चीजें लेकर चलूंगा कि अल्टीमेटली वो एक प्रोडक्ट मार्केट फिट को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो भी उसके यूजर्स हैं कस्टमर्स हैं क्या उसको कंफर्टेबली अफोर्ड कर पा रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं, आफ्टर सेल सपोर्ट आपको क्या देना है, कहीं वहां पर मैंने ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर ली है जिसका मैं बाद में सपोर्ट ही नहीं दे पा रहा हूं। और

0: अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, उसको कोई रिपेयर करना है, ठीक करना है, वो सपोर्ट अगर अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल चैलेंज आ जाता है। तो कितनी चीजें ऐसी हैं जहां पर हम उसको एक कम कॉस्ट के अंदर आफ्टर से सर्विस भी दे पाए। कोई भी यूजर को अगर कोई आपका प्रोडक्ट यूज करने में प्रॉब्लम आती है, चाहे वो एक होम यूजर है या वो एक इंडस्ट्री में आपने कोई मशीन सप्लाई की, अगर आप उसको बोलते हो कि प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूरा वापस भेजो, हम ठीक करके आपको दोबारा देंगे, या उसकी इतनी कॉस्ट लगेगी, तो वहां पर कहीं ना कहीं ना तो वो आपका यूजर सेटिस्फाई होगा और ओवरऑल जो भी बिजनेस है, जो स्टार्टअप है, उसके बिजनेस को भी वो अफेक्ट करेगा। तो ये टेक्नोलॉजी जरूर हमें देखना पड़ेगा।
1: जी ऐड करना चाहूंगा कि बेसिकली जो अमित सर ने बात की जो है, तो आजकल स्टार्टअप जितने भी हैं उनको ये मेथोडोलॉजी समझना पड़ेगा, और इसको हम कहते हैं लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी। मीन्स जैसे सर ने कहा कि हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो यूजर्स के लिए कितना यूजेबल है। अब कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट जो होता है वो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे होता है, लेकिन वक्त से पहले हम उसे लॉन्च कर देते हैं, उसके लिए मार्केट प्रॉपरली डेवलप नहीं होता और प्रोडक्ट फेल कर जाता है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि प्रोडक्ट इसलिए फेल कर गया कि वो वक्त से पहले बनाए। दूसरी बार कई बार क्या होता है कि हम जैसे जो प्रोडक्ट हमारे दिमाग में आया, हमने उस प्रोडक्ट को डेवलप किया, बाद में हमको पता चला जैसे सर ने बताया कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए था, कस्टमर की एस्पिरेशन कुछ और थी। तो अभी एक कंसेप्ट जो है वो जो हमको सबको सीखना पड़ेगा, दैट इज द मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, मिनिमम वैल्यू प्रोपोजिशन के हिसाब से हमको डेवलप करना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट आज जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बड़े वाइडली यूज हो रहा है। अब आप देखिए कि एक कार आती है मार्केट में जो है, और उस कार के आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि 27 वेरिएंट्स अवेलेबल है सेम कार के जो है, और जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है वो एक्स प्राइस से 2x प्राइस तक है। तो द सेम कार इज बीइंग ऑफर्ड विद मल्टीपल ऑप्शंस। तो जैसे सर ने कहा कि उसकी यूजेबिलिटी के हिसाब से हम उसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करते जा रहे हैं, या जो डिजाइनर का पार्ट है, जैसे अभी तक आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, अभी हम डिजाइनर की बात कर रहे हैं। तो जो डिजाइनर है कार में, डिजाइनर्स आर प्लेइंग ए वेरी वाइटल रोल दीस डेज, क्योंकि कार में अब जैसे डैशबोर्ड है, तो प्रीवियस डेज में यह था कि डैशबोर्ड जो है इंजेक्शन मोल्डिंग से बन के आते थे। अभी क्या हो गया कि जितनी प्रीमियम सेगमेंट कार्स हैं उसमें डैशबोर्ड आपकी विलिंगनेस के अकॉर्डिंग जो है 3D प्रिंटिंग से बनाया जाता है। तो हियर द डिजाइनर्स प्लेज ए वेरी वाइटल रोल कि हमको जो भी कस्टमर की एस्पिरेशंस हैं उनको कैसे फिट करना है उस कार के अंदर। तो जो कार है उसमें न केवल अब टेक्नोलॉजिकल फीचर्स का वो रह गया है, बल्कि कंफर्ट जोन के हिसाब से, इर्गोनॉमिकल फैक्टर्स के हिसाब से, यूजेबिलिटी के हिसाब से, अलग अलग प्रोफेशनल्स जो कार को यूज कर रहे हैं उनके प्रोफेशन को ध्यान में रखते हुए कार्स के इंटीरियर को रिडिफाइन किया जा रहा है। और यहां पर जो रोल है वो डिजाइनर का रोल है। ये अलग बात है कि जितने पैसे में हमको उसको डिफाइन करना है, जितना उसका बजट है, उसको हमको रिवर्स इंजीनियर करते हुए यूजर सेटिस्फेक्शन के हिसाब से, क्योंकि अभी जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है उसमें इस चीज पर बहुत जोर है कि यूजर एक्सपीरियंस शुड बी एक्सीलेंट। सो बाय यूजिंग द लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी, न्यू स्टार्टअप कैन पिक अप द मार्केट इन एनी सेगमेंट बाय कंसीडरिंग दीज फीचर्स। जैसा अभी सिंगल सर ने बताया कि कंज्यूमर को ध्यान में रख के बनाना, अगर डिजाइन मेथोडोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, डिजाइन थिंकिंग आप यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड हैव टू एम्पैथाइज विद द कस्टमर। तो ये एक बेसिक नीड बन गया है आज की तारीख में, जिसको सभी को फॉलो करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल, और ये टेक्नोलॉजी एम्बेड करना, सर ने बिल्कुल सही कहा कि वेरिएंट्स बहुत सारे आपके प्रोडक्ट के हो सकते हैं, और लीन स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट लेके बिल्कुल आप बहुत सही आपने बात ये बताई, बहुत अच्छा आपने टर्म यूज किया कि लीन स्टार्टअप लेके आपको चलना पड़ेगा। अगर आपके टेक्नोलॉजी में जो भी प्रोडक्ट आप फाइनली बनाना चाहते हैं उसमें हो सकता है 10 अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही हो, तो कहां पर कितनी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने के बाद वो मेरा MVP मार्केट में निकल के आ जाएगा और मुझे एक यूजर एक्सपीरियंस और एक फीडबैक कस्टमर से मिल जाएगा, तो वो उसको समझना बहुत जरूरी है। और जो डिजाइनर है उसको ये ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि आज मैंने एक डिजाइन बना दिया, मेरा MVP के अंदर 4 फीचर्स हैं, लेकिन 2 साल के बाद जब मैं इसके एडवांस वर्जन बनाऊंगा या जब मेरे इसके 10 वेरिएंट आ जाएंगे, तो ऐसा ना हो कि मुझे वो पूरा रीडिजाइन करना पड़े। तो वो सारी टेक्नोलॉजी जो मुझे अपने आने वाले वर्जन के अंदर लेके आनी है, जो मुझे नए फीचर्स देने हैं या मुझे वेरिएबल फीचर्स देने हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस डिजाइन के अंदर फिट होने चाहिए। तो ये डिजाइनर को एक समझना बहुत जरूरी है, और जितना जल्दी उस चीज को समझ लेंगे और उसी हिसाब से स्टार्टिंग से वो इस टाइप का डिजाइन बना के चलेंगे, तो वो उनकी आने वाली प्रॉब्लम्स को आसान करेगा और आगे के कॉस्ट रिडक्शन में भी उनको हेल्प करेगा। करना। तो ये वेट ना करें कि मैं 10 चीजें एक साथ लेकर फिर उसको मार्केट में लेकर जाऊंगा। तो लीन स्टार्टअप एमवीपी लेकर एक मिनिमम सेट ऑफ फीचर स्पेसिफिकेशन के साथ उसको मार्केट में लेकर जाएं और देखें कस्टमर का, यूजर का क्या उसका रिस्पांस है, कैसा फीडबैक है, और उसके हिसाब से उसको अपग्रेड करते चले जाएंगे। लेकिन डिजाइनर को सारी चीजें एक साथ माइंड में रखनी पड़ेंगी, उसको एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलना पड़ेगा।
2: सर, जैसा कि हम लोग शो से पहले बात कर रहे थे, सर बता रहे थे कि ज्यादा इनोवेशन पे फोकस करके थोड़ा इनोवेशन और थोड़ा इंक्रीमेंटल होके भी ज्यादा वैरायटीज कस्टमर्स के लिए बनाई जा सकती है। हाँ। उनको ज्यादा ऑप्शन दिए जा सकते हैं,
0: बहुत सारी चीजें आप इंक्रीमेंटल इनोवेशन से कर सकते हैं। आप एक मार्केट में अपनी प्रेजेंस बना सकते हैं,
2: खास करके नॉर्थ इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए जहां से हम बिलोंग करते हैं। और हमने देखा है कि हम लोग सॉफ्टवेयर कम और हम लोग हार्डवेयर प्रोडक्ट बेस्ड एमएसएमई ज्यादा बेस्ड है, और हमारे यहाँ भी टैलेंट वही निकलता है जो सॉफ्टवेयर कम बनाता है और हार्डवेयर प्रोडक्ट ज्यादा बनाते हैं। और अगर ये दो चीजें लोग अगर इस शो के दौरान जो लोग ज्यादा बात को समझना स्टार्ट करें कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की जो शक्ल है वो पूरी बदल सकते हैं अगर हम एक अच्छे डिजाइन और एक टेक्नोलॉजी का अच्छा मिश्रण कर सके। तो सर लॉन्ग दोनों से ही आप दोनों से ही लास्ट सवाल है मेरा कि इसका आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कैसा देख रहे हैं इंडिया के अंदर, जहाँ पे डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप होम्स हर जगह पे इफेक्ट कर रहा है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए है या फिर सब ट्रेडिशनल डिजाइन के लिए, अब ये इंडस्ट्रीज को भी टच कर रहा है, पहले भी टच कर रहा था शायद हमें नहीं पता था। जैसे सर ने अभी ऑटोमोबाइल का एक एग्जाम्पल दिया, उससे मुझे काफी क्लियर हुआ कि कैसे हाउ द डिजाइन प्लेज इम्पोर्टेंट रोल विद लिमिटेड टेक्नोलॉजी।
1: बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए भारत में कहीं ना कहीं हमारी एक जो सोच है वो वर्तमान में जीने की है, और बचपन से हमको यही सिखाया जाता है कि भविष्य की चिंता छोड़ो, भूत का पश्चाताप न करो, वर्तमान में जियो। तो हमारी जो सोच है वो बचपन से इस तरीके से डेवलप हुई है कि हम वर्तमान में ही जीना चाहते हैं, और इसका नुकसान जो है वो इंडस्ट्री को होता है कि हमारा जो युवा है वो जिस इंडस्ट्री में काम करना चाहता है या जो प्रोडक्ट वो डेवलप करना चाहता है वो वर्तमान जरूरत के हिसाब से करना चाहता है। जैसे अभी डॉक्टर अमित ने बात की जो है कि आप आने वाले 2 साल के बाद अपने प्रोडक्ट में क्या इंटीग्रेशन करेंगे वो आज आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि आप रोज नया प्रोडक्ट नहीं डिफाइन करेंगे, आप उसी प्रोडक्ट को रिडिफाइन करेंगे। तो यहां पर जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि अभी हम इंडस्ट्री 4.0 के एरा में हैं, और इस एरा में हमने करीबन 9 टेक्नोलॉजीज को पूरे वर्ल्ड में अडॉप्ट किया, लेकिन अभी भारत में हम अगर देखें तो हम काफी पीछे खड़े हैं। हमारी इंडस्ट्रीज में अभी भी काफी रेजिस्टेंस है, और अभी भी हम जो है लेबर सेंट्रिक इंडस्ट्रीज क्रिएट करने के विषय में ही सोचते हैं। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि अभी अगर हमको कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो हमें टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन करना ही पड़ेगा। जैसे क्लाउड है तो अभी कांट इग्नोर क्लाउड टुडे, चाहे वो जैसे अभी एम्पैथाइज करने की बात चल रही थी, तो एम्पैथाइज करने के लिए अभी कंपनियां एआई का प्रयोग करके बेसिकली वो डेटा कलेक्ट कर रही कि कस्टमर को क्या पसंद है। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे देश में हम उस लेवल पर उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें यही नहीं पता चल रहा है कि मार्केट में जो चेंज आ रहा है, जैसे फाइनेंशियल्स चेंज हो रहे हैं लोगों के, तो उनकी एस्पिरेशंस कैसे बदल रही हैं, वो किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहते हैं। तो अभी एआई के माध्यम से काफी सारी इंडस्ट्रीज जो है इसको कर रही हैं। तो ये डिजाइनर्स के लिए भी डिजिटल वर्ल्ड जो है इट इज एन अपॉर्चुनिटी दैट दे शुड ट्राई टू कलेक्ट द बेस्ट फीडबैक व्हाट द एस्पिरेशन इज। देन आईओटी जैसे अभी काफी बहुत ही कॉमन हो गया है अब जो है, लेकिन अभी हमारे देश में आईओटी का एप्लीकेशन उतना ज्यादा नहीं है। अभी अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो बहुत ही मतलब बेसिक अभी हमने यूसेज शुरू किए हैं,
0: शायद वो इतना डेवलप नहीं हो पाए कि हर कोई इसे इस्तेमाल कर पाए अभी।
1: तो अभी हमको अपने जो प्रोडक्ट डिजाइन हम कर रहे हैं, चाहे वो जैसे अभी देश में जो है एक नई पॉलिसी आई है, न्यू जियो स्पेटियल पॉलिसी, तो पूरे भारत को हम लोग डिजिटली मॉनिटर करने वाले हैं। जमीन का एक एक इंच टुकड़ा जो है वो डिजिटली मैप होने वाला है, और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज बननी है। But it is very unfortunate that we don't have many companies, those who are working in these areas. जैसे सिविल इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं वो सिविल इंजीनियरिंग का मतलब आज भी सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करना समझते हैं, ना तो वो नए मेटेरियल्स डिजाइन करने में आगे आते हैं और ना ही नई टेक्नोलॉजी। अब जैसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का अभी तक जो है हम जो यूज कर रहे थे वो केवल कुछ प्लास्टिक कंपोनेंट्स डेवलप करने के लिए कर रहे थे, अभी पूरे वर्ल्ड में बहुत वाइडली जो है मेटल पार्ट्स के लिए यूज होने लगा है। लेकिन चाइना में ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड टू मेक बिल्डिंग्स यूजिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, तो हमारे देश में भी आने वाले टाइम में ये होगा। लेकिन यहां पर ये चीज समझने की है कि हम केवल बिल्डिंग्स यूज करने के लिए मतलब बनाना चाहते हैं या हम वो मशीनें डेवलप करना चाहते हैं जो प्रयोग की जाएंगी। तो अभी हमको अगर भारत को विश्वगुरु वाकई बनाना है तो हमें अपने कर्तव्यों को ठीक से समझना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को आने वाले 10 साल के बाद क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हुए देखना चाहते हैं, क्या बने हुए प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं, यानी कि हम ड्राइवर्स बनाना चाहते हैं या कार बनाना चाहते हैं। तो अगर हमें अपने बच्चों को कार बनाना सिखाना है तो हमें उन्हें मटेरियल्स भी सिखाना पड़ेगा, प्रोसेस भी सिखाना पड़ेगा, और उसकी हर कंपोनेंट की यूटिलिटी कैसे है और उनकी कनेक्टिविटी कैसे है ये सब सिखाना पड़ेगा, चाहे वो डिजाइनर के पार्ट पर हो चाहे टेक्नोलॉजी के पार्ट पर हो। क्योंकि अभी क्या है कि अभी दोनों अलग अलग नहीं चल सकते। अभी जो काफी सारे टेक्नोलॉजी कंपोनेंट है दे आर इन्फ्यूज इन टू द डिजाइन ऑफ द कंपोनेंट, मतलब हमको प्रोडक्ट ऐसा बनाना है जो देखने में बिल्कुल साफ सुथरा हो। तो बहुत सारे जैसे कहीं पहले वायरिंग्स दिखाई देती थी, आजकल आपको कहीं कोई वायरिंग दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जब हम बिल्डिंग डिजाइन कर रहे होते हैं तो बिल्डिंग डिजाइन करते समय हम पूरे वायरिंग कंड्यूट्स, पाइपलाइन कंड्यूट्स, सारी कंड्यूट्स, जो जैसे अभी हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करना है तो उसके कंड्यूट्स भी हम पहले से डिफाइन करके रखते हैं। तो ऐसे ही हमको ये समझना और समझाना पड़ेगा अपने बच्चों को जो है कि आने वाले 10 साल में IoT हर जगह होगा, हर डेटा क्लाउड पर होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी हमारी जरूरत बन जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया साइबर फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स जो है वो एक रियलिटी होंगे। हम हर आदमी के हिसाब से कस्टमाइज प्रोडक्ट बना रहे होंगे और फिर भी मास प्रोडक्शन कर रहे होंगे। और तीसरी बात ये कि अगर हमारे पास डिमांड जो है वो बॉम्बे से आ रही है तो हम बॉम्बे में ही वेंडर ऐसा तलाशेंगे जो है जो बॉम्बे में ही बस मैन्युफैक्चर कर दे। डिजाइनर जैसे अभी आपने कहा हमारा फैशन डिजाइनर यहां बैठ के डिजाइन करेगा, लेकिन वो इस तरीके से डिजाइन करेगा जिसमें मशीन्स भी स्पेसिफाइड है, मटेरियल भी स्पेसिफाइड है और प्रोसेस भी वेल स्पेसिफाइड है। तो दैट कैन बी रेप्लिकेटेड एट एनी कॉर्नर ऑफ द ग्लोब। हमारे बच्चों को भी आने वाले टाइम में जो अपने स्टार्टअप्स खड़े करने हैं उनके प्रोडक्ट्स को इसी प्रकार से प्लान करना पड़ेगा। ये तरीका हम सोचें कि अभी हम यहां पर एक पर्टिकुलर प्लेस पर सपोज करिए गौतम बुद्ध नगर इंडस्ट्रियल एरिया में हम प्रोडक्शन करते हैं और फिर सोचें कि हम उस माल को हम एक्सपोर्ट करेंगे न्यूयॉर्क में जो है, तो आज की तारीख में एक्सपोर्ट में बहुत सारे कॉस्ट वैसे इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। तो ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, तो दूसरे काफी सारे टैक्सेशन बढ़ जा रहे हैं, तो इट इज ए बेटर वे कि वो जो हमारा यहां का स्टार्टअप है वो वहां किसी स्टार्टअप या किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर ले, डिजाइन यहां से कर ले, लेकिन उस डिजाइन का IPR जो है वो होना चाहिए और उसके बाद उस प्रोडक्ट को किसी भी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके वहां प्रोड्यूस करे। ये मॉडल अगर आप देखें तो अभी डिफेंस सेक्टर में हमारे देश में काफी यूज हो रहा है। बट आई एम वेरी सॉरी टू से हमारे अपने देश की इंडिजिनियस कंपनियां विदेशों में जाकर कहीं कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी ये क्योंकि इंसेप्शन स्टेट में है, धीरे धीरे हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ये देखने को मिले। अभी हमारे देश में जैसे ड्रोन सेक्टर काफी इंप्रूव कर रहा है, काफी सारे बच्चे ड्रोन सेक्टर में जो है अपना स्टार्टअप्स क्रिएट कर रहे हैं। और अभी क्योंकि इसमें बहुत पॉलिसीज नहीं वेल डिफाइंड थी इसलिए मतलब प्रॉपर रोड मैप नहीं था। अब नई पॉलिसी आ गई है ये स्पेटिकल पॉलिसी, तो अब बच्चों को ये पता होगा कि उनको क्या क्या लाइसेंसेस लेने होंगे और क्या क्या प्रोडक्शन वो कर सकते हैं, क्या चीजें लीगली अलाउड हैं हमारे देश में क्या नहीं अलाउड हैं। देन अगर उनके पास IPR प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं तो उन प्रोडक्ट्स को बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो खरीदना चाहते हैं। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम ये समझें कि मार्केट केवल अपना देश नहीं है, विश्व के डिफरेंट कॉर्नर्स में हमारे लिए मार्केट एग्जिस्ट करता है। तब हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि ये जो एसोसिएशन या कोलैबोरेशन की हम बात कर रहे हैं ये केवल अपने देश में या लोकल लेवल तक ही सीमित ना रहे और इसको जितनी जल्दी हो सके हमें जो है ग्लोबल लेवल पर ले जाना पड़ेगा, बिकॉज द वर्ल्ड इज श्रिंकिंग और जैसे हम कहते हैं द ग्लोब इज नाउ ए विलेज। तो हमको भी ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हमारी इंडस्ट्री जो यहां बैठी हुई है, जो स्टार्टअप है, उसको कैसे हम ग्लोबली कनेक्ट कर सकते हैं और वहां जो इंडस्ट्री है उसके पास क्या फीचर्स हैं या क्या टेक्नोलॉजीज है जो हम यहां से वहां रेप्लिकेट कर सकते हैं, प्रोडक्शन वहां कराकर वहां कैटर कर सकते हैं। तो ये स्टार्टअप्स के लिए एक नई तरीके का डायमेंशनल शिफ्ट होगा जो अगले कुछ सालों में एक रोड मैप की तरह काम करेगा और सभी सेक्टर्स में एम्पल अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, चाहे वो फिल्म एंड डिजाइन का सेक्टर हो, चाहे वो सिविल से रिलेवेंट सेक्टर्स हों, चाहे प्रोडक्शन से रिलेवेंट सेक्टर्स हों। तो एवरीवेयर द अपॉर्चुनिटी इज अबंडेंटली अवेलेबल। और जैसे मैंने डिजिटल ट्विनिंग की बात करी, पूरा ग्लोब अभी डिजिटल ट्विनिंग का वेट कर रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही शहर हैं पूरे विश्व के जो है जो डिजिटल ट्विन के माध्यम से डेवलप किए गए हैं। और अगर हम आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करेंगे, नए हमारे स्टार्टअप नहीं आएंगे या पुरानी हमारी जो कंपनियां हैं वो बड़े पैमाने पर इसको अडॉप्ट नहीं करेंगी, तो फिर क्या होगा कि हम एक बार जो है शहर को डेवलप करेंगे, फिर डिसमेंटल करेंगे, फिर डेवलप करेंगे। तो ये पाइपलाइंस का जो पूरा जाल बिछा हुआ है पूरे शहर में, वो बार बार हमको जो है वो करना पड़ेगा, उससे सिक्योरिटी इश्यूज भी क्रिएट होंगे। तो अब ये समय की दरकार है कि हम अगले 20 साल के हिसाब से रोड मैप बनाएं, और उस रोड मैप को हमको पूरा करने के लिए किन टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी, किस तरह के डिजाइनर्स की जरूरत पड़ेगी, किस तरह के आर्किटेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, किस तरह के प्लानर्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपने लैंडस्केप प्लानिंग की बात करी, तो दे आर ऑल टू बी इनकॉर्पोरेटेड वेल इन एडवांस सो दैट कंपनी शुड हैव ए फ्यूचरिस्टिक मैप ऑफ 10-20
2: ईयर्स। राइट सर। सर सेम क्वेश्चन आपकी तरफ ले जाते हुए मैं एक ऐड करना इसमें जाऊंगा लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के बारे में, कि हम जानते हैं शारदा के कुछ स्टार्टअप्स हैं जो इंडिया और अफ्रीका के अंदर डुअल बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने वहां की कंपनीज के साथ कोलैबोरेट किया है और वो दोनों टेक्नोलॉजी एक्सचेंज पे काम कर रहे हैं। तो सेम जैसे हमारे सर अभी स्मार्ट सिटीज चल रही है, अभी हमने काफी सारी अपॉर्चुनिटी करी कि जहाँ पे डिजाइन और टेक्नोलॉजी मिलके, होम्स तो डिजाइन करती थी पहले और आईओटी चीज में थी, बट अभी स्मार्ट सिटीज है, फिर रूरल डिजाइनिंग है और मतलब सिटी डिजाइनिंग है, काफी सारी चीजें है उसके अंदर। तो आपको लग रहा है ऐसे कुछ स्टार्टअप्स भी वहां पे मूव कर सकते हैं ऐसे विदेशों के अंदर यहाँ पे बच्चे टीम बना के?
0: नहीं, बिल्कुल ऐसा है। और जैसे आपने कहा कि शारदा यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जो दूसरे कंट्री से भी यहाँ पे आके पढ़ते हैं, और जो एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट है वो सभी के लिए है, चाहे वो कहीं का भी, अगर वो शारदा का स्टूडेंट है तो उनको सभी को सपोर्ट दिया जा रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट का जैसे सर ने बोला कि अगर किसी स्टार्टअप को ग्रो करना है तो उसको अपनी मार्केट को बड़ा करना ही पड़ेगा, और जिस तरह से इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स इंक्रीज कर रहे हैं डे बाय डे, आज हम लगभग 1 लाख के आसपास पहुंच गए हैं जो हमारे स्टार्टअप्स का रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स का काउंट है, तो उनको मार्केट तो उतना बड़ा चाहिए। अगर सभी ये सोचेंगे कि मैं अपने रीजन के अंदर या अपने सिटी में या अपने स्टेट में बैठकर ही मैं स्टार्टअप अपना या बिजनेस चला लूंगा, तो उसमें आने वाले टाइम में फिर कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट्स को असर करेगा। तो आपको अपनी बाउंड्री से बाहर निकलना ही पड़ेगा और एक ग्लोबल मार्केट में जाना है, और उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। और इसी डायरेक्शन में हमारे यहाँ पर भी स्टार्टअप्स काम करते हैं, तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिलकर वहां की कंट्रीज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो समझते हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं या यहाँ के स्टार्टअप्स हैं शारदा के अपने भी और बाहर के स्टार्टअप भी जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो उनको एक डायरेक्ट इनपुट मिल जाता है कि अच्छा ये 15 कंट्रीज हैं जहां पर इस तरह के प्रोडक्ट्स की ये रिक्वायरमेंट है, वहां के लोगों की ये जरूरत है, ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो वहां इजीली अवेलेबल नहीं है, अगर हैं तो वो बाहर के कंट्रीज से इम्पोर्ट किए जाते हैं। तो ऐसी रिक्वायरमेंट्स को समझ के उसके हिसाब से फिर वो अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, और फिर जो दूसरे कंट्रीज के बच्चे जो यहाँ पर हैं उनके साथ मिलकर एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरह का एक बिजनेस सेटअप करके और वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जा रहे हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल मार्केट में जाने की एक ईजी मिल जाती है, एक तो आपको वहां की लोकल मार्केट के बारे में पता लग रहा है, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, और दूसरा वहां पर आपको एक टीम मिल जाती है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहां पर हैं, इनकी एक टीम वहां पर उनकी कंट्री में अवेलेबल है जो आपके बिजनेस को वहां सेटअप करने में हेल्प करेगी, वहां के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉज क्या हैं, उनकी जानकारी आपको इनके थ्रू इजीली मिल सकती है। देन इन सारी कंट्रीज के एम्बेसीज के साथ हम बहुत अच्छे हमारे रिलेशंस हैं, तो वहां से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोलैबोरेशंस का भी एक एक्सेस मिल जाता है, उसका भी एक सपोर्ट हमें मिल जाता है। तो इस टाइप का एक ग्लोबल इकोसिस्टम बिल्ड करने की तरफ काम हो रहा है, और इस डायरेक्शन में हमें जाना ही पड़ेगा। जैसे आज पूरा वर्ल्ड इंडिया को एक मार्केट की तरह देख रहा है और उसके साथ साथ एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह भी देख रहा है। अगर हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की आज बात करें तो जैसे सर ने बोला कि जहां पर आपकी चीजें यूज हो रही हैं आप वहीं पर उसको मैन्युफैक्चर करो, तो वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल आज इंडिया है कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, चाहे वो मोबाइल फोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं और दूसरे डिजिटल डिवाइसेस हैं, उसका बहुत लार्ज स्केल पे कंजम्पशन इंडिया के अंदर हो रहा है। तो वो चीजें इंडिया के अंदर ही अगर मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाए तो उसके जो कॉस्ट है वो भी कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाएगी, टाइम बहुत आपका सेव होगा। आप एक कंट्री में चीज बना रहे हैं और दूसरे कंट्री में उसे भेज रहे हैं तो वहां पर कहीं ना एक टाइम क्रिटिकल इशू आ जाते हैं कि अगर मुझे सामान आज चाहिए और किसी भी वजह से अगर वो डिले हो जाता है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में है या कोई क्लियरेंस के अंदर है या मटेरियल की रिक्वायरमेंट की वजह से है, तो वो जो डिले है ये बिजनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इस डिले से की जो प्रॉब्लम है, इससे भी वो एक इजी सॉल्यूशन मिल जाएगा कि जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट आए वहीं पर वो मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाए। तो इस तरह से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो इंडिया में डेवलप होगी तो वो ही सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। तो इंडियन इकोसिस्टम तो बिल्ड होगा ही होगा और जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी कॉस्ट भी जरूर उसमें कम होगी जब वो लोकली यूज होगा, लोकली डेवलप होगा, मैन्युफैक्चर होगा। और सेम चीज हम दूसरे कंट्रीज के साथ भी कर रहे हैं कि जो यहां से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये डिजाइन्स यहां रेडी होकर और देन दूसरे कंट्री में जाकर जैसे भी सोलर के अंदर या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने सेटअप किया है कि यहां पर वो सारी उसकी डिजाइनिंग हो रही है, उसका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है एंड देन दूसरे कंट्री में जाकर वहां पर उसकी असेंबली किया एंड देन फिर वहीं उसे मार्केट किया और वहीं पर उसको लोकली एक सिस्टम ऐसा बिल्ड किया कि आफ्टर सेल सपोर्ट भी आप उसको वहीं उसी कंट्री के अंदर मिल जाए। आज जो एक मेजर प्रॉब्लम हम चाइना के साथ फेस करते हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका खराब हो जाता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसे

0: फेंक दो और दूसरा खरीद लो। तो ये प्रॉब्लम हम कहीं इस चीज को शुरू से हम लेकर चल रहे हैं कि यहां से जो भी स्टार्टअप निकलता है और अगर वो दूसरे कंट्री में जाके काम कर रहा है तो उस कंट्री में हम वहां पर ही सिस्टम बिल्ड कर दें कि उसका आफ्टर सेल सपोर्ट वहां पे दे पाए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आती है।
1: सर, बहुत
0: इस तरह से ग्लोबल इकोसिस्टम बिल्ड करने की तरफ हम इसमें काम कर रहे हैं।
1: और जैसा आपने शुरुआत में बोला कि इंडिया को अभी लोग मार्केट की तरह भी देख रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह भी देख रहे हैं, तो ये जो लास्ट पॉइंट आपने बताया कि आफ्टर सर्विस हमारी रेपुटेशन कुछ ऐसी ना बन जाए कि हम सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं और फिर वो खराब हो जाते हैं, और
0: ये नहीं होना चाहिए,
1: ये नहीं होना चाहिए। और तो आगे चलने से पहले अभी हम सोनू शारदा के लिसनर्स के लिए एक ब्रेक और लेते हैं और फिर इसके बाद इस सेशन को क्लोज करते हैं। सभी लिसनर्स का स्वागत है वापस, और इस सेशन को क्लोज करते हुए हम लोग क्लोजिंग रिमार्क लेना चाहेंगे अपने दोनों ही गेस्ट से। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे लिसनर्स को कोई बुक, कोई मूवी या फिर कोई नॉलेजफुल डॉक्यूमेंट्री अगर सजेस्ट करना चाहे बाद में पढ़ने के लिए या सुनने के लिए, जिससे उनके इन विषयों के बारे में जिसमें हमने बात करी है थोड़ी नॉलेज और बढ़े। तो सर, पहले आपसे शुरुआत करते हैं प्लीज।
2: हाँ, एक किताब जरूर मैं सजेस्ट करूंगा सभी को पढ़ने के लिए, लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी विच इज रिटन बाय इरिक राइस।
1: ओके सर,
2: तो जितने भी हमारे स्टार्टअप्स हैं जो है उनको ये किताब जरूर पढ़ना चाहिए, और जो बच्चे अभी अपना प्लान कर रहे हैं जो है बिजनेस सेगमेंट को समझना चाहते हैं उनको भी ये किताब जरूर पढ़ना चाहिए। और दूसरा डिजाइन मेथोडोलॉजी जो है, जैसे डिजाइन थिंकिंग की अभी हमने बात की या क्रिएटिव थिंकिंग की जैसे सर ने बात की, तो उसके लिए बहुत सारी अभी ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट हो गई हैं और उनकी फिलॉसफी में थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन जो बेसिक स्टेप्स हैं उनको मास्टर करना पड़ेगा, कैसे ब्रेनस्टॉर्म करना है वो मेथोडोलॉजी सीखना पड़ेगा, जैसे लेस इज मोर, तो व्हाट इज लेस इज मोर मींस, तो ये हमको डिफरेंट मतलब अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इस फिलॉसफी को डेवलप किया है उनकी जो अपनी वीडियोस हैं उनसे आप निकाल सकते हैं जो है कंसेप्ट को, कि मुझे जब प्रोडक्ट डिजाइन करना है तो उनमें किन किन बेसिक फीचर्स का यूज करना है, लास्ट 2% इज 200%, लेस इज मोर, तो ये कंसेप्ट जब तक आप सीखेंगे नहीं जो है तब तक आप अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली डिजाइन नहीं कर सकते। और जैसे मैंने इस बुक की बात की, तो ये बुक एक ऐसे ऑथर ने लिखी है जो खुद जो है एक स्टार्टअप जिसने किया और वो फेल कर गया, देन ही रियलाइज कि फेलियर के रीजंस क्या हैं, देन इट्स अ वेरी गुड बुक जिसे आई हैव रिकमेंडेड टू मेनी स्टार्टअप्स, एंड आफ्टर रीडिंग द बुक दे रिवर्टेड बैक टू मी दैट इट वाज वर्थ टू रीड।
1: सर, सेम आपके लिए।
0: मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि बुक्स जैसे सर ने बताई दिया बहुत अच्छी बुक्स हैं, और हर एक स्टार्टअप को जिस भी फील्ड में वो काम कर रहा है उस फील्ड में जो लोग पहले कुछ सक्सेस स्टोरी बिल्ड कर चुके हैं तो उनकी बायोग्राफी या उनके एक्सपीरियंसेस को जरूर पढ़ें। तो ये बहुत हमने एक कॉमन चीज देखी है कि कभी कभी लोग इंस्पायर तो होते हैं लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो स्टार्टअप कैसे बना था। ये सबको दिखता है, आज दिखता है कि ये स्टार्टअप इतना बड़ा हो गया, ये यूनिकॉर्न बन गया, ये पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहां से शुरू किया था और क्या उन्होंने शुरू में चैलेंजेस फेस किए, कैसे उन्होंने अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा किया। और फिर से लीन स्टार्टअप जरूर मैं कहूंगा सबको समझना चाहिए कि आपको शुरुआत कहां से करनी है, आप 2-3 लोगों की टीम हो, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड आपके पास हैं, तो आपको फाइनेंस की जानकारी भी थोड़ी सी होनी चाहिए, डिजाइन की जानकारी तो है ही, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं जो आपका डोमेन है उस डोमेन के बारे में भी आपको समझ होनी चाहिए, मार्केट की समझ आपको रखनी है, तो कैसे आपको ये टीम बनानी है और कैसे ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, यूनिकॉर्न फाउंडर्स हैं, इन लोगों ने कैसे टीम बिल्डिंग किया, कैसे आपस में कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स को इन्होंने सेलेक्ट किया, एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग कैसे किया, तो ये सारी चीजें हैं जो जरूर आप इस चीज को जानें, उसके बारे में पढ़ें। जिस भी फील्ड में आपका, जिस भी डोमेन में आपका स्टार्टअप है उसमें जो भी सक्सेस स्टोरीज हैं आप उस सक्सेस स्टोरी को शुरू से देखें और उनकी जर्नी को थोड़ा सा स्टडी करें, उनके चैलेंजेस को आप देखें, बिकॉज एक कॉमन चीज कही जाती है जो मैं हमेशा सभी स्टार्टअप्स को और बच्चों को भी बताता हूं कि अपनी गलतियों से तो सभी सीख लेते हैं लेकिन हम दूसरों की गलतियों से सीखें तो शायद वो हमारे काम को बहुत ज्यादा आसान कर देगा और हमारे सक्सेस के चांस को बहुत बढ़ा देगा। तो कुछ लोग जो ऑलरेडी गलतियां कर चुके हैं तो उन्होंने सीखा, उसी से हम भी बहुत पहले सीख सकते हैं बजाय इसके कि हम भी उसी गलती को दोहराएं। तो ये सक्सेस स्टोरी और उसकी जर्नी को पूरा स्टडी करने के ऊपर मैं जरूर एक मेन स्ट्रेस दूंगा, और डिजाइन थिंकिंग तो ऐसा पार्ट है जिसके बारे में हर एक एंटरप्रेन्योर को पता होना ही चाहिए।
3: तो सर, आपने बिल्कुल सही बोला, लोग ज्यादातर सक्सेसफुल चीजें ज्यादा देखते हैं सामने वाले की और उसका स्ट्रगल, उसका फेलियर नहीं, उसके बढ़ते। हालांकि जब मैं यूट्यूब को छानता हूं तो मैं कई बार देखता हूं कि जितने भी हमारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं अभी तक से, विदाउट नेमिंग देम, सबने अपने दोनों वर्जन बताए हैं। वो अवेलेबल है, वो अपनी सक्सेस भी बताते हैं, अपना फेलियर्स भी बताते हैं और अपना स्ट्रगल भी बताते हैं. बट एज एन यू नो एस्पायरिंग एम्बिशियस फर्स्ट टाइम फाउंडर हमें सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें सुनने की आदत होती है कि भाई कैसे जल्दी से ग्रो करके कितना नाम कमा लिया. बट जैसे सजेशन दिया कि हमें सब कुछ दोनों
0: और ये ऐसा होता भी है. जैसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहां पर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया जाता है तो वो लोग भी मोटिवेट करने के लिए हमेशा एक अच्छी बातें बताते हैं. लेकिन मैं कहूंगा कि अगर कहीं भी ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिलता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं तो आप जरूर ही उनसे पूछिए कि चैलेंजेस क्या आए, प्रॉब्लम्स क्या आई और आपकी क्या मेथोडोलॉजी थी उसको सॉल्व करने की.
1: राइट सर.
0: सो दैट उसके हिसाब से आप पहले से प्लान करके चल पाए.
3: तो मुझे लग रहा है
0: ये भी बता रहा है कि कभी ऐसा होता है कि एक ऑडियंस ऐसी होती है, माहौल ऐसा होता है कि आपको सब मोटिवेट करना है, सारी पॉजिटिव चीजें ही बतानी है तो आप बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें नहीं बता पाते हो. लेकिन स्टार्टअप को अपने लेवल पे भी समझना है कि मुझे कब का ऐसे मौका मिलेगा कि जहां वो जाकर मैं वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाऊँ. अगर वो किसी बुक में नहीं लिखा है, किसी वीडियो के अंदर रिकॉर्डेड नहीं है तो उनसे मिले और जानने की कोशिश करें कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया.
1: राइट. तो
0: वो अप्रोच, वो पाथ जानना बहुत जरूरी.
2: चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो बेसिकली स्टार्टअप्स की दुनिया है इसमें दो एंड्स हैं. एक एंड है जिसमें आप एक ऐसे प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें कोई काम नहीं कर रहा है और आप उसमें स्कोप पाते हैं. तो वर्ल्ड में जितने बड़े स्टार्टअप क्रिएट हुए हैं, जितने यूनिकॉर्न्स क्रिएट हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस डिसरप्शन को ही ऑब्जर्व किया है कि दूसरे लोग काम नहीं कर रहे, मैं स्ट्रगल करूंगा, जैसे भी करूंगा इसे खड़ा करूंगा. एंड दे गॉट द सक्सेस. जब उसकी सक्सेस स्टोरी क्रिएट हो गई तो उसको रेप्लीकेट करने के लिए बहुत सारे लोग मातान में आए. लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि वो जो बाद में देखकर आए जो है उनमें से ज्यादातर प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में टिक ही नहीं पाते क्योंकि तब तक एक प्रोडक्ट जो है वो ब्रांड बन चुका होता है. दूसरी तरफ एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है. तो अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो उस वहां पर आप प्रोडक्ट को थोड़ा सा भी अगर चेंज करते हैं, चाहे वो डिजाइन के एस्पेक्ट से हो, चाहे वो कॉस्ट सेविंग के एस्पेक्ट से हो, चाहे फीचर्स के हिसाब से हो, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो, तो आप अपने लिए मार्केट स्पेस क्रिएट कर सकते हैं. सो दे आर टू डिफरेंट एंड्स. और क्योंकि स्टार्टअप्स पूरे उसमें कहीं भी हो सकता है, पूरी स्पेस में कहीं भी हो सकता है, तो कोई एक मेथोडोलॉजी सब पर लागू नहीं हो सकते. और ज्यादातर स्टार्टअप्स के साथ जो सक्सेस स्टोरी है वो इसी बात पर डिपेंड करती है, जैसा सर ने कहा कि यू शुड क्रिएट ए टीम. So the team should consider the people from different domains. And now it's a high time when we should realize that when we are collaborating at the institute level or at the organizational level, we should pick the people from different domains. So that we are not lagging behind at a particular segment. अगर designer की जरूरत है तो designer हमारे पास होना चाहिए. Technology infusion की जरूरत है तो technology, जैसे सर ने कहा कि अभी electronics बहुत वो है, तो electronics में हमारे पास अब देश में capability available है, तो we can find the people from our own space कि वो design कैसे होगा और manufacture कैसे होगा. Then comes the usability through softwares. तो software में India क्योंकि leading country रहा है, हमारे पास काफी professionals available हैं और these days the technology is very easily available to डिस्कस एंड यूज. तो जो टीम हम डेवलप कर रहे हैं, दे टीम शुड बी इन सच ए वे दैट दे आर ए होलिस्टिक सॉल्यूशन. इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट वी आर डेवलपिंग फॉर वन प्रोडक्ट एंड इन दैट वन प्रोडक्ट वी मे फाइंड 10 स्टार्टअप्स वर्किंग टुगेदर फॉर ए कंप्लीट प्रोडक्ट. सो दिस मेथोडोलॉजी शुड बी इवॉल्व दैट ये जरूरी नहीं है कि एक स्टार्टअप है तो वो एक एंड प्रोडक्ट ही बनाकर दे रहा है. देयर मे बी 10 स्टार्टअप्स जो अपना अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी डोमेन में कर रहा है, डिजाइनर्स अपने डोमेन में काम कर रहा है. देयर मे बी एन स्टार्टअप कंपनी इन द डिजाइन डोमेन जो यूआई यूएक्स पर काम कर रही है या ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस पर काम कर रही है. और उधर टेक्नोलॉजी वाली कंपनी हो सकता है जो आईओटी पर काम कर रही है. उधर तीसरी कंपनी आईटी सेक्टर से हो सकती है जो आईटी सेक्टर का काम कर रही है. तो अलग अलग स्टार्टअप कंपनीज जो है दे कैन मेक ए कंसोर्टियम एंड दैट कंसोर्टियम कैन इवॉल्व विद ए बिग प्रोडक्ट सॉल्यूशंस. तो ये हाई टाइम है जो है जब हमें अपने देश को अगले 20 साल के लिए प्लान करना पड़ेगा. और इन स्टार्टअप्स के लिए भी ये जरूरी है जो है कि वो डिफरेंट फोरम्स पर आकर अपनी अपनी कैपेबिलिटीज को शेयर करें सो दैट दे कैन हैव ए बिग ड्रीम एंड कैन मेक द कंट्री विश्व गुरु.
1: तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन क्लोज करते हैं और मैं सभी सुनो शारदा के लिसनर से बोलना चाहूंगा कि आपको अगर आज के सेशन से कुछ फर्क पड़ा हो, हमें तो बहुत नॉलेज मिली है और मैंने कभी भी डिजाइन प्रोस्पेक्टिव से स्टार्टअप्स के लिए इतनी गहराई से किसी के साथ चर्चा नहीं करी, कभी नहीं सुना। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे नेक्स्ट दो आपको अपडेट्स देना चाहते हैं। एक तो कि हम लोग अगला शो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने तीनों ही गेस्ट वुमेन्स को बुलाया है। और स्पेशली कम्युनिटी लिसनर्स के लिए ये बताना चाहता हूँ कि वुमेन्स ज़्यादा से ज़्यादा जितना एंटरप्रेन्योरशिप में आए उतना बेहतर है। और आप नेक्स्ट शो को ज़रूर सुने हमारे, और उसके अंदर आपको काफ़ी इंसाइटफुल चीज़ें पता लगेगी कि आज के शो से ही आपको पता लगा आएगा। आप अपने घर में जितने भी वुमेन्स हैं उनको प्रेरित कीजिए कि स्टार्टअप बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन नहीं, बहुत बड़ा इनोवेशन नहीं है, आप छोटी छोटी चीज़ों के अंदर भी स्टार्टअप ढूंढ सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेकेंडली, हम लोग जल्दी ही शारदा यूनिवर्सिटी के अंदर शारदा लॉन्च पैड के बैनर के नीचे एक स्टार्टअप क्लिनिक वर्कशॉप लगाने वाले हैं दोबारा मेरठ मंडल कम्युनिटी के लिए, उसके नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए। जो एक जैसे डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन होता है, वैसी सी क्लिनिक है। आप यहाँ पे आइए, मेंटर यहाँ पे अमित सर बैठे होते हैं, वो आप उनसे अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो आपको डायग्नोस करके लिख के देंगे। आप जाइए, उसे मार्केट में इंप्लीमेंट कीजिए, फिर 10-15 दिन बाद उनके पास आइए, उन्हें बताइए सर आपसे जो सीखा था देखिए मार्केट में किया है, हम लोग ऊपर गए हैं नीचे आए हैं, जैसा भी हुआ वो आपको फिर कुछ सजेस्ट करेंगे। तो इसी एक कॉन्सेप्ट के अंदर हमने स्टार्टअप क्लिनिक का डिजाइन किया है, जल्दी इसकी लॉन्चिंग डेट आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।
4: अभी आप सुन रहे थे स्टार्टअप चौराहा। आज इस प्रोग्राम में बहुत सारी बातें हुई डिजाइन के संबंध में, स्टार्टअप के संबंध में, और शारदा विश्वविद्यालय का डिजाइनिंग डिपार्टमेंट किस तरीके से काम करता है उसके बारे में भी जाना। प्रधानमंत्री का जो सपना है कि टॉय इंडस्ट्री आगे बढ़े वो बातें भी हुई। बाल वाटिका कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में जाना। कर कमलम प्रोग्राम क्या है, चैलेंजेस क्या है, ये सारी बातें हुई इस प्रोग्राम के माध्यम से। हमारे साथ जुड़े रहे डॉक्टर प्रवीण पचौरी, डायरेक्टर यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड एक्सपर्ट इन प्रोडक्ट डिजाइन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस डेवलपमेंट। हमारे साथ जुड़े रहे डॉक्टर अमित सहगल, डायरेक्टर शारदा लॉन्च पैड फेडरेशन शारदा यूनिवर्सिटी, और इस प्रोग्राम को मॉडरेट कर रहे थे मिस्टर दिव्यांशु शुक्ला, फाउंडर पैप स्वैप पॉलिसीज ओवर पॉलिसीज, वर्किंग एज पॉलिसी इंगेजमेंट पार्टनर फॉर यूपी स्टार्टअप पॉलिसी। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था शारदा लॉन्च पैड ने पैप स्वैप के सहयोग से, और आप ये प्रोग्राम सुन पा रहे थे सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। आशा करता हूं कि ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपना फीडबैक देना ना भूलेगा 0120406025 पर। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर। ऐसी खास जानकारी के लिए बस सुनते रहिए स्टार्टअप चौराहा, ये खास कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम के माध्यम से। मुझे यानी गगन को दीजिए अनुमति, नमस्कार। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स, यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
1: और इन सब का मैं बताता हूं सार, मिलिए डॉक्टर से न करें विचार, अगर दिखें टीबी के आसार।
2: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: आइए जानते हैं माहवारी अनियमितताओं के बारे में। अगर आप गर्भवती नहीं हैं और आपकी माहवारी 3 या उससे अधिक महीने तक नहीं आती है,
1: अचानक से आपका मासिक धर्म अनियमित हो गया है,
0: आपकी माहवारी 7 दिनों से अधिक समय तक चलती है,
1: आपको हर घंटे या 2 घंटे पर पैड या टैम्पॉन बदलने की जरूरत पड़ती है,
0: माहवारी के दौरान आप बहुत अधिक दर्द का सामना करती हैं,
1: आपका मासिक चक्र न्यूनतम 21 दिन और अधिकतम 35 दिनों से अलग है,
0: आप माहवारी के दौरान स्पॉटिंग का अनुभव करती हैं,
1: आप माहवारी के दौरान अन्य लक्षणों जैसे सामान्य रक्त स्त्राव या बुखार का अनुभव करती हैं,
0: तो आपको उपचार के लिए फौरन नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करना चाहिए।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुँचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंध से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंध का सेवन कर सकते हैं। शकरगंध एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की, नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की, जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है, कैसे जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @ 90.8 FM।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: डियर किरण, अक्सर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। एक खत भी लिखना शुरू किया है, पता नहीं पोस्ट करने की हिम्मत होगी कि नहीं, पर बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: mixing in the house.
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: टेस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जांच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हमारा भविष्य हाथों में है,
2: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।
1: हाथ होंगे साफ सुमन के पालन के साथ। एस मतलब सीधा, बहते हुए साफ पानी से हाथों को गीला करें और साबुन लगाएं। पानी से दूर अपनी हथेलियों को रखें।
2: यू मतलब उल्टा, हाथ के बाहर वाले हिस्से पर अच्छे से साबुन लगाएं।
1: एम मतलब मुट्ठी, अपनी उंगलियों और उनके बीच की त्वचा को रगड़ें।
2: ए मतलब अंगूठा, अंगूठों और उनके बीच की त्वचा को रगड़ें।
1: एन मतलब नाखून, अपनी हथेली और नाखूनों को रगड़ें।
2: के मतलब कलाई, हाथ के पीछे के हिस्से को रगड़ें।
1: और अंत में बहते हुए साफ पानी से हाथों को धोएं और हवा में हाथों को सुखाएं।
2: तू सुमन के पालन के साथ हाथ हो गए पूरे साफ।
1: एस मतलब सीधा,
2: यू मतलब उल्टा,
1: एम मतलब मुट्ठी,
2: ए मतलब अंगूठा,
1: एन मतलब नाखून,
2: के मतलब
1: कलाई।
2: हमारा भविष्य हाथों में है,
1: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।
3: यूनिसेफ के सहयोग से
1: सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा
3: जनहित में जारी।
4: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सके। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड्स सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहां खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
5: शारदा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे। लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है। अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
6: दो दीवाने शहर में म्यूजिक प्रोड्यूस्ड एंड अरेंज्ड बाय जैकी वंजारी, सिंगर सोनू निगम एंड ऐश्वर्या भंडारी, लिरिक्स बाय कुमार, म्यूजिक बाय श्रेयस पुराणिक। दो दीवाने शहर में ओनली ऑन सारेगामा। सो लेट्स एंजॉय इट केवल सुनो शारदा 90.8 एफएम।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

जाने हैं कहां, ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो संग बाय लकी अली, कंपोजर्स माइकी मैक्लेरी और सूरज कुलवडी, लिरिसिस्ट कौसर मुनीर। तू जाने है कहां, सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878 9370। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है।
0: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
0: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
0: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
4: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग एआई साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: For more information, please call Dr. Ramneet 9878937700. Seats are limited. Hurry up, कहीं देर ना हो जाए।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
6: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक बम।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों,

0: आमतौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं, तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नेड़े होके भी दूरियां रहिंदियां ने, कुछ मोहब्बतां अधूरियां रह के भी पूरियां रहिंदियां ने।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.
1: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
3: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
1: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
3: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
4: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।